कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है दैट यू आर नॉट रिस्पेक्टेड इनफ? आज मैं एक बड़ी सिंपल सी कहानी सुनाना चाहूंगी आपको. वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, वणक्कम, अस्सलाम वालेकुम. मैं हूं आफरीन, आपके साथ राइटर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. और कहानी है बहुत ही आसान सी, कुछ कि मैं मेरी फ्रेंड के घर गई थी, थकी हारी सी थी और बहुत ही एंग्रॉस्ड हो गए थे हम बातों में, कि उसने जब कॉफ़ी ला कर दिया ना, वो कॉफ़ी ठंडी हो गई थी. तो उससे पूछा कि अरे यार तेरी कॉफ़ी ठंडी हो गई है, मैं तुझे गर्म करके दे दूँ. एंड आई डिडंट वांट टू बॉदर हर, सो आई वाज लाइक नहीं ठीक है चलिए मैं पी लूँगी. अब कुछ दिन बाद मैं जब फिर से गई उसके घर पर, तब बहुत थकी हुई थी और मैंने रिक्वेस्ट किया कि यार कॉफ़ी दे दे. तब किचन में गई और वो कॉफ़ी जो बनी हुई थी कुछ घंटे पहले, वो वही लेकर आई. इसका मतलब ये तो नहीं था कि वो मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रही थी या वो मेरे साथ रूड थी. जब उसकी मम्मी ने उसको पूछा कि यार तो कॉफ़ी क्यों नहीं गर्म करी, तो शी वॉज लाइक कि नहीं ये पी लेती है ठंडी कॉफ़ी. कहीं ना कहीं मैंने खुद अपने स्टैंडर्ड सेट किए थे और लोग बस वही फॉलो कर रहे थे. ऐसा कई बार होता है ना जिंदगी में, हम काइंड होने की कोशिश में, कंपैशनेट होने की कोशिश में अपने आप के स्टैंडर्ड्स और लो करते जाते हैं. हम अपने आप को अनकंफर्टेबल कर देंगे भले ही चाहे दूसरों को कंफर्टेबल करने के लिए. अल्टीमेटली हमें ऐसा लगता है कि लोग हमें डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं. मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं हमें खुद को ही एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए, है ना. मैं हूँ आफरीन, आपके साथ माइक से दिल तक, राइटर ऑन मिर्ची. बने रहेगा हमारे साथ ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Mirci. Iskabana, uskabana, sakabana. Yabana. Burga, burga. La virtual burga. Mirci, burga.
1: हेलो
2: सर, वेरी गुड इवनिंग, मैं सेल्यूलर से बोल रहा हूँ। सर हमारी एक स्कीम आई है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको समझाऊँ। ये वॉइस मेल के लिए है, अगर आप चाहते हैं और आपको इंग्लिश नहीं आती है सपोज माने आप, तो आप कोई भी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको आगे भेज सकते हैं।
1: अच्छा,
2: आप हिंदी में अपना मैसेज छोड़ेंगे और हमारी मशीन उसको कन्वर्ट करके दूसरी लैंग्वेज में डब कर देगी सर, जिसका सर कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मंथली कोई चार्ज नहीं लगेगा। सर आप चाहेंगे ये स्कीम आपको दे दी जाए?
1: के पास है क्या ये सर्विस?
2: बिल्कुल सर, कोई एडिशनल चार्जेस नहीं है सर, जो आपका नॉर्मल प्लान चल रहा है उस प्लान के अकॉर्डिंग आपका बिल आएगा, सिर्फ आपकी एक फैसिलिटी बढ़ जाएगी।
1: जो क्या कॉस्टिंग पड़ेगा पर मैसेजेस का?
2: सर आप दिन में अगर 100 मैसेज भी भेजते हैं तो आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा, आपका नॉर्मल रेंट रहेगा जो आपका चल रहा है अभी।
1: ठीक है,
2: बीप सुनने के बाद अपना मैसेज छोड़िएगा।
1: ओके अगम सर, मुझे आपके अंडर में काम करना बहुत अच्छा लगता है, तो आप प्लीज मुझे अपनी टीम में रख लीजिए।
2: सर वेरी गुड, आपका मैसेज रिकॉर्ड हो गया सर, हमने इसको दूसरी लैंग्वेज में डब कर दिया, अब आपके बॉस ये सुनेंगे, सुनिए।
1: ये क्या है भैया?
2: सर ये आवाज तो आपकी लग रही है, मुझे लग रही है सेंटेंस इधर उधर हो गए।
1: तो भाई मशीन चलाने आती भी है
2: सर, मैनेजर के अलावा किसी और को मैसेज देखे देखिए।
1: हेलो वीना मैम, प्लीज अभी जो आ रहा है प्रोजेक्ट उसके लिए मुझे नॉमिनेट कर लीजिए अपनी टीम में।
2: सर थैंक यू सो मच, आपका रिकॉर्ड हो गया, वीना मैम को ये सुनाई देगा।
1: मजाक कर रहे तू मेरे से?
2: सर मेरी बात सुनिए, ये जो मेरी बात सुनिए सर, सर सर सर सर सो सॉरी, आई एम सो सॉरी सर, जितना आप मुझ पे चिल्लाए हैं मैंने रिकॉर्ड कर लिया। देखिए अब सही आएगा, देखिए ये दूसरी लैंग्वेज में आएगा, रुकिए सर आप। हेलो मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात तो सुनिए सर, मैं इतनी गालियां नहीं सुन सकता सर, मैं
3: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, मैंने तो रैंडमली आपका नंबर मिला दिया था सर, दिल्ली में सब आपको सुन रहे हैं, आप रेडियो मिर्ची में मुर्गा बन गया है आपका, प्लीज इतनी गालियां मत दीजिए यार।
2: सर मैंने ये भी रिकॉर्ड कर लिया, देखिए सुनिए क्या आया डब हो गए।
4: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट, इट्स पटाक।
5: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
6: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने, हिट गाने।
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

देखिए भाई, चैलेंज तो है फॉर ऑल द पेरेंट्स आउट देयर नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए आपके लिए. चैलेंज ऐसा कि अब बच्चों को एंटरटेन कैसे करें, स्पेशली उन लोगों के लिए जो वेकेशन के लिए अगर नहीं जा रहे हैं, या फिर कुछ दिन के बाद जा रहे हैं, या फिर वेकेशन से जल्दी लौटने वाले हैं. तो फिर भाई बता दूं, एक ऐसी जगह जो आपको पता तो है लेकिन शायद आप भूल गए होंगे. बस मैं बात कर रही हूँ हमद पोर्ट विजिटर सेंटर की, जहाँ कतर का फर्स्ट ओशनिक एक्वेरियम है. यहाँ 17 जायंट टैंक्स में लगभग 4700 मरीन क्रीचर्स है और 80 डिफरेंट स्पीशीज देखने को मिलते हैं. रेज, शार्क्स, कलरफुल ट्रॉपिकल फिशेस, सब एकदम क्लोज अप एक्सपीरियंस कह सकते हैं हम. अच्छा, ये सिर्फ एक्वेरियम ही नहीं है, यहाँ 4D सिनेमा, मरीटाइम म्यूजियम, वर्चुअल पोर्ट सिमुलेटर्स और किड्स के लिए ना डेडिकेटेड एक प्ले एरिया भी है. देखिए, ये सिर्फ फिश देखने की जगह नहीं है, ये एक्चुअली कतर की ब्लू इकोनॉमी को समझने का एक खूबसूरत सा एक्सपीरियंस है. आज दुनिया की कंट्रीज अपनी ओशंस और पोर्ट्स को इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन बना रहे हैं और कतर भी उसी विजन पर बिल्कुल काम कर रहा है. तो जहां आप यहां जाते हैं, यू नॉट जस्ट वॉचिंग मरीन लाइफ, यू आर विटनेसिंग हाउ अ मरीन टाइम नेशन बिल्ड्स इट्स फ्यूचर. तो देखिए भाई, बच्चों को एंटरटेन करने के लिए वीकेंड का प्लान चाहिए या फिर वीकडे का ही क्यों ना हो, देन दिस इज द प्लेस, दैट इज हमद पोर्ट विजिटर सेंटर. मैं हूं आफरीन, आपके साथ माइक से दिल तक, राइट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
3: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: देखो बचपन में टॉयज यानी इमेजिनरी टॉयज से तो हमने इतने खेले हैं, ये ब्रांड्स एंड्स क्या होता है ये तो हमें पता भी नहीं था। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को। और बचपन में अगर टॉयज के ब्रांड्स के हमें नाम भी पूछे जाए ना, तो मुझे दो टॉयज के ब्रांड्स पता थे, दैट वाज बारबी फॉर द गर्ल्स, और लड़कों के लिए आई थिंक सो हॉट व्हील्स का बहुत क्रेज था। इसके अलावा डिड यू इवन नो कि यार टॉयज में भी ब्रांड्स एंड कुछ होता है। एंड लुक एट टुडे, फास्ट फॉरवर्ड टू दिस डे, जहां पर कतर में फोर्थ एडिशन आ गया है बस, अब कतर्स बिगेस्ट टॉय फेस्टिवल। अब ये जो है ये 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक रहने वाला है DECC में, यानी दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में, जहां पर दिस ईयर्स फेस्टिवल इज द बिगेस्ट येट, कवरिंग मोर देन 22,000 स्क्वायर मीटर ऑफ इंडोर एंटरटेनमेंट। अब दिस जो टॉय फेस्टिवल का जो धमाका है ना, ये सिर्फ DECC तक सीमित नहीं है, इनफैक्ट अक्रॉस द मॉल्स इन कतर हर जगह कुछ ना कुछ एक्टिवेशन चल रहे हैं। लेकिन असली जो मजा है ना, दैट इज हैपनिंग एट DECC, क्योंकि यहां पर ना एक महीने का गजब के फैमिली फन इवेंट्स है। 50 ग्लोबल ब्रांड्स, लाइक आई वाज सेइंग कि हमें सिर्फ दो पता थे, और अब तो भाई न जाने ये बच्चों को कितने सारे टॉयज के ब्रांड्स पता है। एंड दे आर सो क्लियर, एक क्लैरिटी है कि भाई हमें यही ब्रांड का यही वाला टॉय चाहिए, यही वाला कैरेक्टर चाहिए। ओह माय गॉड, ये सब कुछ अगर आपके भाई बच्चे मांगते हैं ना, तो फिर सीधा उठाइए और ले जाइए टॉय फेस्टिवल में, वहां पर जाकर इधर उनको छोड़ दीजिए और उनके पूरे दिलों की अरमान वहां पर पूरी हो जाएगी। देखिए लाइव स्टेज शोज तो है ही वहां पर, कैरेक्टर मीट एंड ग्रीट्स भी है, इंटरक्टिव एक्सपीरियंसेस है, इनफैक्ट देयर इज आल्सो शॉपिंग कॉम्पिटिशंस भी है, थीम जोन्स फॉर ऑल एजेस। डिड यू हियर दैट, आई एम टेलिंग फॉर ऑल एजेस, मतलब कुछ ना अपने एंटरटेनमेंट के लिए भी है वहां पर, आपके अंदर का बच्चा जो है वो जिंदा हो जाएगा वहां पर। वेल अगर एंट्री टिकट्स की बात करें तो 50 का त्रिरियाल है वीकडे पर, वीकेंड पर 70 का त्रिरियाल है, लेकिन डोंट वरी, फैमिली ऑप्शंस है ना, फैमिली पैकेजेस आपको मिल जाएंगे, VIP ऑप्शंस मिल जाएंगी, तो ये सारी चीजें सॉलिड माहौल बना हुआ है DECC में, तुरंत पहुंच जाइए बच्चों के साथ वहां पर। मीनवाइल मैं हूं आफरीन आपके साथ, माइक से दिल तक, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: करण अर्जुन आएंगे।
1: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
2: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी।
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: अनिल कपूर सर, ये सवाल हम आपसे 365वीं बार पूछ रहे हैं कि आपकी फिटनेस का राज क्या है?
3: हेल्थ ऐसी बनाओ, काम ऐसा करो कि आप 40, 50 साल, 60 साल तक आराम से वैसे ही काम करते रहो। मीठा खाना तो थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा, आपको मीठा अगर सूट नहीं करता तो हफ्ते में एक बार खाइए, और खाना तो थोड़ा सा खाइए। आपको नमकीन पसंद है उसका मतलब ये नहीं कि आप इतना ही नमकीन खाते रहें। आपको चावल पसंद है तो दबा के आप चावल ही खा रहे हैं आप, यू नो, तो हर चीज़ करनी चाहिए, मगर थोड़ा थोड़ा थोड़ा करके यू शुड वर्क इट आउट एंड बैलेंस एवरीथिंग इन लाइफ एंड डू एवरीथिंग इन लाइफ एंड दैट्स आई फील इज द मंत्रा फॉर योर फिटनेस। डू एवरीथिंग बट डू इट इन मॉडरेशन एंड डू इट व्हाट मेक्स यू हैप्पी।
2: हेल्थ टिप आपने दिया एकदम क्लास, क्योंकि अनिल कपूर आप आदमी एकदम झकास। आप सुन रहे हैं मिर्ची हिट्स ऑन
0: बॉलीवुड बोल्डा। Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
4: 89.6, 89.6.
5: It's hot.

0: अगर आपको फिर से समझ लीजिए स्कूल जाना पड़े, तो आप फिर से सुबह सुबह उठकर जाना पसंद करोगे या शाम की क्लास? और हमेशा से ना बचपन से मुझे लगता है कि भाई क्यों सुबह इतना जल्दी उठना पड़ता है, स्कूल के लिए, फिर काम के लिए। और आप तो देखो, मैं तो मॉर्निंग शो भी करने लग गई, और मेरा सुबह की नींद के साथ प्यार ना एक अलग ही लेवल का है। वेल, मजाक एक तरफ, लेकिन सीरियस बात की तरफ जरा चलते हैं।
1: क्या खबर कदर?
0: खबर कुछ ऐसी है दैट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने प्राइवेट स्कूल्स में इवनिंग स्टडी सिस्टम का एक्सपेंशन जो है अनाउंस किया है। अब 37 प्राइवेट स्कूल्स और ब्रांचेस इवनिंग क्लासेस ऑफर करेंगे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडियन करिकुलम स्कूल्स इस इनिशिएटिव का सबसे बड़ा हिस्सा है, उसके बाद ब्रिटिश और दूसरे इंटरनेशनल करिकुलम। सोचिए, अगर किसी स्टूडेंट का हेल्थ इशू हो, या किसी फैमिली की वर्क शेड्यूल अलग हो, या किसी बच्चे को ट्रेडिशनल क्लासरूम टाइमिंग सूट ही ना करती हो, तो उनके पास अब ये एक प्रैक्टिकल ऑप्शन भी होगा। और एक अगर एक एंगल अगर इसका देखें तो कतर की पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, नए स्कूल्स बनाने के लिए टाइम लगता है, लेकिन एग्जिस्टिंग कैंपसेस को इवनिंग में यूज करना इज अ स्मार्ट यूटिलाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। सेम बिल्डिंग्स, डबल अपॉर्चुनिटी, एंड दैट्स कॉल्ड वर्किंग स्मार्टर, नॉट जस्ट बिगर। मैं हूं आफरीन आपके साथ माइक से दिल तक, राइट रन में। उनके पास अब ये एक प्रैक्टिकल ऑप्शन भी होगा। और एक अगर एक एंगल अगर इसका देखें तो कतर की पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, नए स्कूल्स बनाने के लिए टाइम लगता है, लेकिन एग्जिस्टिंग कैंपसेस को इवनिंग में यूज करना इज अ स्मार्ट यूटिलाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। सेम बिल्डिंग्स, डबल अपॉर्चुनिटी, एंड दैट्स कॉल्ड वर्किंग स्मार्ट।

0: जी बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन, बताइए क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए।
1: बूढ़ी बाबा, मेरे पति को मेरे हाथ की रोटी अच्छी नहीं लगती, क्या करूँ?
0: तो सिंपल है ना, तुम्हारे हाथ की रोटी मत खिलाओ, आंटी की खिला दो।
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का हंस।

0: देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि हॉलिडे बुक करते वक्त आप सबसे पहले क्या चेक करते हैं, बजट ऑफ कोर्स, वेदर, हाँ ये भी, इंस्टाग्राम और लोकेशंस, हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन आजकल के जनरेशन या आज के ट्रैवलर्स काफी स्मार्ट हो गए हैं। अब ये लोग डेस्टिनेशन के साथ साथ वैल्यूज भी चूज करने लगे हैं। वैल्यूज वो कैसे आप सोच रहे होंगे, तो बताती हूँ, इसका डायरेक्ट कनेक्शन कतर के साथ है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को। और आज की सबसे बड़ी खबर में
1: क्या खबर कतर,
0: खबर ये है दैट कतर ने एक बार फिर ग्लोबल मुस्लिम ट्रैवल इंडेक्स 2026 में टॉप 5 मुस्लिम फ्रेंडली डेस्टिनेशंस में अपनी जगह रिटेन की है। देखिए, सिर्फ रैंकिंग ही नहीं, कतर ने एक्सेसिबिलिटी में दुनिया में नंबर 2 रैंक हासिल किया है। वाओ, मतलब एक्सेलेंट एयर कनेक्टिविटी, वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, सिंप्लीफाइड वीजा प्रोसेस और सीमलेस ट्रांजिट एक्सपीरियंस। देखिए, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे इंटरेस्टिंग बात रैंकिंग नहीं है, इट्स द शिफ्ट इन ग्लोबल ट्रैवल बिहेवियर। मुस्लिम ट्रैवल इकोनॉमी इज नो लॉन्गर अ नीश मार्केट। 2026 में अराउंड 208 मिलियन मुस्लिम ट्रैवलर्स एक्सपेक्टेड है और 2030 तक ये नंबर्स 262 मिलियन तक पहुंच सकता है और स्पेंडिंग अराउंड $310 बिलियन हो सकती है। एंड दैट्स नॉट अ ट्रेंड, That's a global economic powerhouse. और कतर ने exactly इसी future को पहले ही read कर लिया था। Luxury hotels के साथ halal dining भी है, prayer facilities भी है, family friendly experience भी है और अब कतर एयरवेज का समा 2.0 AI concierge जो travel planning को और intelligent बना रहा है। तो देखिए, अगली बार जब कोई कहे कि कतर तो सिर्फ एक stopover destination है ना, तो नो बॉस, अब उन्हें बता देना दैट इट्स नॉट जस्ट अ डेस्टिनेशन एनीमोर, इट्स बिकमिंग अ ग्लोबल बेंचमार्क फॉर इंक्लूसिव वैल्यू लेड टूरिज्म। मैं हूं आफरीन आपके साथ माइक से दिल तक, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Permite. Escabana, buscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. Na vida fala burga.
1: Mente, burga.
2: Hello?
3: Sir, very good evening, man. बैंक से बोल रहा हूँ, मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ दो मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे दो मिनट दे सकते हैं?
2: हाँ जी बोलिए।
3: सर हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
2: आप मुझे पैसे दोगे? हाँ, हिडन चार्जेस?
4: सर इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
2: कौन बोल रही है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ। सर मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
2: ये स्कीम मुझे क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है?
5: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
2: हेलो कौन बोल रहा है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ मैं, इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
2: क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
4: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
2: हेलो मैडम।
3: हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ।
2: कौन बोल रहा
3: है? रमेश बोल रहा हूँ सर। से
2: अभी कोई और बोल रही थी।
3: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
2: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है, इसमें कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
6: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
2: कौन बोल रहा है?
3: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर, इसमें
2: दो दिन बाद मुझे कॉल कर लेना।
7: सर 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
2: कौन बोल रहा है भैया?
3: सर रमेश बोल रहा हूँ, आप यार उस पे क्यों जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? सर
2: कभी किसी की आवाज आ रही है, कभी किसी की आवाज आ रही है, नहीं भैया नहीं नहीं चाहिए मुझे।
8: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
3: आज सबका दिमाग खराब हो गया, अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या क्या
2: कोई बोल रहा है?
3: कौन बोल रहा है यार? मैं बोल आपसे रमेश बोल रहा है। सर मेरी बात सुनिए सर, सर आपसे सर फोन मत काटिएगा।
9: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं, अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, अब मुर्गा बन गए, आप कुकड़ों को बोल दे जरा हंस के।
10: थैंक यू
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
11: तारीख पर तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
7: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा,
0: दोनों मिलेगा। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
10: 89.6
0: FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: देखिए टेक्नोलॉजी आकर टाइम हो गया है, लेकिन अब भी देखकर थोड़ा सा तो डर लगता ही है। वेल आई एम टॉकिंग अबाउट ड्राइवरलेस कार, जो स्टीयरिंग व्हील के पीछे कोई नहीं होता है। हाँ वही, विच लुक्स लाइक राइट आउट ऑफ अ साईफाई मूवी, लेकिन अब वो रियलिटी हो गई है इन मेनी कंट्रीज, और ये कतर की भी रियलिटी बनने बहुत जल्दी जा रही है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफ्टरनून को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और करवा के इलेक्ट्रिक रोबो टैक्सी ट्रायल्स का पहला फेज सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अगस्त 2025 से शुरू होने वाले है ये पायलट प्रोजेक्ट। अब तक के 2500 से ज्यादा ऑटोनॉमस ट्रिप्स कंप्लीट कर चुका है, और इंटरेस्टिंग बात यह है दैट 94% राइड्स बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के कंप्लीट हुई है। हाँ, सेफ्टी के लिए अब तक एक ट्रेन सेफ्टी ऑफिसर कार में मौजूद था, ठीक है ना, लेकिन अब प्रोजेक्ट एंटर करेगा फेज टू, जहां कुछ रोबो टैक्सीज के अंदर सेफ्टी ऑफिसर भी नहीं होने वाले हैं, उन्हें रिमोटली मॉनिटर किया जाएगा। इनिशियली ये रूट्स कवर करेंगी ओल्ड दोहा पोर्ट टू द गेट मॉल, सुख वाकिफ टू शेरेटन दोहा होटल और म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट से लेकर वेस्ट वे तक। लेकिन यहां पर मेरे ख्याल में ये एक सवाल है कि अगर कल ड्राइवर ही ना हो तो सही में आपको कैसा फील होगा कि यार आप टैक्सी बुक करते हो, ड्राइवर नहीं है। हम अब तक के ये ना यूट्यूब पर और रील्स पर ये देखते आए हैं, लेकिन ये एक्सपीरियंस करने के लिए क्या आप रेडी हो या नहीं, आई वॉन्ट नो दैट। 5000 1896 डेफिनेटली इट इज वन स्टेप नहीं, इट इज 10 steps अहेड। फ्यूचर की तरफ हम जा रहे हैं। अब तो हम ड्राइवरलेस गाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं, फिर हम फ्लाइंग टैक्सी के बारे में भी जल्दी बात करेंगे मुझे लगता है। माइक से दिल तक आप श्रीन को सुन रहे हैं आप राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स, इट्स हॉट।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
3: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: iPay payments ka wah tarika. With iPay, send money starting from just QAR 5 and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते हैं। जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
2: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
3: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: देखिए बॉलीवुड का एक ऐसा एक्टर जो एफर्टलेसली कॉमेडी करता है और एक ऐसा डायरेक्टर जो उसकी कॉमेडी को बिल्कुल सही डायरेक्ट करता है और ये दोनों अब एक साथ आ गए हैं। वेरी गुड मॉर्निंग, आप सुन रहे हो सिंपली आफ्रीन को राइट अराउंड मिर्ची मॉर्निंग्स। और बॉलीवुड में कई सारे कॉमेडियंस हैं यार, लेकिन वन ऑफ माय फेवरेट्स इज अरशद वारसी। एंड दिस टाइम अरशद वारसी एक नए अंदाज में आए हैं विद अ वेब सीरीज प्रीतम पेड्रो के साथ। वेल, एक तरफ है पेड्रो गोवा क्राइम ब्रांच का कॉप जिसे साइबर क्राइम सेल में ट्रांसफर किया जाता है, और दूसरी तरफ है प्रीतम एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड साइबर जीनियस जो असली जिंदगी में वैक्यूम क्लीनर्स बेचता है। अब दोनों मिलकर ना एक मिसिंग बॉय और साइबर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। अब इस पूरे इसमें मजे की बात यह है दैट दिस इज अ राजू हिरानी, मतलब यार राजकुमार हिरानी का है ये। एंड इट इज द फर्स्ट टाइम दैट राजू इज एंटरिंग दिस OTT for it, and it's gonna be exciting because we know how his thinking is, कितनी बहुत ही स्मार्ट थिंकिंग है राजू की। अगर आप लग रहे हो मुन्ना भाई देखे, मुन्ना भाई MBBS देख लिए, थ्री इडियट्स देख लिए, और हर जगह ना थोड़ा सा एक टच जो रहता है ना इनका, एक एक्स फैक्टर अलग रहता है। एंड नाउ व्हेन इट कम्स दैट अरशद वारसी को मेन लीड में लेकर ये कुछ कर रहे हैं तो कुछ कमाल ही कर रहे होंगे। वेल, पेड्रो के किरदार में आपको अरशद तो नजर आएंगे, लेकिन लेकर चलना चाहूंगी आपको एकदम पीछे जब मुन्ना भाई आई थी। और मुन्ना भाई जब, वी ऑल नो दिस मूवी एकदम स्टार्ट से एंड तक, जब लास्ट के सीन्स थे ना, जब दिखाया गया कि सर्किट की शादी हो गई है और गोद में एक बच्चा है और बीवी है, यू रिमेंबर दैट सीन है ना, फोटो दिखाया गया है, उसमें जो बच्चा गोद में रहता है वो राजकुमार हिरानी का ही रहता है। एंड नाउ इतने साल बाद वो बच्चा बड़ा हो गया है, नाउ इन दिस सीरीज ये पेड्रो प्रीतम में प्रीतम का किरदार मेन लीड राजू का बेटा कर रहा है, वही लड़का। आई मीन लाइफ इज अ फुल सर्कल, यू सी वॉस। वेल, जियो हॉटस्टार पे ये है, सस्पेंस भी है, थ्रिलर भी है और कॉमेडी तो भरपूर है। अब ये कैसा हो सकता है भाई, ये सिर्फ अरशद वारसी ही कर सकते हैं। 6 एपिसोड्स का ये है, मजे का है, जस्ट रिलैक्स्ड वॉच है, एंजॉय इट। प्रीतम पेड्रो डिजर्व्स अ चांस आई फील। मैं हूं आफरीन आपके साथ राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: Mirchi Mornings, brought to you by Kim's Health Medical Center.

0: Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: मिलिंद सोमन, आपकी इतनी फिट बॉडी है, क्या आपने कभी इस बॉडी का फायदा उठाया? आ जा, दिखाता हूँ तुझे, झगड़ा करेगा मेरे साथ।
3: कभी झगड़ा नहीं किया, और टफ फिजिक का मतलब ये नहीं कि झगड़ा करके उसको जस्टिफाई करो। गुड फॉर शो व्हिच इज गुड फॉर माय प्रोफेशन एंड आई वर्क अ लॉट, I work very hard, so I need that fitness level.
2: And I need your motivation level, Milind Soman. Aap sun rahe hain Mirchi, it's hot.
0: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
1: Only on Mirchi, it's hot.

0: देखो दोस्त, अगर मैं कहूँ आपसे कि अब से आपका ना चेहरा ही आपका बोर्डिंग पास बन सकता है ट्रैवल में, तो आप मानोगे? मानना ही पड़ेगा बॉस, हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइटर ऑन मिर्ची मॉर्निंग। सो देखिए, अगर आप कतर एयरवेज से एलिजिबल फ्लाइट पे दोहा से कहीं और ट्रैवल कर रहे हैं और आप अडल्ट है यानी 18 प्लस है, तो HIA ने यानी हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया फास्ट पास फीचर आपकी फेस रिकग्निशन को ही बोर्डिंग क्रेडेंशियल बना देगा। एक बार बायोमेट्रिक प्रोफाइल क्रिएट कीजिए और फिर सेल्फ बैकड्रॉप, सिक्योरिटी और बोर्डिंग किट पर बार बार डॉक्यूमेंट्स दिखाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखिए, फास्ट पास ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं, और पासपोर्ट फिर भी साथ रखना होगा ऑब्वियसली, क्योंकि इमिग्रेशन ई गेट्स या अगर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन फेल हो जाए तो फिजिकल पासपोर्ट ही आपके काम आने वाला है ना। और देखिए, अगर प्राइवेसी कॉन्शियस लोगों के लिए भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अगर आप एयरपोर्ट कियोस्क से रजिस्टर करते हैं तो आपका बायोमेट्रिक डेटा सिर्फ उस ट्रिप के लिए यूज होता है और फ्लाइट डिपार्चर के 24 घंटे बाद ये डिलीट कर दिया जाता है। अगर कतर एयरवेज ऐप से रजिस्टर करते हैं तो डेटा आपका डिवाइस पर रहता है और आप कभी भी ऐप सेटिंग से ये डिलीट कर सकते हैं। सो बॉटम लाइन ये है, इट्स नॉट जस्ट अ फास्टर एयरपोर्ट एक्सपीरियंस, इट्स अनदर ग्लिम्स इनटू हाउ ट्रैवल इज बिकमिंग फ्रिक्शनलेस, कॉन्टैक्ट लाइट एंड AI पावर्ड, है ना। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ राइटर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन?
1: नहीं नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है?
0: मेरे घर के पास बहुत कबूतर है, परेशानी होती है यार, क्या करूं?
1: तुम्हें जब पता है कि इतने सारे कबूतर हैं, तो घोंसले के बाजू में घर मत बना, समझा?

0: कभी ऐसा हुआ है कि हम मिलेनियल होकर भी आपको काफी आउटडेटेड फील हुआ है? होता है ना कई बार कि भाई टेक्नोलॉजी का कुछ रफ्तार इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि थोड़ा सा वी आर नाउ लिटिल स्ट्रगलिंग टू कैच अप, जैसे जेंजी फटाफट से कैच अप कर लेते, ऐसे ही कुछ हाल ना पेड्रो का है। अब पेड्रो कौन है ये? पेड्रो वो है जो साइबर क्राइम कॉमेडी ड्रामा में फीचर करता है। वेल आई एम टॉकिंग अबाउट प्रीतम एंड पेड्रो, अर्शद वारसी का ये नया वेब सीरीज जो डायरेक्ट किया गया है बाय वन एंड ओनली राजकुमार हिरानी। ये वही राजकुमार हिरानी है भाई जिन्होंने मुन्ना भाई MBBS लगे रहो, मुन्ना भाई, थ्री इडियट्स जैसे मजेदार मूवीज बनाए हैं। एंड नाउ हिरानी साहब इज हियर विद द OTT फॉरे विद हिज डेब्यू। अब बड़ा ही मजा आ रहा है ये देखकर, मुझे बहुत अच्छा लगा इसका ट्रेलर एंड आई थिंक सो यू शुड एक्चुअली वॉच दिस, जहां पर पेड्रो हु इज अ मिलेनियल हु इज अ कॉप और वो ना कहीं थोड़ा सा पीछे है ये टेक्नोलॉजी के चक्कर में, लेकिन प्रीतम जो है ही इज अ टेक सैवी यंग हैकर। अब बता दो प्रीतम का जो किरदार प्ले कर रहा है ना वो हिरानी साहब का सुपुत्र ही है वीर हिरानी, एंड ही इज डन फेयर जॉब फॉर फर्स्ट टाइमर्स। वेल इतना तो मैंने बता दिया कि ये आप वीकेंड पर देख सकते हो, एंड आई थिंक सो यू शुड नॉट मिस इट। जब बात कॉमेडी की भी आती है, थ्रिलर की भी आती है, सो इट्स अ नाइस ब्लेंड। अब इसके बाद बात करते हैं वो मूवीज के बारे में जो OTT पर रिलीज हुई है, जैसे पति पत्नी और वो दो, इट्स नॉट पति पत्नी और वो, इट्स वो दो। वेल ये मूवी आई थी थिएटर्स में मई में ही आई थी और अब ये प्रीमियर कर रही है नेटफ्लिक्स पर। वेल ये मूवी में है आयुष्मान खुराना, सारा अली खान एंड वामिका गब्बी और रकुल प्रीत सिंह, ये इतने सारे लोग हैं। सो ऐसा कुछ टाइम पास सा देखना है तो ये भी आप देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट इक्का नियरली आफ्टर 3 decades आफ्टर बॉर्डर आई कुड से सनी देओल एंड अक्षय खन्ना दे रीयूनाइट इन दिस ग्रिपिंग कोर्टरूम थ्रिलर, जहां पर देओल साहब प्लेज रेनाउंड लॉयर, उसके अलावा वी हैव अक्षय खन्ना, तो उनको बस तारीफ की क्या ही मोहताज है। सो ये भी नेटफ्लिक्स पर है। काफी सारी चीजें मैंने बता दी हैं OTT के प्लेटफॉर्म पर जो ये वीकेंड पर आप आने वाले वीकेंड पर जरूर इंजॉय कर सकते हैं। मैं हूँ आफरीन आपके साथ माइक से दिल तक, राइट हियर ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na vidba la burga. Milci, burga.
1: Hello.
2: Hello, Tejinder ji.
1: हाँ जी
2: तेजेंद्र जी, मैं बोल रहा हूँ पासपोर्ट ऑफिस से। आपने अप्लाई कर रखा था पासपोर्ट?
1: जी, हाँ जी, किया था।
2: हाँ, ये तेजेंद्र जी, आपका थोड़ा लेट मिलेगा पासपोर्ट, आपको ये इन्फॉर्म करने के लिए फोन किया था मैंने।
1: कितना लेट मिलेगा
2: आपको इसमें? एक सेकंड रुकिए, मैं चेक कर लेता हूँ। अरे, इनका तेजेंद्र का पासपोर्ट कब मिल रहा है? तत्काल में, आपने तत्काल में बनवाया ना इमरजेंसी में?
1: हाँ जी,
2: एक सेकंड। हाँ, इमरजेंसी का है सर। 3.5 महीने बाद मिलेगा आपको पासपोर्ट।
1: 3.5 महीने बाद?
2: हाँ जी
1: भाई साहब, तत्काल का क्या मतलब होता है? 5 दिन में मिलता है तत्काल का? तो
2: सर वो मुझे ही मालूम है, मेरे को क्यों समझा रहे हैं। असल में तेजेंद्र जी, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। आपके आसपास कोई है तो नहीं?
1: नहीं, कोई नहीं है।
2: हम ये कह रहा था, हमारा एक बंदा है जिसकी शक्ल आपसे मिलती है, ठीक है?
1: अच्छा।
2: बिल्कुल वो डिक्टो कॉपी लगता है आपका, जीरोक्स लगता है। अच्छा, उसको निकलना है दुबई। वो वैसे तो निकल नहीं सकता अपने पासपोर्ट से, क्योंकि पुलिस पकड़ लेगी। तो हम कुछ दिन के लिए आपके पासपोर्ट पे से आपका फोटो हटा के, ना आपकी दाढ़ी होती तो चल जाता, उसका फोटो चिपका के आपके नाम से वो दुबई जाएगा। वो 3-4 आदमियों को ठिकाने लगा के वापस आ जाएगा, तो उसमें 3-4 महीने लगेंगे।
1: क्या बोल रहा है भाई? कौन? हेलो।
2: तो मैं उसको बोल देता हूँ, वो वहाँ पे, वो आपके घर पहुँचवा देगा। आप फिक्र, बल्कि वो बंदा ही।
1: बात सुन। हेलो।
2: हाँ, बोलिए बोलिए।
1: क्या बोल रहा भाई?
2: आपके पासपोर्ट पे उसका फोटो लगा के आपके नाम से वो दुबई जाएगा, 2-3 को ठिकाने लगाना है, वापस आ जाएगा, उसका जरूरी काम है।
1: मैं बोल रहा हूँ,
2: मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ।
1: क्या बोल रहा है? क्या
2: आप इतना भड़क क्यों रहे हो? काम आप थोड़ी करने जा रहे हो, काम तो वो लगाने जा रहे हैं ठिकाने।
1: नहीं, बात क्या कर रहे हैं? पासपोर्ट पे किसी और को भेज रहा है
2: यार। आप मेरी
1: तेजेंद्र जी, नहीं
2: सोचो वो कितना भड़क रहा होगा। 3 आदमियों को उसको टपका के आना है दुबई में, उसकी भी तो भड़कन सोचो ना। अरे तो यार, आपका पासपोर्ट आपको वापस मिल जाएगा 1.5 महीने के लिए। आपका नाम यूज कर रहा है, आपका नाम यूज करने में आपकी गाड़ी मांग रहा है क्या? गाड़ी यूज कर रहा है वो?
1: नाम बता पहले।
2: ये लकी ड्रॉ निकल रहे हैं, वरना किसी और तेजेंद्र को भेज देते। आपका मौका लगा, आप ऐसे भड़क रहे हैं उल्टा। मेरी बात सुनिए तेजेंद्र। तेजेंद्र, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और तुम रेडियो मिर्ची पे हो। मुझे शालिनी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने कहा था कि तुमने पासपोर्ट अप्लाई कर रखा है, तुम्हारा मुर्गा बनाया। भाई तुम बहुत गुस्से वाले हो, तो मैं सोच रहा हूँ तुम्हें दुबई भेज दूँ, उसे नहीं भेजूं।
3: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
4: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
5: हमारी चोरियां छोरों से कम है के?
6: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
7: कम है के?
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
10: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: इकबाल ये जबरदस्त सा गाना सुनाने वाली हाँ जी ये गाना सुनाने वाली ये लड़की यानी सिंपली आफरीन आपकी सुबह वाली याद है तो मिर्ची मॉर्निंग्स पर आपके लिए सुबह हर सुबह की तरह आपका दिन बिल्कुल अच्छे से शुरू हो तो बस मौसम का भी हालचाल हम लेकर ही आते हैं। सो वेल आज का मौसम ये कह रहा है दैट मैक्सिमम टेम्परेचर जो है 44 डिग्री सेल्सियस है, मिनिमम 34 डिग्री सेल्सियस है और ये जो सिलसिला है काफी दिनों से यही टेम्परेचर का चल रहा है, ह्यूमिडिटी भी कम भी चल रही है, इस वजह से ना यार बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो गई है। ख्याल रखो अपनी स्किन का ख्याल रखो क्योंकि क्या है ना मिलेनियल्स की एक अलग ही खूबसूरती ये जो एज जो चल रही है उनकी उसमें उमड़ रही है। आपको नहीं लगता कि हम जब अर्ली 2000s में थे या फिर जब हम यंग थे 30s के पहले थे उससे कहीं कहीं कहीं ज्यादा बेटर अभी लगते हैं। इफ यू अग्री विथ मी यू हैव टू टेक्स्ट मी 5001896 एंड विद दिस अपने स्किन का ख्याल रखते हुए मौसम से बचते हुए अगले गाने की तरफ जाते हुए राइट हियर माइक से दिल तक आफरीन के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: Weather check brought to you by RSL Group of Company. Ab pao Qatar mein delivery riders or driver ki job. For bright future call now 3100-0813.

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: गोविंदा, आपका अल्टीमेट फिटनेस टिप कौन सा है?
3: मुझे ऐसा लगता है योग और प्राणायाम जो है, इससे आपकी बॉडी जो है बहुत ही करेक्ट रहती है और आपको मतलब वो घबराहट नहीं होती है।
2: तो ये एडवाइस आप देंगे कंटेम्प्रेरी हीरोज को?
3: योग प्राणायाम तो करते ही होंगे वो लोग, मुझे ऐसा लगता है।
2: आपको क्या लगता है कौन कौन करता होगा? मैं आपको तीन नाम देती हूँ, इन तीनों में से बताइए। वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जॉन अब्राहम।
3: ये तीनों एक्टर्स ऐसे हैं लोगों की, मुझे ऐसा लगता है कि बॉडी ज्यादा अच्छी है और कि पता नहीं कितने पैक निकले हुए हैं। उस जमाने में तो पूरी शाम में सब लोग हीरो लोग पैक ही लगाया करते थे, अब वो पैक उनके पेट पे आ गए। टेढ़ा मेढ़ा क्या नजर आ रहा है, ये पेट है इनका? ओहो, अच्छा अच्छा, फाइन फाइन फाइन, वेरी गुड वेरी गुड।
2: फिटनेस का पता नहीं लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर पर 110 फॉर चीची। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
3: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी। मिर्ची, it's hot.

0: देखिए, हम सब जिंदगी भर एक अच्छे घर के लिए मेहनत करते हैं, बड़ा घर, खूबसूरत सा घर। लेकिन एक बात बताइए, मकान और घर में फर्क क्या है? ये फर्क मैं आपको बताऊंगी। दीवारें, छत और दरवाजे मिलकर मकान बनाते हैं, लेकिन घर, घर तो किसी अपने की मुस्कुराहट से बनता है। और आज मेरी डायरी से चंद लाइंस इसी बात पर।
1: आफरीन की डायरी से शायरी। शायरी
0: तो अर्ज किया है, सफर कितना भी लंबा हो, सफर कितना भी लंबा हो, थकान रहती नहीं बाकी। जहां तुम मुस्कुरा देते हो, वही घर सा लगता है।

चाहे आप जितना भी घूमे फिरे, जितनी भी शहर चले जाए, लेकिन जब आप लौटते हो ना अपने घर, वो इंसान के पास, वो भले ही आपके माँ बाप क्यों ना हो, आपका हम सफ़र क्यों ना हो, आपके बच्चे या फिर वो एक दोस्त, जिसके पास बैठते ही दिल को सुकून मिल जाए। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा है जो सिर्फ अपनी मौजूदगी से मकान को घर बना देता है, तो यकीन मानिए आप वाकई बहुत खुशकिस्मत है। माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा। अनमिर्ची, इट्स हॉट।

आईपी पेमेंट्स का वाह तरीका. विद आईपी सेंड मनी स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट QAR 5 एंड यस विद द बेस्ट FX रेट्स. सिंपल सीधा नो टेंशन. चेक द आईपी ऐप टुडे फॉर आवर 5 10 15 20 ऑफर वैलिड टिल जुलाई 31st. आईपी स्मॉलर फीस बिगर स्माइल्स. TNC

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसलिए मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: काउंटडाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

0: हेलो शॉप्स, आवर प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं,
1: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
0: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं,
2: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
0: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
3: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है, ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
4: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ। कॉल नाउ 7070 7687।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: देखो मैं सैटरडे के शो को ना बिरयानी वाला शो कहना चाहूंगी। वो इसलिए क्योंकि एक ही चीज जो सभी को पसंद आती है और सैटरडे का शो में बेस्ट ऑफ द वीक होता है ना, तो पूरे हफ्ते का जो भी माल मसाला सबसे प्रीमियम होता है वो आपको सैटरडे को परोसा जाता है। सो विद दिस चलिए सैटरडे का शो का भी हो गया है वक्त खत्म, मैं चली टाटा बाय बाय। लेकिन आपको बता दूं भाई, अगर हुनर है टैलेंट है तो डोंट वेट, मिर्ची ने दे दिया है स्टेज। 5000 1866 आया व्हाट्सएप नंबर, फटाफट से अपनी एंट्रीज भेजो और फिर क्या, द स्टेज इज योर्स, यू कैन शाइन माई फ्रेंड्स। तो बस कल मिलूंगी सेम टाइम सेम शो, अपना ख्याल रखिएगा, टाटा बाय बाय सायोनारा। और माइक से दिल तक आफरीन के साथ ना हमेशा कनेक्टेड जरूर रहिएगा, भले ही वो रेडियो के एयरवेव्स के थ्रू हो या फिर सोशल मीडिया के थ्रू। सी यू टुमारो, बाय बाय। आप सुनते रहिएगा मिर्ची इट्स हॉट।
0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: मैं जब भी पढ़ने बैठता हूँ ना तो नींद आ जाती है।
2: क्यों नहीं हो रही पढ़ाई?
0: क्या करूँ?
1: अरे घोचू, तो लेटे लेटे पढ़ना, अच्छे से सो भी पाएगा रे तू।
3: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: मिर्ची फ्रेश माल।
1: धमाल फोर में धमाल मचाने आ रहा है कहर।

0: इस गाने को आवाज दी है गुरु रंधावा ने। म्यूजिक एंड लिरिक्स बाय गुरु रंधावा, गिल मचरई एंड रॉनी अजनाली। धमाल 4 से सुनते रहिए कहर, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: क्या गुरूर करना अपनी अच्छाई पर, क्या गुरूर करना अपनी अच्छाई पर, किसी ना किसी की कहानी में हम भी गलत हैं। बट आप लोग एकदम सही जगह आए हैं। जी हाँ, सलाम नमस्ते, मैं हूँ मिर्चीशा और हम आ चुके हैं वीकेंड वाइब्स लेक, आपको हफ्ते का पूरा हाल सुनाने की। कहाँ जा सकते हैं, क्या इवेंट्स अटेंड कर सकते हैं, क्या एग्जीबिशन अटेंड कर सकते हैं, सब कुछ बताऊंगी ऑन माय शो। लेकिन हाँ, ये बातों में सच्चाई जरूर है कि किसी ना किसी की जिंदगी में हम लोग गलत हैं। बट इट्स ओके, हम लोगों को पता भी नहीं है कि हम किसकी जिंदगी में गलत हैं और किसकी जिंदगी में सही। अपनी लाइफ एंजॉय करिए, किसी का बुरा ना चाहे, बस यही दो चीजें जो होती है ना लाइफ में वो इम्पोर्टेंट रखती हैं। बाकी तो बस जिंदगी चल रही है और हम लोग चला रहे हैं। बाकी ऐसी ही मजेदार बातों के साथ मेरे साथ बने रहिए क्योंकि शो अभी बाकी है गाइस, तो बने रहिए मेरे साथ। बताती हूँ अभी थोड़ी ही देर में कहाँ जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सब कुछ ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 पे मिर्ची ईशा के साथ। इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Yabana. Burka, burka. La virpa, la burka. Mirchi, burka.
1: Hello.
2: Hi. Ye call बैंक से है। आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है। हमारे कस्टमर केयर से आपको पासवर्ड मिलेगा। पासवर्ड बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए किसी को ना दे और इसका दुरुपयोग होने से बचाएं।
3: देखिए जी, आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, आप पासवर्ड लिख लीजिए प्लीज।
1: एटीएम वाला पासवर्ड है ना?
3: एटीएम वाला पासवर्ड है सर, ये पासवर्ड लिख लीजिए, मैं आपको बता देता
1: हूँ। एक मिनट मैं लिख लेता हूँ कहीं।
3: हाँ जी,
1: हाँ बोलिए।
3: 33501।
1: अच्छा
3: सर, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। शैलेंद्र जी, जरा विक्की का पासवर्ड बताइए, जरा इनको, ये फोन लाइन पे है एटीएम वाला।
1: हेलो,
3: मेरी वाइफ के पास भी है, एक सेकंड होल्ड करिएगा। हाँ, मैं फोन मिलाता हूँ। हेलो डार्लिंग, हाय।
4: हाय।
3: अच्छा ये बताओ, ये विक्की का पासवर्ड क्या है?
4: विक्की का पासवर्ड 33501। एक काम करिए ना, धोबी से पूछ लीजिए, क्योंकि उसके पास भी है।
3: धोबी से
4: पूछ लीजिए।
3: अच्छा, ये जो हमारे कपड़े धोता है, एक सेकंड।
1: हेलो
3: सर, एक सेकंड होल्ड करना, वो धोबी से भी कंफर्म कर।
5: ये बेल जा रही है।
3: हेलो भैया, हेलो भैया, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आप हमारे कपड़े धोते हो?
1: अरे भाई, तो एक बात सुन, ये
3: आपके पास
1: है?
3: आपके पास पासवर्ड होगा 33501? हाँ सर, 33501 है सर। हाँ जी सर, सर यही पासवर्ड है। मेरी बात सुनिए ना,
1: किस चीज से पूछे जा रहे हैं?
3: किससे? मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना सर, आपके पास।
1: ये क्या कंफर्म भाई, मेरा एटीएम कार्ड है
3: ये। एटीएम तो आपका तो पासवर्ड नहीं मिलेगा, पैसे कैसे निकलेंगे यार?
1: मुझे बताना है सबको, थोड़ी ना दुनिया में अल्लाह थोड़ी ना आता है।
3: आपको तो जल्दी इतनी मच रही है, आपको जल्दी इतनी मच रही है। कल का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेते, उसमें भी आ रहा था, बेकार में एप्लीकेशन डाल दी। टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लेते हैं।
5: विकी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तुमने पासवर्ड के लिए अप्लाई कर रखा था, तुम्हारा पासवर्ड अभी तक नहीं आया है। 33501।
1: किसने दिया मेरा नंबर?
5: आपका नंबर आशा ने दिया है, उन्होंने कहा था।
1: अरे मैं खुकड़ू को।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
7: कतर में है और ड्राइविंग लाइसेंस भी है, क्या आपको तलाश है एक अच्छी कंपनी की?
8: तो इंतजार खत्म, RSL ग्रुप ऑफ कंपनीज लेकर आया है एक सुनहरा मौका स्टेबल इनकम के साथ।
7: अभी कॉल करें 3100813।
9: ओ भाई, जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: Hello everyone, my name is Mr. Bean, and meet my friend, Mr. Beer.
1: इस कैरेक्टर को तो आप अच्छे से जानते होंगे, बचपन से लेके बड़े होते तक हम ये देखते ही आए हैं। मैं बात कर रही हूँ मिस्टर बीन की। अगर आप भी मिस्टर बीन के फैन हैं मेरी तरह, तो आप जा सकते हैं DECC, जहाँ हो रहा है टॉय फेस्टिवल, जहाँ मिस्टर बीन का मैस्कट भी देखने को मिलेगा और बहुत सारी एक्टिविटीज भी करने को मिलेंगी। भाई देर किस चीज की है, एंट्री फीस सिर्फ 50 रियाल है। अगर आप जाना चाहते हैं ना, तो इस हफ्ते या अगले हफ्ते भी जा सकते हैं, क्योंकि 31 जुलाई तक है। तो टेंशन नॉट, आराम से जाइए, बच्चों को साथ लेके जाइए, क्योंकि उनको मजा आने वाला है। समर वेकेशन और मजेदार हो जाएगा अगर आप बच्चों को लेके जाएंगे टॉय फेस्टिवल। इट्स ऑलवेज बीन अ ग्रेट प्लेजर जब भी आप टॉय फेस्टिवल जाते हो, एंड मैं हमेशा चाहती हूँ बीइंग एन अडल्ट एज वेल, वहां पे आपको मिलेंगी बहुत सारी और भी इंटरेस्टिंग चीजें करने के लिए। तो भाई तैयार हो जाइए, जाइए एंजॉय करिए बच्चों के साथ, बच्चा बन जाइए, एंड स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
3: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।

आजकल ना एक स्पोर्ट सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है। जी हाँ, फुटबॉल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ आइस हॉकी स्केटिंग की। जी हाँ, अगर आपने ऑफ कैंपस देखा होगा तो उसमें काफी ज्यादा देखा होगा कि किस तरीके से मुकाबले चलते हैं आइस स्केटिंग की और कितने मजे तरीके से वो खेलते हैं एंड एंजॉय करते हैं। एंड वही अगर आप ये लाइव देखना चाहते हैं आपके कतर में, तो कतर आपको मौका दे रहा है आइस हॉकी ओपन हाउस देखने का, जो हो रहा है 11 जुलाई को 6 PM to 7 PM। एंड आइस हॉकी सीरीज गेम होने जा रही है 7:10 PM से लेके 8:20 PM तक। एंड ये सेम डे 11 जुलाई को ही होगी। एंड आइस स्केटिंग ओपन हाउस भी 8:30 PM से लेके 9:45 PM तक होगा। एंड इट इज टोटली फ्री। एक नया स्पोर्ट है, बच्चों के बीच में एक बीज बोने की जो हमारी हैबिट है वो जरूर होनी चाहिए। नया स्पोर्ट बच्चों को जरूर दिखाना चाहिए कि ये अलग है, नए तरीके से खेला जाता है, और जरूर इंटरेस्ट पैदा कीजिए बच्चों में एंड लेके जा सकते हैं। एंड ऑल्सो 14th July 2026 को हो रहा है कर्लिंग कम एंड ट्राई सेशन। जी हाँ, ट्राई भी कर सकते हैं। एंड इट इज एट 6 PM to 8 PM तक हो रहा है, टोटली फ्री है। फ्री आइस स्केटिंग हो रही है कतर में, भाई इससे अच्छा और क्या मौका हो सकता है। जल्दी से जाके अपना प्लान जो है इसी तरीके से बनाइए कि इस वीकेंड जा सके, तो एंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ एक नया स्पोर्ट। एंड स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: Why go outside to see a doctor when healthcare can come to you?
1: With KIMS Health at Home, get doctor consultations, nursing care, physiotherapy, blood sample collection and more. All at one place. Call 5572-7387 today.
2: दोस्ती क्या कुछ सुले मैडम नो सॉरी नो थैंक यू
3: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए
4: तुम मिर्ची सुनो ना जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा
5: खूब मिलेगा मिलेगा
1: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6 FM मिर्ची वन इट्स हॉट

गर्मियों की सबसे खास बात ये है कि गर्मियों में आते हैं खूब सारे मैंगो और आते हैं तरह तरह के मीठे मैंगो, और मैं बात कर रही हूँ यहाँ मैंगो फेस्टिवल की। थर्ड एडिशन ऑफ द पाकिस्तानी मैंगो फेस्टिवल होने जा रहा है आपके दोहा कतर में, जिसको हम्बा एग्जीबिशन के नाम से भी जाना जाते हैं। जुलाई 9 से ये शुरू हो रहा है ईस्टर्न स्क्वायर ऑफ सूक वाकिफ में। मिस करने वाला मौका नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ 10 दिन के लिए ही आपके पास आए हैं। 18 जुलाई को ये वाइंड अप हो जाएगा यहाँ से। तो आपको करना क्या, इस वीकेंड टाइम निकाल के जाना है और बहुत सारे मैंगो लेके आने हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वैरायटी आपको मिलने वाली है पाकिस्तान की डिफरेंट डिफरेंट रीजन से आई हुई, उसमें इंक्लूडेड है चौंसा, अनवर रतौल, सिंदरी एंड ऑल्सो दशहरी। तो ये सब वैरायटी आपको यहाँ मिलेगी। देखिए, मजेदार वीकेंड जाएगा, इंजॉय कर सकते हैं। मैंगो के अलावा आप मैंगो से बनी हुई बहुत सारी क्यूजींस भी इंजॉय कर सकते हैं। उसमें जैसे आप पानी पूरी कह लीजिए या डोसा कह लीजिए, मैंगो मैंगो बर्गर, मैंगो चिकन, सब कुछ आपको वहां मिलेगा अंडर वन रूफ। तो करना क्या है, इस वीकेंड जाना है, इंजॉय करना है। टाइमिंग्स आपको मैं बता रही हूँ, 4 PM से 10 PM तक रहेगा थ्रू आउट द ड्यूरेशन। मैंगो एक ऐसी चीज है ना, जो खाने से ना आपके फेस पे ऐसे खुशी आ जाती है ना, तो आपको वहां बहुत सारी ऐसी ट्रेडिशनल डेलिकेसीज भी मिलेंगी। एंड अगर आप जाना चाहते हैं, जरूर जाइए अपनी फैमिली के साथ, मनाइए मैंगो वीकेंड इस वीकेंड को और इंजॉय करिए। एंड स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 101 इट्स हॉट।

आता है ना रात को सोया जाता है। उलझा रहता हूँ यादों में मुझको बड़ा रोना आता है। भूल गया मैं खाना पीना जिंदगी को हंस के जीना। तेरे चक्कर में मेरा एक बोतल रोज का पीना।

0: मिर्ची हेल्पलाइन?
1: नहीं नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची, अपना सवाल क्या है वो बता बच्चू।
0: अरे भाई क्या बोलूँ आपको, इधर घर ढूंढना इतना टफ है, कब से ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा, क्या करूँ?
1: अबे सबसे पहले तो ये बता कि तू किसका घर ढूंढ रहा है, तभी तो हेल्प कर पाऊंगा ना।
2: मैं दिल में आता हूँ, समझ में नहीं।

कतर टॉय फेस्टिवल को तो आप अच्छे से जानते ही हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कतर टॉय फेस्टिवल एक्टिवेशंस भी लागू हो चुकी हैं हमारे दोहा कतर में। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ऐसी एक्टिवेशंस की जहाँ पे हर मॉल में आपको एक कैरेक्टर का सारा सेटअप मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट बारबीज, तो वो एक पर्टिकुलर मॉल में आपको बारबी का पूरा सेटअप मिलेगा। वहां जाके आपके बच्चे एक्सप्लोर कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप अभी तक टॉय फेस्टिवल नहीं गए हैं तो जगह जगह मॉल्स में ये छोटे छोटे जो एक्टिवेशन लागू किए गए हैं, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग। तो अगर कुछ मैं आपको बताऊं उसमें से, तो बात करें पिक्सार की, तो पिक्सार आपको मिलेगा प्लेस वैंडम में, बारबी मिलेगी सिटी सेंटर में, और मोआना मिलेगी दोहा फेस्टिवल सिटी में। ऐसे ही बहुत से और मॉल्स हैं जहां पे आपको ये एक्टिवेशंस मिलेंगी। तो देखिए, ये एक फायदे का सौदा इसलिए भी है क्योंकि ये 30 सितंबर तक है। बच्चे एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ देयर वेकेशन एंजॉय कर सकते हैं हर मॉल में। किसी भी मॉल में जा रहे हैं वहां पे उनको टॉय फेस्टिवल से रिलेटेड हर चीज मिलेगी। बस करना ये है, जाना है मॉल, एंजॉय करना है, बस थोड़े से पैसे भी खर्चने हैं और एंजॉय कर लेना है। इस वीकेंड कहीं पे भी जाइए, आपको ये सारी एक्टिविटीज अभी से मिल जाएंगे। तो बस बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही इंटरेस्टिंग बातों के साथ, इंटरेस्टिंग इवेंट्स के साथ। सुनते रहिए मुझे, यानी कि मिर्ची ईशा को ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वाने, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga.
1: Milci, burga. Hello.
2: Sir, very good evening, man. बैंक से बोल रहा हूँ, मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ दो मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे दो मिनट दे सकते हैं?
1: हाँ जी बोलिए।
2: सर हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
1: आप मुझे पैसे दोगे? हाँ, हिडन चार्जेस?
3: सर इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
1: कौन बोल रही है?
2: सर रमेश ही बोल रहा हूँ। सर मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
1: मुझे क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है?
4: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
1: हेलो कौन बोल रहा है?
2: सर रमेश ही बोल रहा हूँ मैं, इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
1: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
3: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
1: हेलो मैडम।
2: हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ।
1: कौन बोल रहा
2: है? रमेश बोल रहा हूँ सर।
1: अभी कोई और बोल रही थी।
2: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
1: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है, इसमें कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
5: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
1: कौन बोल रहा है?
2: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर, इसमें
1: दो दिन बाद मुझे कॉल कर लेना।
6: सर 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
1: कौन बोल रहा है भैया?
2: सर रमेश बोल रहा हूँ। आप यार उसपे क्यों जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे सर?
1: कभी किसी की आवाज़ आ रही है, कभी किसी की आवाज़ आ रही है। नहीं भैया नहीं, नहीं चाहिए मुझे।
7: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
2: आज सबका दिमाग खराब हो गया, अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या क्या
1: कोई बोल रहा है?
2: कौन बोल रहा है यार? मैं बोल रहा हूँ, आप रमेश बोल रहे हैं। सर मेरी बात सुनिए सर, आपसे सर फोन मत काटिएगा।
8: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं, अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, आप मुर्गा बन गए, आप कुकड़ों को बोल दें जरा हंस के।
9: थैंक यू
10: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
11: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष, महापुरुष।
10: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स, कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
12: 89.6 FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

देखिए, नाचना गाना हो चुका पुराना, अब चाहिए नया टैलेंट। और अगर आपके पास भी है ऐसा नया टैलेंट जो आपको सबसे अलग करता है, तो आइए, कतर लेके आ रहा है ऐसा एक हंट। जी हाँ, कतर गॉट टैलेंट आ चुका है आपके लिए। मिर्ची वन कतर लेके आ रही है ये सुनहरा मौका। लाइट्स कैमरा टैलेंट शो करना है आपने अपना। जी हाँ, और अगर आप रेडी है ना, तो जल्दी से जाके फोन उठाइए, अपना वीडियो बनाइए, 30-40 सेकंड्स का वीडियो बना के हमें भेज दीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, जो है 5000-1896 पे, जहाँ पे हम आपको न्योता दे रहे हैं, ओपन फॉर ऑल। जी हाँ, कोई एज मैटर नहीं करती है, जिस भी एज के हैं आप, जल्दी से जाके अपना वीडियो बना के भेजिए। और फिर और कतर्स गॉट टैलेंट में आपको मौका मिल सकता है अपना परफॉर्मेंस दिखाने का ऑन स्टेज। सो जल्दी से आइए और अपने आप को रजिस्टर कराइए एंड स्टे ट्यून्ड विद अस ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
3: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी। मिर्ची, it's hot.

देखिए, वीकेंड अगर आप घर पे ही स्पेंड करना चाहते हैं, कहीं बाहर नहीं जाना चाहते, तो एक मस्त सा प्लान लेके आई हूँ आपके लिए। मैं बात कर रही हूँ फुटबॉल मैच की। आज सैटरडे जुलाई 11 को होने वाला है नॉर्वे वर्सेस इंग्लैंड मियामी स्टेडियम में, और होने जा रहा है अर्जेंटीना वर्सेस स्विट्जरलैंड कंसास सिटी स्टेडियम में। देखना होगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, मजा आएगा। देखिए, वीकेंड का प्लान अगर कुछ नहीं है तो ये प्लान, इससे बेस्ट प्लान कुछ है ही नहीं। आप अपने पॉपकॉर्न बना के रखिए, अपने स्नैक्स तैयार रखिए, बस फुटबॉल मैच देखिए और एंजॉय करिए फैमिली के साथ दिस वीकेंड। एंड फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझो।
1: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
2: बहुत कुछ होगा।
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6
5: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

You know what? It made me realize that जिम्मेदारी की एक खूबी होती है, ये आपको बिगड़ने नहीं देती। जी हाँ, बिगड़ने का समय ही नहीं है, क्योंकि जिम्मेदारियाँ इतनी आ जाती है एक एज के बाद कि आप उसमें इतना महफूज हो जाते हो कि आपको समझ में नहीं आता कि यू नो कि बिगड़ना क्या होता है। आपको समझ ही नहीं आता क्योंकि आप हर तरीके के कामों में बिजी हैं, ऑक्यूपाइड हैं, बच्चे हो, अपने बड़े हो, सबका ध्यान रख रहे हैं, लेकिन अपना ध्यान भी रखना उतना ही जरूरी है। आप भी बहुत प्रेशियस हैं, अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सेल्फ केयर इज सेल्फ लव एंड इट्स नॉट सेल्फिश। ये सब अलग अलग चीजें हैं। अपना ध्यान नहीं रखोगे तो घर का कैसे रखोगे, है ना, यही बोलते हैं ना। तो बस ये एक ऐसी लाइन है जो सब पे लागू होती है, घर का चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, सबके लिए ये लागू होती है कि अगर आप अपना ध्यान नहीं रखोगे आप सबका ध्यान कैसे रख पाओगे। तो बस इसी के साथ आज हमारा समय हो चुका है, जाने का हो चुका है टाइम। अब आपसे लेती हूँ अलविदा, मिलूंगी आपको अगले वीकेंड इसी समय इसी वक्त और ढेर सारी बातें और इवेंट्स के साथ। तब तक के लिए bye bye, shabba khair, see you next weekend, tata, and stay tuned with us only on 89.6 Mirchi One, it's hot.

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: जॉन अब्राहम आपके हिसाब से द टॉप फिट बॉयज ऑफ द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री.
3: फर्स्ट रेफरेंस इज ऑलवेज गोइंग टू बी वरुण धवन एंड आई टेल यू व्हाई. क्योंकि वरुण का जो फिजिक है वो बहुत ही प्रोपोर्शनेट है, उसके लेग्स बहुत ही स्ट्रांग है. टाइगर श्रॉफ फैंटास्टिक बॉडी. रणवीर सिंह एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली फिट. एंड ऑफ कोर्स ऋतिक रोशन. ऑनेस्टली अमंगस्ट ऑल दीज इंक्लूडिंग माई सेल्फ आई थिंक सबसे फिटेस्ट इंसान हमारे इंडस्ट्री में इज अक्षय कुमार. एंड आई मीन holistically fit. He can survive anywhere. अगर आप उसको माउंट एवरेस्ट पे छोड़ दो, अगर आप उसको रेगिस्तान में छोड़ दो, अक्षय कुमार will be the only guy who will survive and come out.
2: छोड़ने की जरूरत ही नहीं है जॉन अब्राहम. अक्षय कुमार is the only person in the हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो by choice इन जगहों पर जाएंगे. आप सुन रहे हैं मिर्ची, it's hot.
0: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
1: Only on Mirchi, it's hot.
4: Our business is our business. None of your business.
5: पर दीदी, our entertainment is your entertainment. Entertainment.
6: Qatar का number one radio station.
7: 89.6
8: FM, Mirchi 1. It's hot.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: हाय देयर, व्हाट्स अप, टेल मी।
0: हमारी काम वाली बाई बहुत इरेगुलर है, हर दूसरे दिन नहीं आती, क्या करूं?
1: वेल इट्स सो सिंपल यार, हर दूसरे दिन नहीं आती ना, तो उसको हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही काम पे रखा कर। या इट्स जस्ट अमेजिंग, फैंटास्टिक, सिंपल।

0: अरे ओ प्रॉब्लम सॉल्वर,
1: सारा बात तो सुन लो।
0: मिर्ची अंशु हे वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। एक बात बताना, क्या कभी नोटिस किया है कि हम सबके अंदर एक प्रॉब्लम सॉल्वर होता है? जैसे ही कोई अपने दिल का हाल बताना शुरू करें, हम तुरंत जवाब ढूंढने लगते हैं। अरे यार टेंशन ना लो, ऐसा कर लो, इतना मत सोचो, अरे मूव ऑन करो ना, सब ठीक हो जाएगा। और शायद ये सारी बातें हमें लगता है कि हम सामने वाला का ख्याल करने के लिए ही कह रहे हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है, हो सकता है जिस शख्स का हम इतना हौसला बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उस वक्त इमिजिएटली उसे शायद किसी जवाब की जरूरत ना हो। सकता है वो सिर्फ इतना चाहता हो कि कोई बिना घड़ी देखे उसकी बात बस सुन ले, बिना जज किए उसका दर्द महसूस कर ले और बिना कोई राय दिए बस उसके साथ उसकी बातें सुनते रहे, उसके साथ बैठे रहे। क्योंकि क्या है ना यार, हर बार इंसान इसलिए नहीं टूटता कि उसके पास कोई सलूशन नहीं है, कभी कभी वो इसलिए टूट जाता है क्योंकि उसके पास कोई बातें सुनने वाला नहीं। और शायद इसीलिए तो कहते हैं कि रिश्ता वो नहीं जो हर सवाल का जवाब दे, रिश्ता तो वो है जो हर खामोशी को बस समझ ले। हर दर्द को अल्फाजों की जरूरत नहीं होती, कभी कभी एक साथ एक एहसास ही सबसे बड़ी हिम्मत होती। महसूस करके देखिए। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: Mirchi.
1: Iskabala, uskabala, sakabala. Rabala. Burga, burga. La vieva la burga. Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Hello, sir. Very good evening. सेल्यूलर से बोल रहा हूँ सर, हमारी एक स्कीम आई है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको समझाऊं। ये वॉइस मेल के लिए है, अगर आप चाहते हैं और आपको इंग्लिश नहीं आती है सपोज माने आप, तो आप कोई भी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको आगे भेज सकते हैं।
2: अच्छा,
3: आप हिंदी में अपना मैसेज छोड़ेंगे और हमारी मशीन उसको कन्वर्ट करके दूसरी लैंग्वेज में डब कर देगी सर, जिसका सर कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मंथली कोई चार्ज नहीं लगेगा। सर आप चाहेंगे ये स्कीम आपको दे दी जाए?
2: के पास है क्या ये सर्विस?
3: बिल्कुल सर, कोई एडिशनल चार्जेस नहीं है सर, जो आपका नॉर्मल प्लान चल रहा है उस प्लान के अकॉर्डिंग आपका बिल आएगा, सिर्फ आपकी एक फैसिलिटी बढ़ जाएगी।
2: जो क्या कॉस्टिंग पड़ेगा पर मैसेजेस
3: का? सर आप दिन में अगर 100 मैसेज भी भेजते हैं तो आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा, आपका नॉर्मल रेंट रहेगा जो आपका चल रहा है अभी।
2: ठीक है,
3: बीप सुनने के बाद अपना मैसेज छोड़िएगा।
2: ओके अगम सर, मुझे आपके अंडर में काम करना बहुत अच्छा लगता है, तो आप प्लीज मुझे अपनी टीम में रख लीजिए।
3: सर वेरी गुड, आपका मैसेज रिकॉर्ड हो गया सर, हमने इसको दूसरी लैंग्वेज में डब कर दिया, अब आपके बॉस ये सुनेंगे, सुनिए।
2: ये क्या है भैया?
3: सर ये आवाज तो आपकी लग रही है, मुझे लग रही है सेंटेंस इधर उधर हो गए।
2: तुम्हें मशीन चलाने आती भी?
3: सर मैनेजर के अलावा किसी और को मैसेज देखे देखिए।
2: हेलो वीना मैम, प्लीज अभी जो आ रहा है प्रोजेक्ट उसके लिए मुझे नॉमिनेट कर लीजिए अपनी टीम में।
3: सर थैंक यू सो मच, आपका रिकॉर्ड हो गया, वीना मैम को ये सुनाई देगा।
2: मजाक कर रहे तू मेरे से?
3: सर मेरी बात सुनिए, ये जो मेरी बात सुनिए सर, सर सर सर सर सो सॉरी, आई एम सो सॉरी सर, जितना आप मुझ पे चिल्लाए हैं मैंने रिकॉर्ड कर लिया। देखिए अब सही आएगा, देखिए ये दूसरी लैंग्वेज में आएगा, रुकिए सर आप। हेलो मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात तो सुनिए सर, मैं इतनी गाली नहीं सुन सकता सर, मैं इतनी।
4: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, मैंने तो रैंडमली आपका नंबर मिला दिया था सर, दिल्ली में सब आपको सुन रहे हैं, आप रेडियो मिर्ची में मुर्गा बन गया है आपका, प्लीज इतनी गाली मत दीजिए यार।
3: सर मैंने ये भी रिकॉर्ड कर लिया, देखिए सुनिए क्या आया डब हो गए।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट, इट्स हॉट।
6: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
7: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा,
8: दोनों मिलेगा।
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, स्टेशन
10: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: यार वो सपने सपने ही क्या?
1: जो तुमने जागते हुए देखे, सपने तो वो हैं जो तुम्हें कभी सोने ही ना दे।
2: मिर्ची अंशु
1: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. यार जिंदगी में ना दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो अपनी सर्कमस्टांसेस के चलते अपने सपनों को छोटा कर देते हैं एंड दूसरे वो जो अपने सपनों की वजह से अपने हालात यानी कि सर्कमस्टांसेस को ही बदल देते हैं। एंड दूसरी कैटेगरी को बिलोंग करने वाले एक ऐसे शख्सियत की कहानी आज आपके बीच पेश करना चाहूंगी मैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। एक छोटे से शहर रामेश्वरम का लड़का जो बचपन में अखबार बांटता था, वही लड़का आगे चलकर अगर कुछ बना तो वो है भारत का मिसाइल मैन, साइंटिस्ट एंड फिर देश का राष्ट्रपति। लेकिन जानते हैं कि उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? ना मिसाइल्स है ना प्रेसिडेंसी। उन्होंने करोड़ों लोगों को यकीन दिलाया कि मैं भी कर सकता हूं और शायद इसीलिए उनकी बातें आज सिर्फ कोट्स नहीं, एक डायरेक्शन लगती है। एक लाइन उनकी हमेशा याद रखिएगा, इफ यू वॉन्ट टू शाइन लाइक द सन फर्स्ट बर्न लाइक द सन। यार कितनी गहरी बात है। हम सब सक्सेस देखना चाहते हैं लेकिन स्ट्रगल को स्किप करना चाहते हैं। हम डेस्टिनेशन तो चाहते हैं लेकिन जर्नी से दोस्ती ना, वो ना करना। डॉक्टर कलाम की जिंदगी हमें सिर्फ इतना ही सिखाती कि सपने देखना तो आसान है लेकिन उनके लिए रोज उठकर काम करना ही असली जीत और असली हिम्मत है। तो इतना ही कहना चाहूंगी कि जिस भी मिशन में लगे हैं ना, दिल से लगे रहिए। क्या पता आपकी कहानी भी किसी दिन किसी आरजे की माइक से लोगों के दिलों तक पहुंचे। स्टेडियम टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु। एंजॉय।

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
3: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
6: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: यार सच कह रही हूँ, ये जो राजा है ना, ये तो हमारे दिल में बसता है।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. अब जो राजा आपका इतना ख्याल करे, आप जब चाहो आपके पास हो, अब ऐसे में आप उसे दिल में ना रखें तो फिर क्या ही करें। मैं तो फलों के राजा यानी कि आम की बात कर रही हूँ। देखो यार, कतर में रहने वाले ये बात जरूर एडमिट करेंगे, बाकियों की जिंदगी में आलम होता होगा कि साल के 3 महीने उनकी लाइफ में आम आए और कोई खास एक्सपीरियंस दे। ये खास एक्सपीरियंस हमारी लाइफ में कतर के चलते 12 महीने में कम से कम 8 से 9 महीने तो जरूर होता है। इन सबसे खास बात, हम सिर्फ अपने देश नहीं, न जाने कितने और देशों के आम को खास तरह से टेस्ट कर पाते हैं, चख पाते हैं, उनका स्वाद जो है मजे से उठा पाते हैं। तो भैया, अभी अभी हमारी जिंदगी में अगर कुछ आया था, सो दैट वाज इंडियन मैंगो एग्जिबिशन। एंड इस हफ्ते अगर कुछ दस्तक देने वाला है तो वो है पाकिस्तानी मैंगो एग्जिबिशन, एंड वी कुडंट बी मोर एक्साइटेड। बिल्कुल जी, एक बार फिर से सुख वाकफ के ईस्टर्न स्क्वायर में आमों की बहार होगी। एंड सबसे खास बात, फुल्ली एयर कंडीशन टेंट के अंदर जो पाकिस्तानी ना ही सिर्फ आपको आम मिलेंगे बल्कि उसके अलावा उनसे बनी हुई बहुत सारी डेलिकेसीज भी आप चख पाएंगे। तो इसे कहते हैं भैया, आम की पेटी भी ले आओ, साथ में आज का डिनर भी कराओ। तो कब जाना होगा ये बात बता देना। 9 जुलाई को शुरू होगा, 18 जुलाई तक चलेगा एंड आई कुडंट बी मोर एक्साइटेड। मिलूंगी वहां पे, बिल आप भरना, अच्छे अच्छे स्टॉल्स पे मैं आपको लेके जाऊंगी। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।
2: मिर्ची फ्रेश माल।
3: धमाल 4 में धमाल मचाने आ रहा है कहर।

0: इस गाने को आवाज दी है गुरु रंधावा ने। म्यूजिक एंड लिरिक्स बाय गुरु रंधावा, गिल मचरई एंड रॉनी अजनाली। धमाल 4 से सुनते रहिए कहर, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। 89.6, 89.6,
1: it's hot.

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi, it's hot.
1: अनिल कपूर सर, ये सवाल हम आपसे 365वीं बार पूछ रहे हैं कि आपकी फिटनेस का राज क्या है?
2: हेल्थ ऐसी बनाओ, काम ऐसा करो कि आप 40, 50 साल, 60 साल तक आराम से वैसे ही काम करते रहो। मीठा खाना तो थोड़ा थोड़ा, आपको मीठा अगर सूट नहीं करता तो हफ्ते में एक बार खाइए, और खाना तो थोड़ा सा खाइए। आपको नमकीन पसंद है, उसका मतलब ये नहीं कि आप इतना ही नमकीन खाते रहें। आपको चावल पसंद है तो दबा के आप चावल ही खा रहे हैं। आप यू नो, तो हर चीज़ करनी चाहिए, मगर थोड़ा थोड़ा थोड़ा करके यू शुड वर्क इट आउट एंड बैलेंस एवरीथिंग इन लाइफ एंड डू एवरीथिंग इन लाइफ एंड दैट्स आई फील इज द मंत्रा फॉर योर फिटनेस। डू एवरीथिंग बट डू इट इन मॉडरेशन एंड डू इट व्हाट मेक्स यू हैप्पी।
1: हेल्थ टिप आपने दिया एकदम क्लास, क्योंकि अनिल कपूर आप आदमी एकदम झकास। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स ऑल
0: बॉलीवुड बोल्डा। Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
3: Only on Mirchi, it's hot.
4: नहीं, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
5: अरे, पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
6: कैसे रुक सकता है?
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: यार एक बात बताना कि जब भी आप कहीं घूमने जाते हैं तो उस जगह की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा याद रहती है?
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. या नेशनल सी बात है, किसी भी जगह को अगर हम देखने जाएं तो भाई वहाँ के आइकॉनिक लैंडमार्क्स, वर्ल्ड क्लास इवेंट्स, ये सब तो याद रहते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर किसी जगह में हमें खासकर वार्मथ या हॉस्पिटैलिटी महसूस हो तो वो जगह और भी ज़्यादा याद रह जाती है। एंड शायद इसीलिए कतर जो है दुनिया में काफ़ी अलग है और इसी एक्सेलेंस को सेलिब्रेट करने के लिए एक बार फिर से आ चुका है कतर टूरिज्म अवार्ड्स 2026। देखिए इस साल और भी ज्यादा कैटेगरीज ऐड की गई हैं ताकि टूरिज्म इकोसिस्टम के हर हीरो को रिकॉग्निशन मिल सके, चाहे वो होटल्स, रेस्टोरेंट्स, अट्रैक्शंस, इवेंट्स, डिजिटल क्रिएटर्स या सस्टेनेबिलिटी चैंपियंस। वेल, कतर टूरिज्म ने कैटेगरीज को एक्सपैंड किया है एंड अगर इसकी लिस्ट को आपको देखना है तो बिल्कुल आप qatartourism.com पर जाकर चेक कर सकते हैं। एंड अगर आपको लगता है कि आपके वीडियोज के चलते लोगों ने कतर को बेटर एक्सप्लोर किया है तो एक बात खास कर ध्यान रखिएगा, टूरिज्म इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर ये कैटेगरी भी इस साल इंट्रोड्यूस की गई है। बढ़िया जी, आई कुडंट बी मोर एक्साइटेड। 16th of September तक आपके पास वक्त है कि आप अपने एप्लीकेशन को सबमिट कर सकें qatartourism.com पे जाकर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जाओ भाई अच्छी अच्छी एंट्रीज जो है वो शामिल करके आओ। एंड अगर आपको लगता है कि आपके एंट्रीज का टेस्ट कराना है कि वो वाकई इस काबिल है या नहीं कि उसे पुरस्कार मिल सके, तो मुझे बुलाओ, रेस्टोरेंट का खाना भी चखेंगे, मुफ्त में आपके यू नो सेक्टर को एक्सप्लोर करेंगे एंड साथ ही आपके वीडियोज में अपनी झलक भी पेश कर ही देंगे। क्या कहती पब्लिक? स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु, एंजॉय।

0: जी बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन, बताइए क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए।
1: बूढ़ी बाबा, मेरे पति को मेरे हाथ की रोटी अच्छी नहीं लगती, क्या करूँ?
0: तो सिंपल है ना, तुम्हारे हाथ की रोटी मत खिलाओ, आंटी की खिला दो।
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे अलकट हंस।

0: It's hot. मिर्ची फ्रेश माल।
1: जब हर बीट में हो तड़का तब बनती है चटनी।

0: इस गाने को आवाज दी है नील कमल सिंह और ममता शर्मा ने, म्यूजिक दिया है आदित्य देव और नील कमल सिंह ने, और लिरिक्स लिखे हैं धीरज बबुआन ने। धमाल फोर से सुनते रहिए चटनी, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: यार मुझे ना आपसे एक सवाल पूछना है, लेकिन मुझे आपका ऑनेस्ट आंसर चाहिए।
2: मिर्ची अंशु।
1: एक सिंपल सी बात है कि अगर आज आप एक कैब बुक करना चाहते हो, आपके सामने गाड़ी भी आती है, लेकिन गाड़ी में ड्राइवर नहीं है, तो मुझे एक बात बताओ कि आप सही मायने में उस गाड़ी में बैठोगे? आई एम टॉकिंग अबाउट रोबो टैक्सीज। अंशु एक बार फिर से जुड़ चुकी है आपके साथ, एंड बहुत ही एक्साइटिंग बात आपको ये बताना चाहूंगी कि कतर में ऑलरेडी ये होना शुरू हो चुका है। कतर की मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ने रिसेंटली मोवसलात के साथ इलेक्ट्रिक रोबो टैक्सी का सक्सेसफुल ट्रायल कंप्लीट किया, एंड ये रोबो टैक्सी बिना ड्राइवर के मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट हेडक्वार्टर्स से ओल्ड दोहा पोर्ट तक सक्सेसफुली चली। देखिए कई जगह ऐसे वीडियोज हैं जो वायरल हो रहे हैं, इनफैक्ट कई देशों में अभियान बहुत अच्छी तरह से चल भी रहा है, पूरा भी हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर ना अभी भी कहीं ना कहीं एक डर और एक हेजिटेशन है कि भाई क्या मैं इतना बड़ा लव रिस्क ले सकती हूँ। हो सकता है कल के दिन एक कतर में ये नॉर्म ही बन जाए, तो अगर मुझे ऐसा कोई एक्सपीरियंस लेना हो ना, तो मैं अपने साथ दो लोगों को तो कम से कम बैठा के इस गाड़ी में बैठने वाली हूँ। लेकिन पता है बात और क्या है यार, मेरी ना एक आदत है कि अगर मैं किसी भी टैक्सी में किसी भी कैब में बैठती हूँ तो मुझे ड्राइवर से बात करनी होती है। मुझे स्ट्रेंजर्स से बात करना काफी अच्छा लगता है, वो कहाँ से है। तो मुझे लगता है कि जहाँ पे एक तरफ टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, कहीं ना कहीं ये कुछ फैक्टर्स हैं यार जो ह्यूमन टच एंड कनेक्ट है ना, हम मिस करेंगे। कोई नहीं यार, टेक्नोलॉजी जब डेवलप हो रही है तो बिल्कुल हम इसे यूटिलाइज भी करेंगे एंड अपनी जिंदगी में इसे शामिल भी करेंगे, एंड धीरे धीरे रोबोट टैक्सीज का ये जो रूट है ये और भी ज्यादा बढ़ते जाएगा। ओल्ड दोहा पोर्ट से द गेट मॉल, सुक वाकिफ, शेरेटन दोहा, मियां पार्क से वेस्ट बे तक। तो बढ़िया है, ड्राइवर लेस कैब में बैठने की तैयारी जो है आप भी कर ही लीजिए। स्टेडियम टू मिर्ची, बनेगा नाम अंशु।

0: Mirchi. Iscabana, puscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. Na vid pa la burga. Mirchi, burga.
1: Hello.
2: Hello, Tejinder ji.
1: हाँ जी,
2: हाँ जी तेजेंद्र जी, मैं बोल रहा हूँ पासपोर्ट ऑफिस से। आपने अप्लाई कर रखा था पासपोर्ट?
1: जी, हाँ जी किया था।
2: हाँ, ये तेजेंद्र जी आपका थोड़ा लेट मिलेगा पासपोर्ट, आपको ये इन्फॉर्म करने के लिए फोन किया था मैंने।
1: कितना लेट मिलेगा
2: आपको इसमें? एक सेकंड रुकिए, मैं चेक कर लेता हूँ। अरे इनका तेजेंद्र का पासपोर्ट कब मिल रहा है? तत्काल में, आपने तत्काल में बनवाया ना इमरजेंसी में?
1: हाँ जी,
2: एक सेकंड। हाँ इमरजेंसी का है सर, 3.5 महीने बाद मिलेगा आपको पासपोर्ट।
1: 3.5 महीने बाद?
2: हाँ जी
1: भाई साहब, तत्काल का क्या मतलब होता है? 5 दिन में मिलता है तत्काल का? तो
2: सर वो मुझे ही मालूम है, मेरे को क्यों समझा रहे हैं। असल में तेजेंद्र जी वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, आपके आसपास कोई है तो नहीं?
1: नहीं कोई नहीं
2: है। ये कह रहा था, हमारा एक बंदा है जिसकी शक्ल आपसे मिलती है, ठीक है?
1: अच्छा।
2: बिल्कुल वो डिक्टो कॉपी लगता है आपका, जीरोक्स लगता है। अच्छा, उसको निकलना है दुबई। वो वैसे तो निकल नहीं सकता अपने पासपोर्ट से क्योंकि पुलिस पकड़ लेगी, तो हम कुछ दिन के लिए आपके पासपोर्ट पे से आपका फोटो हटा के, ना आपकी दाढ़ी होती तो चल जाता, उसका फोटो चिपका के आपके नाम से वो दुबई जाएगा। वो 3-4 आदमियों को ठिकाने लगा के वापस आ जाएगा, तो उसमें 3-4 महीने लगेंगे।
1: क्या बोल रहा है भाई, कौन? हेलो।
2: तो मैं उसको बोल देता हूँ, वो वहाँ पे वो आपके घर पहुँचवा देगा, आप फिक्र। बल्कि वो बंदा ही
1: बात सुन। हेलो।
2: हाँ बोलिए बोलिए।
1: क्या बोल रहा है भाई,
2: आपके पासपोर्ट पे उसका फोटो लगा के आपके नाम से वो दुबई जाएगा, 2-3 को ठिकाने लगाना है, वापस आ जाएगा, उसका जरूरी काम है।
1: मैं बोल रहा हूँ,
2: मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ।
1: क्या बोल रहा है, क्या
2: आप इतना भड़क क्यों रहे हो? काम आप थोड़ी करने जा रहे हो, काम तो वो लगाने जा रहे हैं ठिकाने।
1: नहीं बात क्या कर रहा है, पासपोर्ट पे किसी और को भेज रहा है
2: यार। आप मेरी
1: तेजेंद्र जी, नहीं
2: सोचो वो कितना भड़क रहा होगा, 3 आदमियों को उसको टपका के आना है दुबई में, उसकी भी तो भड़कन सोचो ना।
1: मेरे नाम
2: क्यों? अरे तो यार आपका पासपोर्ट आपको वापस मिल जाएगा, 1.5 महीने के लिए आपका नाम यूज कर रहा है। आपका नाम यूज करने में क्या आपकी गाड़ी मांग रहा है? क्या गाड़ी यूज कर रहा है वो?
1: नाम बता पहले।
2: ये लकी डॉ निकल रहे हैं, वरना किसी और तेजेंद्र को भेज देते। आपका मौका लगा, आप ऐसे भड़क रहे हैं उल्टा। मेरी बात सुनिए तेजेंद्र। तेजेंद्र मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और तुम रेडियो मिर्ची पे हो। मुझे शालिनी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने कहा था कि तुमने पासपोर्ट अप्लाई कर रखा है, तुम्हारा मुर्गा बनाया भाई। तुम बहुत गुस्से वाले हो, तो मैं सोच रहा हूँ तुम्हें ही दुबई भेज दूँ, उसे नहीं भेजूँ।
3: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। ओ भाई जोश है फुल हाई, और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

यार कहते हैं कि कई बार अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए सिर्फ पैरों की नहीं बल्कि इरादों की जरूरत होती है, और जब इरादों में हौसला आ जाए तो फिर रास्ते क्या, पहाड़ भी आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा ही देते हैं। मिर्ची अंशु। चलिए आज एक बार फिर से आपके बीच एक ऐसे शख्स की कहानी पेश करते हैं जिसने इम्पॉसिबल शब्द को अपनी डिक्शनरी से हटा ही दिया। वेल, आज की कहानी है दशरथ मांझी की। भारत के बिहार के एक छोटे से गांव से आया एक साधारण सा शख्स जिसे आज पूरी दुनिया द माउंटेन मैन के नाम से जानती है। उनकी जिंदगी में एक मिशन था, एक पर्पस जो किसी रीजन से डेवलप हुआ। एक बार उनकी पत्नी बुरी तरह से जख्मी हो गई, लेकिन गांव और हॉस्पिटल के बीच एक बड़ा सा पहाड़ था और हॉस्पिटल पहुंचने के लिए लोगों को लगभग 70 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता था, जिसके चलते उनकी बीवी को सही वक्त में इलाज नहीं मिला और उन्होंने दम तोड़ दिया। उस दिन दशरथ मांझी ने सिर्फ अपनी पत्नी को नहीं खोया, उसके साथ उन्होंने अपनी जिंदगी में किसी चीज को जन्म दिया, और वो था एक संकल्प कि अब इस पहाड़ की वजह से किसी और की जिंदगी नहीं जाएगी। ना उनके पास कोई मशीन थी, ना पैसा, बस एक हथौड़ा, एक चिजल और एक अटूट हौसला। लोगों ने कहा ये बेवकूफी है, तुम कुछ ना कर पाओगे, लेकिन फिर भी वो हारे नहीं, थके नहीं, और 22 साल तक रोज थोड़ा थोड़ा कर उन्होंने अकेले उस पहाड़ को काट दिया एंड फाइनली एक रास्ता बनाया, एक ऐसा रास्ता जिसने हजारों लोगों की जिंदगी को आसान कर दिया। यार पत्थरों ने सोचा था कि हम कभी नहीं टूटेंगे, उन्हें क्या पता था कि सामने इरादों का इंसान खड़ा है। याद रखिए, मुश्किलें हमेशा बड़ी नहीं होती, कई बार हमारा हौसला छोटा पड़ जाता है, और जिस दिन हौसला बड़ा हो जाए ना, उस दिन पहाड़ भी छोटे लगने लगते हैं। स्टेडियम टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु।

0: में चीज स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
3: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: दोस्ती का गुस्सा है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
6: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
7: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
8: खूब मिलेगा, खूब मिलेगा।
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6
11: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: कह रही हूँ, ये ना नाइंसाफी है एंड कड़क नाइंसाफी है।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is Aaj Anshu with you. मुझे एक बात बताना, बचपन के दिनों में कभी अपने पापा, चाचा, ताऊ, दादा किसी को भी सनस्क्रीन लगाते हुए देखा है? भाई साहब 32 रुपए के साबुन से वो नहाया करते थे एंड उसके बाद भी चाहे कितनी भी धूप में ये क्यों ना निकल जाए, कभी इनकी स्किन टैन नहीं हुई। मतलब लाल जरूर होती थी लेकिन एक बार फिर से 32 रुपए के साबुन से मुंह धो के आते थे एंड स्किन जो इनकी चमकने लगती थी। आज की डेट में हम 3200 का सनस्क्रीन भी क्यों ना लगाएं? भाई हम लड़कियों की स्किन 5 मिनट में बगैर इसके ऐसे टैन होती है कि इसे साफ होने में अगले 6 महीने लग जाते हैं। लेकिन हाँ, आज के डेट में ये जो मेन है ना, ये काफी बदल चुके हैं। छुप छुप के चोरी चोरी हमारा ये 3200 का सनस्क्रीन ऐसे लगाते हैं अपनी शक्ल में जैसे कोई 3200 रुपए का साबुन हो। रियलाइज किया आपने? जरा देखें आज की डेट में सूरज चाचू क्या ही कोहराम मचा रहे हैं।
2: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
3: Weather update.
0: Well, today's maximum temperature is going to be somewhere around 47. Minimum is going to be around 35. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुद को fully hydrated रखें और हाँ साथ ही वो जो sunscreen है वो आपका best friend होना चाहिए, बिल्कुल अंशु की तरह। Stay tuned to Mirchi, बंदी का नाम अंशु। Enjoy.
3: Weather check brought to you by RSL Group of Company. अब पाओ कतर में delivery riders और driver की job. For bright future, call now 3100 0813.

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: आमिर खान इतनी सारी फिल्में और हर फिल्म में एक अलग फिजिक. What is the ultimate fitness tip?
2: I know everyone says this, but I can't stress how important it is to be regular in your workout. And along with that, for the best results, you need to have a very balanced and healthy diet. आमतौर पे लोग high protein diet करते हैं. You know that's not healthy. The body needs proteins, but also needs carbohydrates. It needs fat. It needs everything. So we must have a balanced diet and a healthy diet and rest. You have to sleep well. You have to rest well.
1: Sleep well. Oh ho ho ho. फिर तो fit होना मुश्किल है आमिर खान. आप सुन रहे हैं मिर्ची. It's hot.
0: Bollywood Boldal. Bollywood Bollywood Bollywood Boldal.
3: Only on Mirchi. It's hot.
4: Hello Sharps. Our product is phenomenal, one of a kind, but still profit nahi ho raha hai. Maine baba ji se advice li to kehte hain,
5: office ke toilet mein toilet paper white nahi yellow lagao, profit aayega.
4: Relative se advice lo to kehte hain,
6: kaam ko time do, 25 ghante kaam karo, dark circles honge to future bright hoga.
4: Isiliye main aapke paas aaya hu promotion fund ke liye, jiske liye aap 50% equity le sakte ho.
7: Bhai kya kar raha tu? जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है. गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट.
8: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची. टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ. कॉल नाउ 7070 7687.

0: यार सच कहूं वो भी क्या दिन थे।
1: मिर्ची अंशु
0: हे वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। यार जिंदगी में ना बहुत लोग मिलते हैं, कुछ लोग कई बार बस सफर में मिलते हैं और गुजर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग दिल में घर बना जाते हैं। स्कूल के वो दोस्त याद हैं जिनके साथ टिफिन शेयर किया, पनिशमेंट शेयर की, सीक्रेट भी शेयर की एंड कभी कभी होमवर्क भी कॉपी किया। क्या दिन थे यार। एंड फिर आए वो कॉलेज वाले दोस्त जिनके साथ सपने देखे, स्ट्रगल शेयर किए, कैंटीन की एंडलेस वो चाय पे चर्चा की और लाइफ के सबसे खूबसूरत पलों को बस जी लिया, साथ ही यादें भी बना ली। यार सच कहूँ वक्त बदल जाता है, शहर बदल जाते हैं, हमारी प्रायोरिटीज़ जो है ना वो भी कभी कभी बदल जाती हैं, लेकिन असली दोस्त जो हैं वो कभी नहीं बदलते। माना कि कुछ वक्त के लिए, अरसे के लिए हम अपनी अपनी ज़िंदगी में कहीं खो जाते हैं, लेकिन एक बार फिर अगर उस स्कूल या कॉलेज के दोस्त का फ़ोन आ जाए ना, ज़रा देखो सिलसिला वहीं से शुरू होता है जहाँ पे ख़त्म हुआ था, जैसे कभी रुका ही नहीं। बस आज उन्हीं दोस्तों की याद आई यार, तो क्यों ना उस दोस्ती के नाम एक शायरी जो है वो अर्ज़ की जाए। देखो दोस्ती नाम है सुख दुख की कहानी का, दोस्ती राज है सदा ही मुस्कुराने का, ये कोई पल भर की पहचान नहीं, दोस्ती तो वादा है उम्र भर साथ निभाने का। तो अगर लगे कि कोई दोस्त जो है इस वक्त याद आया तो उसे मैसेज या कॉल जरूर करना, एंड अगर लगे कि मैं तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त हूँ तो एक गुड मॉर्निंग या हेलो का मैसेज ही भेजना। 5000 1896 लेट्स गेट कनेक्टेड देयर। इंस्टाग्राम मिर्ची 1 कतरिया मिर्ची अंशु। मीनवाइल एंजॉय बंदी का नाम अंशु।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: Midday Mohabbat.
0: Presented by Absolute Barbecues. From savory to sweet, experience the ultimate flavors at Absolute Barbecues.
2: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
3: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
4: यादें कभी पुरानी नहीं होती, सिर्फ उन्हें याद करने की वजह बदल जाती है. इसलिए कुछ गाने, कुछ फिल्में और कुछ आवाजें सालों बाद भी बिल्कुल वैसी ही महसूस होती हैं. हिट होना अलग बात है, याद रह जाना वो बहुत बड़ी बात है. और शायद इसलिए बॉलीवुड में सबसे मुश्किल काम ब्लॉकबस्टर बनाना नहीं, एक लेगेसी बनाना है. आज के काउंटडाउन में भी कुछ नए गाने होंगे, कुछ पुरानी यादें होंगी और कुछ ऐसे सवाल होंगे जो शायद आप घर ले जाएंगे. हाय, मैं हूं सुरेन एंड दिस इज द मिर्ची टॉप 20, इंडिया का सबसे डेफिनेटिव हिंदी फिल्म म्यूजिक / बॉलीवुड म्यूजिक काउंटडाउन. और शुरुआत कर रहा हूं विद द फर्स्ट सॉन्ग जो है नंबर 20 की पोजीशन पर. मुझे लगा था शायद ये अलविदा कहने वाला है, लेकिन नहीं, ये हमारे लिए थोड़ा और रुक गया है. द ग्रेटेस्ट लव सॉन्ग फ्रॉम लास्ट ईयर, दिस इज सैयारा
5: नंबर 20.

Cocktail 2 एक लंबी लिस्ट का हिस्सा बन गया है. Films that created some excitement at the start, लेकिन उसके बाद, well, they just exist. इनके बारे में हमें पता है, लेकिन इनके साथ वो कनेक्शन नहीं बन पाया है. कभी कभी किसी फिल्म की सबसे बड़ी पब्लिसिटी उसका ट्रेलर नहीं होती, उसका गायब हो जाना होती है. पिछले हफ्ते एक फिल्म ने पूरे देश को एक ही सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया. सतलज रिलीज हुई, लोगों ने देखनी शुरू की और फिर रातों रात फिल्म हटा दी गई. एक वजह भी बताई गई पर वजह कन्विंसिंग नहीं थी. बहस शुरू हो गई लेकिन मेरे दिमाग में एक ही बात घूमती रही, अगर कोई कहानी इतनी खतरनाक है कि उसे देखना ही नहीं चाहिए तो उसे हटा देने के बाद लोग उसे और ज्यादा क्यों ढूंढते हैं. शायद क्योंकि इंसान की फितरत ही कुछ ऐसी होती है, जिस दरवाजे पर नो एंट्री लिखा हो सबसे पहले वही दरवाजा खोलने का मन करता है. और इंटरनेट के जमाने में एक बार कोई चीज दुनिया के सामने आ गई, उसे मिटाना शायद उसे और ज्यादा हिला देने जैसा होता है. नंबर 18 पर इस हफ्ते है तू ही दिसदा भूत बंगला से, एंड देन एक ऐसी फिल्म जिसने किसी कंट्रोवर्सी से नहीं सिर्फ लोगों की मोहब्बत से अपनी जगह बनाई है. दिलजीत दोसांझ सतलज में भी हैं और इस फिल्म में भी हैं. तो मैं वापस आऊंगा. और नंबर 17 दिस इज मस्कारा. नंबर 17

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची
1: हेलो
2: हाय ये कॉल बैंक से है आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है हमारे कस्टमर केयर से आपको पासवर्ड मिलेगा पासवर्ड बहुत कॉन्फिडेंशियल है इसलिए किसी को ना दे और इसका दुरुपयोग होने से बचाएं
3: देखिए जी आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है आप पासवर्ड लिख लीजिए प्लीज
1: एटीएम वाला पासवर्ड है ना
3: एटीएम वाला पासवर्ड है सर ये पासवर्ड लिख लीजिए मैं आपको बता देता
1: हूँ एक मिनट मैं लिख लेता हूँ कहीं
3: हाँ जी
1: हाँ बोलिए
3: 33501
1: अच्छा
3: सर एक सेकंड रुकिए मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ शैलेंद्र जी जरा विक्की का पासवर्ड बताइए जरा इनको ये फोन लाइन पे है एटीएम वाला
1: हेलो
3: मेरी वाइफ के पास भी है एक सेकंड होल्ड करिएगा मैं फोन मिलाता हूँ हेलो डार्लिंग हाय
4: हाय
3: अच्छा ये बताओ ये विक्की का पासवर्ड क्या है
4: विक्की का पासवर्ड 33501 एक काम करिए ना
3: हाँ।
4: धोबी से पूछ लीजिए क्योंकि उसके पास भी है
3: धोबी से
4: पूछ लीजिए
3: अच्छा ये जो हमारे कपड़े धोता है एक सेकंड
1: हेलो
3: सर एक सेकंड होल्ड करना वो धोबी से भी कंफर्म कर
5: ये बेल जा रही है
3: हेलो भैया हेलो भैया मैं बैंक से बोल रहा हूँ आप हमारे कपड़े धोते हो
1: ना? भाई तो एक बात सुन ये
3: आपके पास
1: है?
3: आपके पास पासवर्ड होगा 33501 हाँ सर 33501
1: हेलो
3: हाँ जी सर यही पासवर्ड है मेरी बात सुनिए ना
1: किससे पूछे जा रहे हैं
3: किससे मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना सर आपके पास
1: ये क्या कंफर्म भाई मेरा एटीएम कार्ड है
3: ये एटीएम तो आपका तो पासवर्ड नहीं मिलेगा पैसे कैसे निकलेंगे यार
1: मुझे बताना है सबको थोड़ी ना दुनिया में अल्लाह थोड़ी ना
3: आपको तो जल्दी इतनी मच रही है आपको जल्दी इतनी मच रही है कल का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेते उसमें भी आ रहा था बेकार में एप्लीकेशन डाल दी टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लेते
5: विकी मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ तुमने पासवर्ड के लिए अप्लाई कर रखा था तुम्हारा पासवर्ड अभी तक नहीं आया 33501
1: किसने दिया मेरा नंबर
5: आपका नंबर आशा ने दिया है उन्होंने कहा था
1: अरे मैं कुकड़ू को
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
6: अर्ज किया है
7: इरशाद इरशाद

0: iPay payments ka wah tarika. With iPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: Ja Simran, ja jeele apni zindagi. Ja beta, ja.
2: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल,
3: क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने।
4: हिट गाने
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
6: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट
7: नंबर 16।

Wow, the craziest songs from Dhurandhar 2. Ye tha Main Aur Tu by Jasmine Sanilas. And I don't know agar Dhurandhar ek sachi kahani hai ya it's fiction. But Bollywood filmmakers ko sachi kahaniya pasand badi hai. Which is why we love our biopics. And ek aur biopic dekhne ke liye ab janta utsuk hai. Saurav Ganguly ki biopic Dada. क्योंकि इस हफ्ते उनकी बायोपिक का फर्स्ट लुक आ गया है एंड मैं शायद माइनॉरिटी में हूं लेकिन मुझे क्रिकेट बायोपिक्स का कॉन्सेप्ट ही फ्लॉड लगता है. क्यों ऐसा क्यों बोल रहा है ये लड़का? वेल, क्योंकि कुछ जिंदगियां एक फिल्म में नहीं समा पाती. सोचिए सौरव गांगुली लॉर्ड्स में एक डेब्यू सेंचुरी, मैच फिक्सिंग के बाद इंडियन क्रिकेट की कमान संभाली, देन 2002 में वो नैटवेस्ट ट्रॉफी फाइनल. And then आया उनका सबसे मुश्किल चैप्टर, ग्रेग चैपल एज द कोच ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम. उस वक्त सौरव कप्तान थे, फिर टीम से बाहर हो गए और फिर एक कमबैक भी हुआ. एंड देन यू गॉट क्रिकेट के बाद की जिंदगी. सिर्फ यही कहानी सुनाने अगर बैठोगे तो 10 घंटे निकल जाएंगे. एंड सौरव गांगुली द क्रिकेटर तो एक तरफ है, इसके अलावा सौरव गांगुली द पर्सन, द ह्यूमन बीइंग भी तो दिखाओगे. और यही वजह है कि मुझे लगता है कि क्रिकेट बायोपिक्स अक्सर स्कोर कार्ड दिखा देती हैं, क्रिकेटर को नहीं. इसलिए राजकुमार राव और विक्रमादित्य मोटवाने पर पूरा भरोसा होने के बाद भी मैं सौरव गांगुली की बायोपिक को लेकर थोड़ा स्केप्टिकल हूं, क्योंकि कुछ कहानियां फिल्म नहीं वक्त मांगती है. सिर्फ एक एम एस धोनी की बायोपिक थी विच वर्क फॉर सम रीजन, बट उसके अलावा 83 अजहर नॉट सो मच. नंबर 15 पर इस हफ्ते डेब्यू कर रहा है एक नया गाना मेरे फेवरेट आर्टिस्ट तलविंदर की आवाज में, पल पल जीना मुहाल. गाना याद है ना? वेल, ये गाना है क्यों फ्रॉम वेलकम टू द जंगल एंड इट्स हियर ऑन द मिर्ची टॉप 20. नंबर

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिड डे मोहब्बत
2: प्रेजेंटेड बाय एब्सोल्यूट बारबेक्यूज फ्रॉम सेवरी टू स्वीट एक्सपीरियंस द अल्टीमेट फ्लेवर्स एट एब्सोल्यूट बारबेक्यूज
3: मिर्ची स्टोरीज
4: बस 24 घंटे ही रहेंगी
5: यार तूने सुना एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया
6: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी
2: मिर्ची इट्स हॉट अ रिंग फॉर द न्यूली मैरिड क्यूट लिटिल बैंगल फॉर द न्यूबॉर्न
7: अरे यार हॉलिडे सीजन इज हियर और फिर वही गिफ्टिंग का टेंशन फिर मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स गोल्ड एंड समर के साथ आइए फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस और सुनो देयर इज मोर विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन द GCC विजिट मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे
8: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है
9: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6
12: FM मिर्ची वन
0: के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
3: नंबर 14

अनपॉपुलर ओपिनियन बट रोमकॉम्स आर डेड। और शायद सबसे दुख की बात ये नहीं है, सबसे दुख की बात ये है कि हमें पता भी नहीं चला कि ये कब हुआ। नंबर 13 पर इस हफ्ते है तुझको फ्रॉम कॉकटेल बाय अरिजीत सिंह। और इस गाने को सुनते ही मुझे वो वक्त याद आ गया जब बॉलीवुड हमें प्यार पर यकीन दिला देता था।

0: And then you had Bunny or Naina. हम सबको लगा शायद प्यार और सपने दोनों साथ चल सकते हैं. उसके बाद पता ही नहीं चला रोमकॉम्स कहाँ खो गए. फिल्में आज भी बनती हैं, लड़के लड़कियां आज भी मिलते हैं, डेट्स पे जाते हैं, उनके ब्रेकअप्स होते हैं, लेकिन वो धड़कन, वो तड़प, वो थिएटर से बाहर निकलते वक्त दिल का हल्का सा भर आना, वो कहीं रह गया. रोमकॉम्स आर डेड बट नॉट रोमांस. और फिल्में शायद बुरी हो बट कभी कभी उन बुरी फिल्मों में बहुत अमेजिंग म्यूजिक मिलता है. लाइक हंसी तो फंसी, पीपल लव द सॉन्ग ज़हन नसीब द मोस्ट. लेकिन मुझे, वेल आई फेल इन लव विद अ कंप्लीटली डिफरेंट सॉन्ग. आज वी रिवाइंड दिस सॉन्ग बाय सनम पुरी.
1: Top 20 Rewind.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: मिलिन सोमन, आपकी इतनी फिट बॉडी है, क्या आपने कभी इस बॉडी का फायदा उठाया है? आ जा, दिखाता हूँ तुझे, झगड़ा करेगा मेरे साथ।
4: कभी झगड़ा नहीं किया, और टफ फिजिक का मतलब ये नहीं कि झगड़ा करके उसको जस्टिफाई करो। गुड फॉर शो व्हिच इज गुड फॉर माय प्रोफेशन एंड आई वर्क अ लॉट, आई वर्क वेरी हार्ड, सो आई नीड दैट फिटनेस लेवल
3: एंड आई नीड योर मोटिवेशन लेवल। मिलिन सोमन, आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
1: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
2: Only on Mirchi, it's hot.
5: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
6: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
7: बार बार।
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
6: FM मिर्ची वन। It's hot.
0: Surin ke saath only on Mirchi. It's hot.
9: Number 12.

0: इतने महीने बाद भी आफ्टर वॉचिंग बोथ द फिल्म्स एक बात है जो परेशान करती है मुझे अब भी। इज धुरंधर अ रियल लाइफ स्टोरी? क्या इसके कैरेक्टर्स सच्चे हैं? आखिर सच क्या है? इस हफ्ते एक और जासूस की कहानी रिलीज हुई बाय द नेम ऑफ अल्फा। मेरे कई दोस्त हैं जिन्होंने अल्फा देखी और एक बात बार बार सुनने को मिली, पर्सपेक्टिव। और तब मुझे एहसास हुआ कि हर सच के शायद तीन अलग अलग वर्जन होते हैं, एक जो वाकई हुआ है, दूसरा जो हमें बताया गया है, और तीसरा जो हम मान लेते हैं। अब वो चाहे उरी हो, धुरंधर हो या फिर अल्फा हो, सिनेमा सिर्फ कहानियां नहीं सुनाता, वो हिस्ट्री को इंटरप्रेट भी करता है। और वही मेरी सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है। मैं हीरो देखने थिएटर नहीं जाता, मैं सच के जितना करीब हो सकता हूं उतना पहुंचना चाहता हूं। बाकी फैसला आप कीजिए। फिल्म किसकी थी, पर्सपेक्टिव किसका था? अल्फा वेल इज गेटिंग मिक्स्ड रिएक्शंस फ्रॉम द ऑडियंस, बट हाँ, YRF की स्पाई यूनिवर्स पक्का मुश्किल में है। दे बैडली नीड अ रीसेट। नंबर 11 पर है एक और नई फिल्म, बेबी डू डाई डू। आई होप आई गॉट द प्रोनाउंसिएशन राइट। और अफसोस, एक इतनी इंटरेस्टिंग असैसिन थ्रिलर को इंट्रोड्यूस किया गया है इश्क कमीना 2.0 से। कभी कभी सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट फिल्म में नहीं, उसकी म्यूजिक स्ट्रेटजी में होता है।
1: नंबर 11।
2: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याल दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा आम शक्ल ना हो।

0: सिंह के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
1: मैं जब भी पढ़ने बैठता हूँ ना तो नींद आ जाती है।
3: क्यों नहीं हो रही पढ़ाई?
1: क्या करूँ?
2: अरे घोचू, तो लेटे लेटे पढ़ना, अच्छे से सो भी पाएगा रे तू।
4: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
5: Midday Mohabbat presented by Absolute Barbecues. From savory to sweet, experience the ultimate flavors at Absolute Barbecues.

0: बॉलीवुड को समर कॉमेडीज बनाना बहुत अच्छी तरह आता है, जैसे अभी चटनी फ्रॉम धमाल 4, भोजपुरी फ्लेवर, फुल ऑन मजे, एंड गाना चलेगा, फिल्म अपना काम कर जाएगी, एंड देन यू हैव अ वाव फ्रॉम है जवानी तो इश्क होना है। इसके बारे में ज्यादा कुछ वैसे अब कहने को है नहीं, फिल्म आई फिल्म गई, इन गाना रह गया नंबर 9 पर।
1: नंबर 9 सुरमाया खच जद पाओ मुंडे तक केंदे ने जी वाओ, बण मोर नी जी जिधर नु जाओ मुंडे तक केंदे ने जी वाओ।
0: लेकिन फिर कुछ फिल्में होती हैं जो सिर्फ रिलीज नहीं होती, एक दौर को डिफाइन कर देती हैं। इस हफ्ते लोग एक फिल्म के 10 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं, सुल्तान। और मुझे लगता है ये सेलिब्रेशन सिर्फ सुल्तान का नहीं है, ये उस

0: सलमान खान का है जिसके सामने बॉक्स ऑफिस ने घुटने टेक दिए थे। वॉन्टेड, दबंग, रेडी, बॉडीगार्ड, एक था टाइगर, किक, बजरंगी भाईजान, प्रेम रतन धन पायो। उस वक्त फिल्म कितनी अच्छी थी ये फ्राइडे के बाद पता चलता था, लेकिन फ्राइडे से पहले एक बात सबको पता होती थी, सलमान खान की फिल्म एक त्योहार है। फिर सुल्तान आई और आज अगर पीछे मुड़कर देखोगे तो लगता है कि वो सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर नहीं थी, शायद वो एक ईरा का लास्ट स्टैंडिंग ओवेशन था। उसके बाद हिट से ज्यादा सवाल आए ऑन फिल्म्स लाइक रेस 3, दबंग 3, अंतिम, राधे, किसी का भाई, किसी की जान एंड देन सिकंदर। और पिछले 10 सालों से फैन सिर्फ एक ही चीज का इंतजार कर रहे हैं, दैट वन सलमान खान फिल्म जो थिएटर्स में वो पागलपन फिर क्रिएट कर दे, जिसके बाद पूरा देश सिर्फ एक ही बात कहे, भाई इज बैक। मेरा पिक ऑफ द वीक उसी फिल्म से है जिसके 10 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं सब, पापॉन की आवाज में। दिस इज बुल्लेया फ्रॉम सुल्तान, अ विशाल शेखर कॉम्पोजिशन।
1: पिक ऑफ द वीक।

0: Hussain ke saath. Only on Mirchi. It's hot. Mirchi. Iska bana, uska bana, sabka bana. Kya bana? Murga, murga. Nafis wala murga.
1: Mirchi murga. Hello.
2: Sir, very good evening. बैंक से बोल रहा हूँ, मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ दो मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे दो मिनट दे सकते हैं?
1: हाँ जी बोलिए।
2: सर हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
1: आप मुझे पैसे दोगे? हाँ, हिडन चार्जेस?
3: सर इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
1: कौन बोल रही है?
2: सर रमेश ही बोल रहा हूँ। सर मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
1: मुझे क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही?
4: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
1: हेलो कौन बोल रहा है?
2: सर रमेश ही बोल रहा हूँ, मैं इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
1: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
3: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
1: हेलो मैडम।
2: हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ।
1: कौन बोल रहा?
2: रमेश बोल रहा हूँ सर। से
1: अभी कोई और बोल रही थी?
2: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
1: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है, इसमें कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
5: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
1: कौन बोल रहा है?
2: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर, इसमें
1: दो दिन बाद मुझे कॉल कर लेना।
6: सर 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
1: कौन बोल रहा है भैया?
2: सर रमेश बोल रहा हूँ। आप यार उस पे क्यों जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे सर?
1: कभी किसी की आवाज आ रही है, कभी किसी की आवाज आ रही है। नहीं भैया नहीं, नहीं चाहिए मुझे।
7: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
2: आज सबका दिमाग खराब हो गया, अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या क्या
1: कोई बोल रहा है?
2: कौन बोल रहा है यार? मैं बोल आपसे रमेश बोल रहा
8: हूँ। सर मेरी बात सुनिए सर, सर आप सर फोन मत काटिएगा। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं, अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, आप मुर्गा बन गए, आप कुकड़ों को बोल दें जरा हंस के।
9: थैंक यू
10: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
11: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस, और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
12: तो सिर्फ
13: छोरे करें, हमारी चोरियां छोरों से कम है के?
14: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के? कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
15: 89.6 FM मिर्ची वन,
16: इट्स हॉट।
0: के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। नंबर 8।

यार एक बात माननी पड़ेगी, इट फील्स सो गुड टू हियर नीरज श्रीधर वॉइस अगेन, लेकिन इसी गाने ने मुझे एक सच्चाई से मिलवा दिया। हॉलीवुड अपने लेजेंड्स को सेलिब्रेट तो बहुत करता है, बस उन्हें हायर करना बंद कर देता है। नीरज श्रीधर की आवाज आज भी उतनी ही फ्रेश लगती है, फिर नए गाने उनके पास क्यों नहीं जाते? और सिर्फ सिंगर्स ही नहीं, कंपोजर्स भी। एक सवाल आप खुद से पूछिए, आखिरी शंकर एहसान लॉय एल्बम आपने कौन सी सुनी थी, जिसके गाने आपने रिपीट पर सुने, जिसके लिरिक्स आज भी याद हैं आपको? सितारे जमीन पर जो आमिर खान की फिल्म थी उसमें उन्हीं का म्यूजिक था, लेकिन एल्बम वैसे कनेक्ट नहीं कर पाई जितना सबने सोचा था। और उसके बाद इंडस्ट्री फिर नए नामों की तरफ मुड़ जाती है। अजीब बात है राइट, अब से एक महीने बाद we all will be celebrating 25 years of one of the most iconic albums ever. Yes.

चाहता है। पूरा बॉलीवुड इस एल्बम को सल्यूट करेगा, उसकी लेगेसी सेलिब्रेट करेगा, लेकिन जब अगली बड़ी फिल्म बनेगी फोन शायद किसी और कंपोजर को जाएगा। नया हमेशा बुरा नहीं होता, लेकिन नया हमेशा बेहतर भी नहीं होता। नंबर 6 पर है कहर बाय गुरु रंधावा, और शायद यही आज के बॉलीवुड म्यूजिक का टेम्पलेट है। नंबर 6।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
4: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
5: मिर्ची इट्स हॉट।

0: स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसलिए मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसैल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस समोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

शरारत 20 हफ्तों तक जिस गाने ने नंबर वन पर रूल किया आज पहली बार किसी और पोजीशन पर है। और इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि एक गाना नीचे आया है, इसका मतलब ये है कि इस काउंटडाउन को एक नया नंबर वन सॉन्ग मिलने वाला है। वैसे शरारत का मतलब होती है एक छोटी सी प्यारी सी गलती, अ प्लेफुल मिस्टेक। लेकिन बॉलीवुड में कुछ चीजों के साथ शरारत करने की इजाजत नहीं होती, कुछ फिल्मों के साथ, कुछ एल्बम्स के साथ, क्योंकि वो सिर्फ हिट नहीं होती, वो यादें बन जाती हैं। नंबर चार पर इस हफ्ते है चुनरी चुनरी फ्रॉम है जवानी तो इश्क होना है। गाना तो वापस आ गया लेकिन वो फीलिंग नहीं आई, और वही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। क्लासिक को रिक्रिएट करना आसान है, उसकी रूह को वापस लाना नामुमकिन के बराबर। इसलिए आवारापन 2 को लेकर इतनी एक्साइटमेंट है। आवारापन सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वो इमरान हाशमी की वो दुनिया थी जहां गाने खत्म होने के बाद भी हमारे दिलो दिमाग से निकल नहीं पाए। एंड देन वी हर्ड ऑफ आवारापन 2, जिसका नया गाना वे जुनून हमने पहली बार सुना।

Now on first listen, लगा ठीक है. दूसरी बार सुना तो लगा एक सेकेंड जरा रुको. एंड देन तीसरी बार I had goosebumps. ये गाना हिट होने की कोशिश ही नहीं कर रहा, ये आपके अंदर उतरना चाहता है, बिल्कुल स्लो पॉइजन की तरह, जहर की तरह. और तब समझ आया कि लोगों ने वो बात क्यों बोली थी. अखा बॉलीवुड एक तरफ, इमरान हाशमी एक तरफ. माई स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ द वीक इज द सेम टीम दैट इज गिविंग अस वे जुनून इन आवारापन 2. इमरान हाशमी और उनके साथ इस गाने के कंपोजर मिथुन. और इसी कॉम्बो ने एक और गाने में जादू बिखेरा था, जब कई बार दिल टूटने के बावजूद फिर मोहब्बत करने चलता है.

0: सुरेन के साथ only on मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: only on मिर्ची इट्स हॉट।
3: गोविंदा, आपका अल्टीमेट फिटनेस टिप कौन सा है?
4: मुझे ऐसा लगता है योग और प्राणायाम जो है, इससे आपकी बॉडी जो है बहुत ही करेक्ट रहती है और आपको मतलब वो घबराहट नहीं होती है।
3: तो ये एडवाइस आप देंगे कंटेम्प्रेरी हीरोज को?
4: योग प्राणायाम तो करते ही होंगे वो लोग, मुझे ऐसा लगता है।
3: आपको क्या लगता है कौन कौन करता होगा? मैं आपको तीन नाम देती हूँ, इन तीनों में से बताइए, वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जॉन अब्राहम।
4: ये तीनों एक्टर्स ऐसे हैं, इन लोगों की मुझे ऐसा लगता है कि बॉडी ज्यादा अच्छी है और पता नहीं कितने पैक निकले हुए हैं। उस जमाने में तो पूरी शाम में सब लोग हीरो लोग पैक ही लगाया करते थे, अब वो पैक उनके पेट पे आ गए। टेढ़ा मेढ़ा क्या नजर आ रहा है, ये पेट है इनका? ओहो, अच्छा अच्छा, फाइन फाइन फाइन, वेरी गुड वेरी गुड।
3: फिटनेस का पता नहीं लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर पर 110 फॉर चीची। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: नंबर 3।

0: ऊंचा लंबा कट फ्रॉम वेलकम टू द जंगल। हाय, बॉलीवुड सीक्वल्स बहुत बनाता है, लेकिन इंसान, एक इंसान के सीक्वल्स बहुत कम देखने को मिलते हैं। इस हफ्ते रणवीर सिंह टर्न्ड 41 और मुझे एहसास हुआ कि पिछले 16 सालों में मेरी मुलाकात 3 अलग अलग रणवीर सिंह से हुई है।
1: मैं तो बॉलीवुड का सब्सक्राइबर रहा हूँ अपने बचपन से, लेकिन ओवर द इयर्स हमारी इंडस्ट्री में भी एवोल्यूशन आया है। जैसे कि पहला था, आज ऐसा बिल्कुल नहीं है। थिंग्स आर लॉट मोर कॉर्पोरेट, लॉट मोर स्ट्रीमलाइंड, प्रोफेशनैलिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है इंडस्ट्री में। तो मुझे खुशी है कि मैं ऐसे टाइम पर आया हूँ जब अलग टाइप की फिल्में बन रही हैं और इंडस्ट्री इतनी एक्सपैंड हो गई है। मैं आदि सर का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी पहली फिल्म दी, और मेरे तो बचपन का सपना पूरा हो गया जी, मैं क्या बताऊँ।
0: एक वो रणवीर था जो हमें बैंड बाजा बारात के बाद दिखा, नया, बेचैन, ओवर द टॉप। जैसे हर इंटरव्यू में वो दुनिया को ये यकीन दिलाना चाहता था कि मैं यहाँ टिकने आया हूँ।
2: क्या बोलूँ यार, इट्स अ वेरी ब्लेस्ड टाइम, अच्छा टाइम चल रहा है, टचवुड कुछ तो अच्छा किया होगा। बट ट्रूथ बी टोल्ड, इट्स वेरी ओवरवेलमिंग। इट्स लाइक लाइफ हाईलाइट आफ्टर लाइफ हाईलाइट। आई एम लाइक, व्हाट्स गोइंग ऑन, आई डोंट नो व्हाट एल्स टू डू बट सेलिब्रेट। And people are recognizing that now more than ever before. You know, they did kind of in like 13, 15. There was Lutera and Ramlila in 2013. Yeah. There was Dil Dhadakne Do Bajirao Mastani in 15. Now it's like Khilji, Simba and Karni Boy. It's like, wow. So it's a conscious endeavor to, you know, showcase that versatility. And it's all happening. So I'm really happy about it.
0: Phir mila dusra Ranveer. Ab wo superstar ban chuka tha. Use apne talent ka andaaza tha. Use pata tha ki wo kitna achha actor hai. रॉनस की जगह यकीन आ चुका था, लेकिन उसकी एनर्जी अभी उतनी ही बड़ी थी जितना उसका एम्बिशन। लेकिन अब भी वो बेचैन था। और फिर आया तीसरा रणवीर, खामोशी, नो इंटरव्यूज, नो हेडलाइंस, नो एक्सप्लेनेशंस, सिर्फ एक फिल्म और उसके दो हिस्से, जिसने दुनिया से बाकी सब कुछ कह दिया। अजीब बात है ना, करियर की शुरुआत में रणवीर चाहता था कि दुनिया उसे सुने, आज दुनिया उसे सुनना चाहती है, लेकिन मिल रही है तो सिर्फ खामोशी। आई टोल्ड यू, आज वी अबाउट टू गेट अ ब्रांड न्यू नंबर वन सॉन्ग। लेकिन ये गाना ब्रांड न्यू है नहीं, ये वो गाना है जिसे हमेशा नंबर वन होना चाहिए था, क्योंकि इसमें भी खामोशी है, एक गहरी वाली खामोशी। द नंबर वन सॉन्ग ऑन द मिर्ची Top 20. Number 1.

0: The Crown is now on the best song of the show. शायद इसी में इस गाने की सबसे बड़ी जीत छुपी है। इसने हमें याद दिला दिया कि हर चीज वायरल होने की जरूरत नहीं होती। कुछ फीलिंग्स, कुछ वाइब्स धीरे धीरे दिल में उतरती हैं और फिर वहीं रह जाती हैं। इट्स टाइम टू एंड दिस एपिसोड ऑफ द मिर्ची टॉप 20, बट फिर मिलूंगा। इनफैक्ट मैं भी वापस आऊंगा। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम, सरीन ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन?
3: नहीं नहीं हेल्पलाइन मिर्ची, अपना सवाल क्या है वो बता बच्चू।
2: अरे भाई क्या बोलूं आपको, इधर घर ढूंढना इतना टफ है, कब से ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा, क्या करूँ?
3: अबे सबसे पहले तो ये बता कि तू किसका घर ढूंढ रहा है, तभी तो हेल्प कर पाऊंगा ना।
4: मैं दिल में आता हूँ, समझ में नहीं।
5: Midday Mohabbat presented by Absolute Barbecues. From savory to sweet, experience the ultimate flavors at Absolute Barbecues.

أشهد أن لا

0: जिस काम के लिए तुमने गाड़ी ली है ना वही करो। हाँ जी, इलीगल कोई काम नहीं। वेल, बता दें मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने एक एडवाइजरी रिमाइंड कराई है मोटरिस्ट को जो कि प्राइवेट व्हीकल नंबर प्लेट के साथ इलीगल टैक्सी चला रहे हैं। #974974 मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने ऐसे लोगों को याद दिलाया है कि आपने व्हीकल को जिस भी पर्पज से लिया है अगर उस पर्पज के अलावा आप इसको यूज कर रहे हैं पर्टिकुलरली ऑपरेटिंग देम एज टैक्सीज तो याद रखिए ये एक ट्रैफिक वायलेशन का बहुत बड़ा फाइन आप पर आ सकता है। लीगल अकाउंटेबिलिटी आपकी बढ़ने वाली है तो प्लीज इस बात को याद रखिए कि हमें ऐसे ऑफिशियल चैनल्स के ही थ्रू ऑफिशियल टैक्सी सर्विसेज कंपनी के ही थ्रू जाना है जो कि रजिस्टर्ड है। ऐसा कोई भी इंसान जो कहता है हेलो घर जोड़ दें हाँ जी चलेंगे, इनसे थोड़ा बच कर रहिए। पहली बात तो ये प्राइवेट व्हीकल को यूज कर रहे हैं लाइसेंस टैक्सी की तरह जो कि ट्रैफिक वायलेशन है और ऊपर से आप एक रियाल दो रियाल बचाने के चक्कर में खुद को भी मुसीबत में डाल रहे हैं क्योंकि जब कोई गलत काम कर रहा होता है तो उसमें आप भी जाकर जब उसके भागीदार बन जाते हैं पार्टिसिपेंट बन जाते हैं तो आपके ऊपर भी प्रॉब्लम आ सकती है। इस बात को समझिए, ऐसे लोगों को बिल्कुल बढ़ावा मत दीजिए। आई एम श्योर आप समझदार हैं, इशारा काफी है, आपको मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने समझा दिया। 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
2: अच्छा।

0: Mirchi.
1: Buscaba la buscabana, sacabana. Murga, murga. La viva la murga.
2: Mirchi, murga.
3: हेलो
4: सर, वेरी गुड इवनिंग, मैं सेल्यूलर से बोल रहा हूँ। सर हमारी एक स्कीम आई है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको समझाऊँ। ये वॉइस मेल के लिए है, अगर आप चाहते हैं और आपको इंग्लिश नहीं आती है सपोज माने आप, तो आप कोई भी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको आगे भेज सकते हैं।
3: अच्छा,
4: आप हिंदी में अपना मैसेज छोड़ेंगे और हमारी मशीन उसको कन्वर्ट करके दूसरी लैंग्वेज में डब कर देगी सर, जिसका सर कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मंथली कोई चार्ज नहीं लगेगा। सर आप चाहेंगे ये स्कीम आपको दे दी जाए?
3: के पास है क्या ये सर्विस?
4: बिल्कुल सर, कोई एडिशनल चार्जेस नहीं है सर, जो आपका नॉर्मल प्लान चल रहा है उस प्लान के अकॉर्डिंग आपका बिल आएगा, सिर्फ आपकी एक फैसिलिटी बढ़ जाएगी।
3: जो क्या कॉस्टिंग पड़ेगा पर मैसेजेस का?
4: सर आप दिन में अगर 100 मैसेज भी भेजते हैं तो आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा, आपका नॉर्मल रेंट रहेगा जो आपका चल रहा है अभी।
3: ठीक है,
4: बीप सुनने के बाद अपना मैसेज छोड़िएगा।
3: ओके अगम सर, मुझे आपके अंडर में काम करना बहुत अच्छा लगता है, तो आप प्लीज मुझे अपनी टीम में रख लीजिए।
4: सर वेरी गुड, आपका मैसेज रिकॉर्ड हो गया सर, हमने इसको दूसरी लैंग्वेज में डब कर दिया, अब आपके बॉस ये सुनेंगे, सुनिए।
3: ये क्या है भैया?
4: सर ये आवाज तो आपकी लग रही है, मुझे लग रही है सेंटेंस इधर उधर हो गए।
3: तो मशीन मशीन चलाने आती भी है
4: सर, मैनेजर के अलावा किसी और को मैसेज देखे देखिए।
3: हेलो वीना मैम, प्लीज अभी जो आ रहा है प्रोजेक्ट उसके लिए मुझे नॉमिनेट कर लीजिए अपनी टीम में।
4: सर थैंक यू सो मच, आपका रिकॉर्ड हो गया, वीना मैम को ये सुनाई देगा।
3: मजाक कर रहे तू मेरे से?
4: सर मेरी बात सुनिए, ये जो मेरी बात सुनिए सर, सर सर सर सर सो सॉरी, आई एम सो सॉरी सर, जितना आप मुझ पे चिल्लाए हैं मैंने रिकॉर्ड कर लिया। देखिए अब सही आएगा, देखिए ये दूसरी लैंग्वेज में आएगा, रुकिए सर आप। हेलो मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात तो सुनिए सर, मैं इतनी गाली नहीं सुन सकता सर, मैं इतनी।
5: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, मैंने तो रैंडमली आपका नंबर मिला दिया था सर, दिल्ली में सब आपको सुन रहे हैं, आप रेडियो मिर्ची में मुर्गा बन गया है आपका, प्लीज इतनी गाली मत दीजिए यार।
4: सर मैंने ये भी रिकॉर्ड कर लिया, देखिए सुनिए क्या आया है, डबोगे
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट,
7: इट पटाक।
8: ओ भाई जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक, बैक टू बैक।
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6
11: FM, Mirchi 1. It's hot.

0: आज के बच्चों के लिए तो मोबाइल की जो स्क्रीन है ना, वो उनका प्ले जोन है। एक हमारा दौर था, मोहल्ले की हर बिल्डिंग हमारा प्ले जोन होती थी। आई स्पाई से लेकर चेन, विच कलर यू वांट, टिप्पी टॉप, सब खेला हमने। ये बच्चों से सब कुछ दूर हो गया, लेकिन उनके अंदर फिर से बहुत सारा प्यार जगाई है टॉयज के लिए, क्योंकि जो बच्चे इस बार घर नहीं जा पाए हैं, DCC में आ चुका है कतर टॉय फेस्टिवल। यस, अब शुरुआत हो चुकी है। 31 जुलाई तक कतर टॉय फेस्टिवल का 4th एडिशन चलेगा, एंड बच्चों के लिए इस बार भी कुछ कमाल के जोन है। अगर हम यूथ जोन की बात करें, पबजी मोबाइल, पॉपी प्ले टाइम, चैंपियंस लैंड, ये बनाई गई है। वही बहुत सारे अरीना है जिसमें हॉट व्हील्स, टैकमैन भी है, और तो और बड़ी बात यह है कि फ्लिंटस्टोन्स, मिकी माउस, फैंसी लैंड, सब कुछ है। डिज्नी प्रिंसेस, फ्रोजन, क्यूटी पाई लैंड, लीलो एंड स्टिच, पॉ पेट्रोल, वन ऑफ माई फेवरेट दीज डेज। कुल मिलाकर ये वो जोन है जो बच्चों के लिए बनाए गए हैं। जाइए एक बार तो मजा लेकर आइए, एंड मुझे लगता है बच्चों के लिए थोड़े से पैसे जेब ढीले कर अगर उनके अंदर बचपन में खिलौनों का प्यार फिर से जगा दिया तो कोई बुराई नहीं है। वरना बच्चों को आज के लिए यही लग रहा है मोबाइल ही उनके लिए असली खिलौना है। मम्मी पापा किसी भी पार्टी में जाएं, बच्चे सीधे आते हैं, पापा मोबाइल दे दो, मम्मी मोबाइल दो, मुझे खेलना है जी। उनको बताओ कि ऐसे खिलौने होते हैं, हमारे जमाने में यही सब खेलते थे, मोबाइल नहीं। 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट।
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: में चीज स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
3: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझो।
6: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
7: बहुत कुछ होगा।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
10: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

अरे ऐसी टैक्सी में सफर करना किसी सपने से कम थोड़े। यस, हमारे खतर में अगर हम इलेक्ट्रिक रोबो टैक्सीज की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के अंदर में इसका सेकंड फेज ऑफ टेस्ट एंड ट्रायल पूरा हो गया है। यस, रोबो टैक्सीज जो कि राउंड ट्रिप के लिए हेडक्वार्टर्स ऑफ एमओटी से लेकर ओल्ड दोहा पोर्ट के बीच चल रही थी, अब इस प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल होने के बाद अब फाइनली हम फेज टू की तरफ बढ़ रहे हैं। यस, बता दें इलेक्ट्रिक रोबो टैक्सीज ने अपना ट्रायल रन दोहा में पूरा कर लिया है। सेकेंड फेज के लिए तैयारियां जोर शोर पर हैं और अगर सब कुछ सही रहा तो जल्द ही आपको एक नई फेज दिखाई देगी जहां पर ढेर सारे करवा की यही रोबो टैक्सीज जो है हमारे कतर के अलग अलग कोने में आपको दिखाई पड़ेगी। एंड आप कहेंगे भाई ड्राइवर है नहीं, अपने आप चल रही है। तो यस चल रही है सर, क्योंकि कुछ लोगों के दिमागी मेहनत और कुछ रोबोट्स की टेक्निक से हम कतर में से सक्सेसफुली लॉन्च करने जा रहे हैं। तो उस सारी टीम को दिल से शुक्रिया मवासलात करवा की जो इस पूरे प्रोजेक्ट पर मेहनत से काम कर रहे हैं। सारे ऑफिसर्स को दिल से थैंक यू, क्योंकि दुनिया में अगर कुछ नजीर यानी कि एग्जाम्पल बनाना है तो कतर जैसा बनाओ। कमिटमेंट को समय से पहले पूरा करो और दुनिया को दिखा दो कि हमने जो चाहा वो कर दिखाया। ऑल द बेस्ट इस बात पे। बस इतना ही कहेंगे, कुनाफा या बकलावा है तो भिजवाओ हमारे यहाँ। वैसे तो आज वर्ल्ड चॉकलेट डे है, वो भी भिजवा सकते हो। मिर्ची थॉट

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: John Abraham, आपके हिसाब से the top fit boys of the Hindi film industry.
3: First reference is always going to be Varun Dhawan and I'll tell you why. क्योंकि वरुण का जो physique है वो बहुत ही proportionate है. उसके legs बहुत ही strong है. Tiger Shroff, fantastic body. Ranveer Singh, extremely, extremely fit. And of course, Hrithik Roshan. Honestly, amongst all these, including myself, I think सबसे fittest इंसान हमारे industry में is Akshay Kumar. And I mean holistically fit. He can survive anywhere. अगर आप उसको Mount Everest पे छोड़ दो, अगर आप उसको रेगिस्तान में छोड़ दो, Akshay Kumar will be the only guy who will survive and come out.
2: छोड़ने की जरूरत ही नहीं है जॉन अब्राहम. अक्षय कुमार इज द ओनली पर्सन इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो बाय चॉइस इन जगहों पर जाएंगे. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट. शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर.
4: हेलो शॉप्स, आर प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है. मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं
5: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा.
4: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं
6: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा.
4: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो.
7: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी. ना इक्विटी देना है, ना इधर उधर भटकना है. गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट.
8: Qatar's number one Hindi radio station, Mirchi. Take your partner with us now. Your business will go wow. Call now. 7070-7687.

0: 89.6 मिर्ची वन पर मैं हूँ आरजे मस्मोल और गौरव। सूरज चाचू की गर्मी का पारा बरकरार और उनका रिमोट लगता है ब्राइटनेस वाला कहीं खो गया है।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट।
0: बस दिन के मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये आज पहुंच गया 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास और दिन का मिनिमम अराउंड 31 आएगा। हवाओं की रफ्तार पिछले दिनों के मुकाबले जरूर कम हुई है, अराउंड 14 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती ये हवाएं उतने लू के थपेड़ों वाली फीलिंग तो नहीं दे रही है, लेकिन इसके साथ ह्यूमिडिटी का परसेंटेज बहुत तेजी से बढ़ रहा है, आज 28% है। एंड कतर मीटियोलॉजी डिपार्टमेंट ने कहा है कि आज देर रात काफी ज्यादा गर्म रात होने वाली है, और मैं तो कह रहा हूं जब गर्म रात होती है तो अगला दिन सुबह नहीं होती है, सीधे दोपहर ही होती है। तैयार हो जाइए हमारे कतर में गर्मी का चरम देखते रहिए, एंड मिर्ची पर अच्छे अच्छे गाने सुनकर मन को और कान को ठंडक देते रहिए। मिर्ची, इट्स हॉट।
2: वेदर चेक ब्रॉट टू यू बाय RSL ग्रुप ऑफ कंपनी। आओ कतर में डिलीवरी राइडर्स और ड्राइवर की जॉब। फॉर ब्राइट फ्यूचर कॉल नाउ 3100-0813।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: हाय देयर, व्हाट्स अप, टेल मी।
0: हमारी काम वाली बाई बहुत इरेगुलर है, हर दूसरे दिन नहीं आती, क्या करूं?
1: वेल इट्स सो सिंपल यार, हर दूसरे दिन नहीं आती ना, तो उसको हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही काम पे रखा कर। या इट्स जस्ट अमेजिंग, फैंटास्टिक, सिंपल।
0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: हाय देयर, व्हाट्स अप, टेल मी।
0: हमारी काम वाली बाई बहुत इरेगुलर है, हर दूसरे दिन नहीं आती, क्या करूं?
1: वेल इट्स सो सिंपल यार, हर दूसरे दिन नहीं आती ना, तो उसको हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही काम पे रखा कर। या इट्स जस्ट अमेजिंग, फैंटास्टिक, सिंपल।

0: Sham Shandar with Mirchi Gaurav. Only on 89.6 Mirchi 1. Qatar mein Bollywood ka Mirchi wala tadka. It's hot. Sham Shandar brought to you by Kim's Health Medical Center. Mirchi. Fresh maal.
1: धमाल 4 में धमाल मचाने आ रहा है कहर।
2: तेरी माँ दिया फेरे कुड़ी।

0: इस गाने को आवाज दी है गुरु रंधावा ने। म्यूजिक एंड लिरिक्स बाय गुरु रंधावा, गिल मचरई एंड रॉनी अजनाली। धमाल फोर से सुनते रहिए कहर, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन कतर इसे आसानी से कर रहा है।
2: मस्त मौला गौरव।
1: अरे अपने उस कमिटमेंट को पूरा कर रहा है जो उसने कहा है कि वो अपने यहाँ कार्बन न्यूट्रलिटी को बढ़ाएगा, सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देगा, उस पर कमिटमेंट को पूरा करते जा रहा हमारा कतर।
3: #974
1: इको फ्रेंडली है, यूँ कहूंगा एक ऐसे प्राउड न्यूज जो की कतर म्यूजियम की वजह से कतर के हाथ लगा है। यस, यहाँ पर एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया हमारे कतर ने। वेल बता दें, नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर, म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट, फायर स्टेशन और अल जुबारा फोर्ट को अब ऑफिशियली कार्बन न्यूट्रलिटी सर्टिफिकेशन मिल गया है।

0: Yes, और ये बात क्या है, अल ज़ुबारा फोर्ट पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में अब ऐसा पहला यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज बना है जहां पर कार्बन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के लिए उसे ISO स्टैंडर्ड दिया गया है, यानी कि कार्बन न्यूट्रलिटी का वो सर्टिफिकेट जो अभी तक मिडिल ईस्ट रीजन में और किसी भी इस तरह के मॉन्यूमेंट्स या साइट को नहीं मिल पाया। अगर आप मेरी बात करें तो बस मैं इतना ही कहूंगा, ये कमाल है और बहुत ही इंस्पायरिंग स्टेप है पूरी दुनिया के लिए। हमेशा कतर एक मिसाल बन रहा है और जिस तरह से कतर सस्टेनेबिलिटी को लेकर सीरियस है, बाकी सारी कंट्रीज हमारे कतर से ही सीखेंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मुझे यही लगता है आने वाले टाइम में, ये तो बस शुरुआत है, कतर का हर बड़ा इंस्टीट्यूशन, उसकी बिल्डिंग, सब कुछ सस्टेनेबिलिटी और कतर नेशनल विजन 2030 से ऐसा लाइन करेगी कि हम दुनिया के इकलौते देश बनेंगे जहां सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूशन, बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट्स होंगे जो कि कार्बन न्यूट्रलिटी सर्टिफिकेट पर आएंगे। बस उम्मीद कीजिए, इस पर यूं ही काम करते रहे, थोड़ा फर्ज हमारा भी बनता है। अगर अगली बार अगर आप रिफ्यूज करें किसी प्लास्टिक प्रोडक्ट को, रीयूज करें या फिर रिसाइकिल करें तो ज्यादा बेहतर है। मिर्ची इट्स हॉट।
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Energy.
1: Escabana, escabana, sacabana.
2: Rambala.
1: Burga, burga. La vieja la burga.
2: Energy, burga.
3: Hello.
4: Hello, Tejinder ji.
3: हाँ जी,
4: हाँ जी तेजेंद्र जी, मैं बोल रहा हूँ पासपोर्ट ऑफिस से। आपने अप्लाई कर रखा था पासपोर्ट?
3: जी, हाँ जी किया था।
4: हाँ, ये तेजेंद्र जी आपका थोड़ा लेट मिलेगा पासपोर्ट, आपको ये इन्फॉर्म करने के लिए फोन किया था मैंने।
3: कितना लेट मिलेगा
4: आपको इसमें? एक सेकंड रुकिए, मैं चेक कर लेता हूँ। अरे इनका तेजेंद्र का पासपोर्ट कब मिल रहा है? तत्काल में, आपने तत्काल में बनवाया ना इमरजेंसी में?
3: हाँ जी,
4: एक सेकंड। हाँ इमरजेंसी का है सर, 3.5 महीने बाद मिलेगा आपको पासपोर्ट।
3: 3.5 महीने बाद?
4: हाँ जी
3: भाई साहब, तत्काल का क्या मतलब होता है? 5 दिन में मिलता है तत्काल का? तो
4: सर वो मुझे ही मालूम है, मेरे को क्यों समझा रहे हैं। असल में तेजेंद्र जी वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, आपके आसपास कोई है तो नहीं?
3: नहीं कोई नहीं है।
4: ये कह रहा था, हमारा एक बंदा है जिसकी शक्ल आपसे मिलती है, ठीक है?
3: अच्छा।
4: बिल्कुल वो डिक्टो कॉपी लगता है आपका, जीरोक्स लगता है। अच्छा, उसको निकलना है दुबई। वो वैसे तो निकल नहीं सकता अपने पासपोर्ट से क्योंकि पुलिस पकड़ लेगी, तो हम कुछ दिन के लिए आपके पासपोर्ट पे से आपका फोटो हटा के, ना आपकी दाढ़ी होती तो चल जाता, उसका फोटो चिपका के आपके नाम से वो दुबई जाएगा। वो 3-4 आदमियों को ठिकाने लगा के वापस आ जाएगा, तो उसमें 3-4 महीने लगेंगे।
3: क्या बोल रहा है भाई, कौन? हेलो।
4: तो मैं उसको बोल देता हूँ, वो वहाँ पे वो आपके घर पहुँचवा देगा। आप बल्कि वो बंदा ही।
3: हेलो।
4: हाँ बोलिए बोलिए।
3: क्या बोल रहा है भाई,
4: आपके पासपोर्ट पे उसका फोटो लगा के आपके नाम से वो दुबई जाएगा, 2-3 को ठिकाने लगाना, वापस आ जाएगा, उसका जरूरी काम है।
3: मैं बोल रहा हूँ,
4: मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ।
3: क्या बोल रहा है, क्या
4: आप इतना भड़क क्यों रहे हो? काम आप थोड़ी करने जा रहे हो, काम तो वो लगाने जा रहे हैं ठिकाने।
3: नहीं, बात क्या कर रहा है, पासपोर्ट पे किसी और को भेज रहा है
4: यार। आप मेरी तेजेंद्र जी,
3: नहीं
4: सोचो वो कितना भड़क रहा होगा, 3 आदमियों को उसको टपका के आना है दुबई में, उसकी भी तो भड़कन सोचो ना। अरे तो यार आपका पासपोर्ट आपको वापस मिल जाएगा, 1.5 महीने के लिए आपका नाम यूज कर रहा है। आपका नाम यूज करने में क्या आपकी गाड़ी मांग रहा है क्या? गाड़ी यूज कर रहा है वो?
3: नाम बता पहले, कौन रहा है?
4: ये लकी डॉ निकल रहे हैं, वरना किसी और तेजेंद्र को भेज देते। आपका मौका लगा, आप ऐसे भड़क रहे हो उल्टा। मेरी बात सुनिए तेजेंद्र, तेजेंद्र मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और तुम रेडियो मिर्ची पे हो। मुझे शालिनी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने कहा था कि तुमने पासपोर्ट अप्लाई कर रखा है, तुम्हारा मुर्गा बनाया भाई, तुम बहुत गुस्से वाले हो, तो मैं सोच रहा हूँ तुम्हें दुबई भेज दूँ, उसे नहीं भेजूं।
2: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: अर्ज किया है
6: इरशाद।

0: IPay payments ka wah tarika. With IPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the IPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. IPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष, महापुरुष।
0: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
2: 89.6 FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: जिंदगी में ज्यादा मीठा डायबिटीज लाता है और कोल्ड ड्रिंक में ज्यादा मीठा ज्यादा टैक्स। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हमारे कतर में जनरल टैक्स अथॉरिटी ने एक ऐसा ही नया रूल निकाल दिया है
1: #974974
0: इफेक्टिव फ्रॉम July 6 इसकी शुरुआत हो गई है, जहां पर जनरल टैक्स अथॉरिटी ने क्लियर किया है कि जितनी ज्यादा चीनी होगी उतना ही ज्यादा एक्साइज टैक्स देना होगा आपको पैक्ड जूसेस एंड ड्रिंक्स के लिए। यस बता दें इसे टियर्ड वॉल्यूमेट्रिक मॉडल कहते हैं। इसमें जितना स्वीटेंड ड्रिंक्स सॉफ्ट ड्रिंक्स या जूसेस होगा शुगर कंटेंट के हिसाब से उस पर उतना टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा, यानी कि हेल्थ के लिए भी और पॉकेट के लिए भी कम मिठाई अब बेहतर है भैया। बिल्कुल मिलाकर कतर में हाई शुगर बेवरेजेस को टारगेट करते हुए सिर्फ और सिर्फ उन ड्रिंक्स पर टैक्स भेजा जाएगा जिसमें शुगर लेवल्स काफी ज्यादा हाई है। टैक्स रिटर्न की टाइमलाइन टैक्स पेयर्स को दी गई है 90 डेज के अंदर धरीबा प्लेटफॉर्म पर वो रिटर्न सबमिट करने होंगे और सिर्फ पैकेज आइटम्स पर ये टैक्स लगने वाला है। याद रखेगा जो फ्रेश जूसेस हम पीते हैं, जो सामने हमें जूसेस मिलते हैं कैफेटेरिया से लेकर कुछ टी शॉप्स पर, उस पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं है। वैसे जितना कम मीठा पियोगे उतना ही टैक्स और डायबिटीज दोनों से बचे रहोगे, समझ लो। एंड मुझे लगता है एक शानदार नियम जो आने वाले टाइम में लोगों को और फिट एंड फाइन एंड हेल्दी बनाएगा, इसी उम्मीद में कि आगे ऐसे ही और भी ढेर सारे टैक्सेस हमारे और आपकी जिंदगी में फिटनेस को लेकर आएंगे। मस्मोलो गौरव आगे बढ़ता है मिर्ची पर। इट्स हॉट
2: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: अब बोर्डिंग पास के लिए दिमाग नहीं लगाना है, सीधे अपने डेस्टिनेशन के लिए आगे बढ़ जाना है। यस, हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अब आपके लिए एक और बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। #974974 कतर एयरवेज हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने मिलकर एक नया बायोमेट्रिक सिस्टम लॉन्च किया है। अब बार बार जो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स या बोर्डिंग पास दिखाने की जरूरत आपको पड़ती थी वो बिल्कुल नहीं पड़ेगी। आपका चेहरा ही आपका डिजिटल बोर्डिंग पास बन जाएगा। यस, चेक इन के वक्त एक बार आपको बायोमेट्रिक प्रोफाइल बनानी होगी, उसके बाद बैग ड्रॉप कीजिए, सिक्योरिटी और बोर्डिंग गेट्स पर सिर्फ फेस से आपका स्कैनर हो जाएगा, कोई बोर्डिंग पास वास की जरूरत नहीं। हालांकि कतर एयरवेज के उन पैसेंजर्स के लिए ये वाली सुविधा है जो अभी 18 प्लस है और जिनकी जर्नी ही स्टार्ट हो रही है दोहा से। वेल, ये फिलहाल सिर्फ कतर एयरवेज के उन पैसेंजर्स के लिए है जो 18 प्लस है। इस बात को याद रखेगा, आप या तो फिर कतर एयरवेज पर प्री रजिस्टर कर सकते हैं या फिर एयरपोर्ट के रो 3 पर सारे सेल्फ सर्विस कियोस्क पर जाकर भी इसे सेटअप कर सकते हैं। ये सर्विस फिलहाल पैसेंजर्स विद डिसेबिलिटीज के लिए अवेलेबल नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा इंतजार करना है अगर आप डिसेबिलिटीज के साथ जाते हैं हमारे कतर में। लेकिन आने वाले टाइम में ये आपके लिए भी सर जल्दी से जल्दी पाइपलाइन हो जाएगी। अगले सफर के लिए लाइन में लगने की तैयारी बिल्कुल छोड़ो, बायोमेट्रिक अपनाओ और फटाफट से इस डिजिटल वाले फेस रिकॉग्निशन से ही पास कर जाओ। 89.6 मिर्ची 1, यार कुछ अलग ही करता है हमारा कतर है। मिर्ची थॉट
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरी
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
3: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
4: मिर्ची, इट्स हॉट। अ रिंग फॉर द न्यूली मैरिड, क्यूट लिटिल बैंगल फॉर द न्यूबॉर्न।
5: अरे यार, हॉलिडे सीजन इज हियर और फिर वही गिफ्टिंग का टेंशन। तो फिर मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स गोल्ड एंड समर के साथ पाइए फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस, प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस। और सुनो, देयर इज मोर। विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया, यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन द GCC। विजिट मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
6: अरे करण अर्जुन आमिर शाहरुख ऋतिक अक्षय इमरान सबके गाने आएंगे दीदी।
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

नहीं गर्मी में नहीं, जाड़े में लौंग इलायची और अदरक पड़े तो आनंद अलग होता है चाय का। चले जी, मस्त मौला गौरव आपके साथ है और हम वो लोग हैं जिनको चाय के लिए सुबह शाम दोपहर देर रात कभी भी पूछो ना नहीं करते। भाई चाय चीज ही ऐसी है जिसके लिए ना कैसे किया जाए, और जो नहीं पीते वो हमारी इस बात को समझ भी नहीं सकते। इस उम्मीद में कि आप भी ऐसे ही चाय लवर हैं और चाय के लिए आपको बस बहाने ढूंढने पड़ते हैं, तो आप मेरे जैसे हैं, कभी हमें भी चाय में बुला लीजिए। हम बुलाएंगे तो आप कहेंगे बड़ी खराब चाय बनाते हो, लेकिन हमें पता है आप बहुत अच्छी बनाते हैं। चलिए, जिस उम्मीद में कि कभी हम आप मिलकर साथ बैठकर चाय पिएंगे, गपशप लगाएंगे, ढेर सारे बातों को एक बार फिर से याद करेंगे। मस्त मौला गौरव ले रहा अलविदा, एक बार फिर से आएगा शाम शानदार लेकर यही मिर्ची पर। तब तक के लिए कान गड़ाए रहो, वॉल्यूम बढ़ाए रहो और मिर्ची लगाए रहो, क्योंकि 89.6 मिर्ची वन हॉट है हरारा कतीर।

0: बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: आमिर खान इतनी सारी फिल्में और हर फिल्म में एक अलग फिजिक। What is the ultimate fitness tip?
2: I know everyone says this, but I can't stress how important it is to be regular in your workout. And along with that, for the best results, you need to have a very balanced and healthy diet. आम तौर पे लोग high protein diet करते हैं. You know, that's not healthy. The body needs proteins, but also needs carbohydrates. It needs fat. It needs everything. So we must have a balanced diet and a healthy diet and rest. You have to sleep well. You have to rest well.
1: Sleep well. ओहो हो हो, फिर तो फिट होना मुश्किल है आमिर खान। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
4: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
5: कैसे रुक सकता है?
6: Qatar ka number one radio station. 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: जी बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन, बताइए क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए।
1: बूढ़ी बाबा, मेरे पति को मेरे हाथ की रोटी अच्छी नहीं लगती, क्या करूँ?
0: तो सिंपल है ना, तुम्हारे हाथ की रोटी मत खिलाओ, आंटी की खिला दो।
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का हंस।

0: हैं कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची पर अब बारी है फॉर असली पॉप काउंटडाउन ऑफ द वीक। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika ऑन इंस्टाग्राम। हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों में एक नई एंट्री है, हमारा 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक है ऑफकोर्स एज अ स्पेशल स्पॉटलाइट। ऑल दिस एंड मोर, तो सीधा शुरुआत करती हूँ इस हफ्ते की विद गाना नंबर 10। हर्ष नुसी की आवाज, हर्ष नुसी दीप क्लेयर की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स। गाने का नाम है साडी सुन। तीन हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार साडी सुन इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद अनीश सरकार का उड़ी उड़ी पांच हफ्तों से इस काउंटडाउन पर अपना धावा बना के बैठा है। पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार उड़ी उड़ी इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। ये दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
2: नंबर 10।

0: जैसे साउंड करते हैं, ये वाला सुनिए, अनीश सरकार हृदय का गाना, गाने का नाम है उड़ी उड़ी, व्हाट अ बैंगर ऑफ अ सॉन्ग, पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार, दिस वीक ऑन गाना नंबर 9।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाए, मेरा हैंडल इज @RJKanika। फॉलो करना बिल्कुल फ्री है, पूरे दिन इंटरनेट पे बैठे रहते हैं, तो कोई गाना सजेस्ट करना है, बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। इस काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है, इट्स बाय एन आर्टिस्ट जिनकी आवाज सुनते ही ना, मतलब मेरे को एकदम वो मजे आ जाते हैं। यू नो देयर आर दीज वॉइसेस व्हिच मेक यू फील रियली हैप्पी, वो बोलते हैं खनक है उनकी आवाज में। आई एम टॉकिंग अबाउट एश किंग, जिन्हें मोस्ट पॉपुलरली हम जानते हैं एज वॉइस बिहाइंड सॉन्ग्स लाइक
2: आई लव यू।
0: कुछ बात उनकी आवाज में सुनते ही ऐसा मूड अच्छा हो जाता है। एंड इस आवाज को ढूंढ के हमारे पास लाए थे AR रहमान। साल 2009 में दिल्ली 6 में उन्होंने अपना पहला हिंदी गाना गाया था। एंड द फनीएस्ट पार्ट अबाउट दैट कोलैबोरेशन इज दैट उस समय एश किंग की हिंदी डिक्शन इतनी अच्छी नहीं थी, वो बस UK से आए थे, बट AR रहमान सर ने उन्हें सुना एंड ही वॉज लाइक आप मेरे लिए ये गाना गा रहे हैं। एंड तब एश किंग ने AR रहमान के लिए ये वाला गाना गाया। गाने का नाम है दिल गिरा दफतन। दिल्ली 6 की बहुत बड़ी एल्बम मसक अली अर्जियां के पीछे अगर इस गाने को भूल गए थे तो वापस इसको याद कर लीजिए। तब से लेके अब तक एश किंग हैज बीन द वॉइस बिहाइंड सम ऑफ द ग्रेट सॉन्ग्स लाइक मेहरबान, TMO। 2019 में उनका एक इंडी पॉप गाना आया था कॉल्ड हाई ओ।

There's something about Ash King's voice which just naturally draws you towards this song. आप connect कर जाते हो. वो कभी गाने पे हावी नहीं होते हैं, बल्कि he lets you experience that song. तो अपने radio sets की volume बढ़ा दीजिए. नई नवेली entry debut कर रही है सीधा Ash King की आवाज़ में. गाने का नाम है Kinniya Soni. ये गाना debut कर रहा है this week on Gaana number 8. You are listening to Gaana Indie Top 10. बंदी का नाम है Kanika. Enjoy. Number 8.

0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हाय, ये कॉल बैंक से है। आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, हमारे कस्टमर केयर से आपको पासवर्ड मिलेगा। पासवर्ड बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए किसी को ना दे और इसका दुरुपयोग होने से बचाएं।
5: देखिए जी, आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, आप पासवर्ड लिख लीजिए प्लीज।
3: एटीएम वाला पासवर्ड है ना?
5: एटीएम वाला पासवर्ड है सर, ये पासवर्ड लिख लीजिए, मैं आपको बता देता
3: हूँ। एक मिनट मैं लिख लेता हूँ कहीं।
5: हाँ जी,
3: हाँ बोलिए।
5: 33501।
3: अच्छा
5: सर, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। शैलेंद्र जी, जरा विक्की का पासवर्ड बताइए जरा इनको, ये फोन लाइन पे है एटीएम वाला।
3: हेलो,
5: मेरी वाइफ के पास भी है, एक सेकंड होल्ड करिएगा। हाँ, मैं फोन मिलाता हूँ। हेलो डार्लिंग, हाय।
6: हाय।
5: अच्छा ये बताओ, ये विक्की का पासवर्ड क्या है?
6: विक्की का पासवर्ड 33501। एक काम करिए ना, धोबी से पूछ लीजिए क्योंकि उसके पास भी है।
5: धोबी से
6: पूछ लीजिए।
5: अच्छा, ये जो हमारे कपड़े धोता है, एक सेकंड।
3: हेलो
5: सर, एक सेकंड होल्ड करना, वो धोबी से भी कंफर्म कर।
7: ये बेल जा रही है।
5: हेलो भैया। हेलो भैया, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आप हमारे कपड़े धोते हो?
3: अरे भाई, तो एक बात सुन, ये
5: आपके पास पासवर्ड होगा 33501? हाँ सर, 33501 है सर। हाँ जी सर, सर यही पासवर्ड है। मेरी बात सुनिए ना,
3: किससे पूछे जा रहे हैं?
5: किससे? मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना सर, आपके पास।
3: भाई क्या कंफर्म, भाई मेरा एटीएम कार्ड है
5: ये। एटीएम तो आपका तो पासवर्ड नहीं मिलेगा, पैसे कैसे निकलेंगे यार?
3: मुझे बताना, ये सबको थोड़ी ना, दुनिया में अल्लाह
5: नहीं तो
3: थोड़ी ना।
5: आपको तो जल्दी इतनी मच रही है, आपको जल्दी इतनी मच रही है। कल का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेते, उसमें भी आ रहा था, बेकार में एप्लीकेशन डाल दी। टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लेते
7: विके, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तुमने पासवर्ड के लिए अप्लाई कर रखा था, तुम्हारा पासवर्ड अभी तक नहीं आया है। 33501।
3: किसने दिया मेरा नंबर?
7: आपका नंबर आशा ने दिया, उन्होंने कहा था।
3: अरे मैं खुकड़ू को।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
8: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस, और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया, यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन GCC। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
9: Why go outside to see a doctor when healthcare can come to you?
10: With KIMS Health at Home, get doctor consultations, nursing care, physiotherapy, blood sample collection and more, all at one place. Call 5572-7387 today.
11: Ja Simran, ja jeele apni zindagi, ja beta, ja!
12: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल,
13: क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने।
14: हिट गाने
15: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
16: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।
0: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
17: Number 7.

0: आदित्य रिखारी कुटले खां की आवाज रावटोर का म्यूजिक कोक स्टूडियो भारत का गाना दिस वाज ए अजनबी। पिछले हफ्ते से दो पोजीशन नीचे ड्रॉप होके ए अजनबी वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले हमने सुना अनूप जैन की आवाज में एक गाने का नाम है अर्ज किया है, अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग। 24 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार अर्ज किया है वाज ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका। दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक, ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप स्टार्स ऑफ द म्यूजिक सीन। इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरे साथ कनेक्ट करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई गाना शेयर करना हो, बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। गाना नंबर 6 पर हमने सुना ए अजनबी इन द वॉइस ऑफ आदित्य रिखारी एंड कुटले खां, एक कोक स्टूडियो भारत का गाना। किसी भी आर्टिस्ट के लिए गाना एक बहुत बड़ी बात होती है। हर आर्टिस्ट का सपना होता है एक कोक स्टूडियो भारत का गाना करना, एंड आदित्य रिखारी पिछले कुछ ही सालों में वो चोजन पॉप स्टार बन चुके हैं। इन द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट ना, ये स्टार बनने के मायने बदल गए हैं। स्पेशली पॉप म्यूजिक में रिवाइंड करूं, 20 साल पहले आप चूज किए जाते हो, आपकी एल्बम आती है, आपको ब्रेक मिलता है, तब आप फेमस होते हैं। लेकिन अब पहले ऑडियंस आपको देखती है, डिसाइड करती है, आपके साथ एंगेज करती है, तब आपको आपका ब्रेक मिलता है। एंड आदित्य रिखारी उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। दिल्ली के एक यंग सिंगर सॉन्ग राइटर लॉकडाउन के दौरान अपने कमरे से अपने गाने अपलोड कर रहे थे, पर उनके गाने ऐसे फॉरवर्ड हो रहे थे, वायरल हो रहे थे हर जगह, बिकॉज वो हमको हमारी ही कहानी सुना रहे थे। एंड देन उनका गाना आया कॉल्ड फासले। इस गाने ने उनको म्यूजिक मैप में पिन कर दिया था, एंड देन केम समझो ना। इस गाने के बारे में तो मैं जितनी बात करूं कम है। इट गॉट अडैप्टेड इन अ कार्तिक आर्यन मूवी, जो एक दिल्ली से आए यंग सिंगर सॉन्ग राइटर के लिए बहुत बड़ी बात है। पर मेरे हिसाब से आदित्य रिखारी का सबसे बड़ा गाना इस साहिबा। उनके जितने कॉन्सर्ट होते हैं, वो जब भी इंटरव्यू करते हैं, आप कहीं चले जाए, एक गाना जो हर फैन उनसे डिमांड करता है कि प्लीज ये वाला गाना गा दीजिए, वो गाने का नाम है साहिबा। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। अ स्पेशल स्पॉटलाइट ऑन आदित्य रिखारीज बेस्ट सॉन्ग दिस इज साहिबा, प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

0: 20 Top 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
4: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
0: मिर्ची इट्स हॉट।
5: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
6: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है।
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
9: FM मिर्ची वन इट्स हॉट।
0: गाना इंडी टॉप 10
10: कनिका के साथ ऑन मिर्ची
11: नंबर 4।

0: दिलजीत दोसांझ, सिया, डेविड गेटा का गाना, गाने का नाम है रांझा। पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके 13 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, रांझा वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 4।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका एंड दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। एट आरजे कनिका ऑन इंस्टाग्राम पर आए, मेरे साथ कनेक्ट करी, कोई गाना सजेस्ट करना है, बिंदास आके हिट मी अप। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कसर क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज
2: मोहब्बत लुटाऊंगा मैं छेड़ के मन का साज साज फिर गाऊंगा फिर सबके दिल को।
0: The song we're going to feature this week is

अभी। गाने का नाम है बूंदे बाय द सिल्क रूट। ये गाना 1998 में आया था, सिल्क रूट द बैंड की डेब्यू एल्बम बूंदे का ही पार्ट था। जब ये एल्बम रिलीज हुई थी, सिल्क रूट ने पॉप म्यूजिक स्पेस में अकूस्टिक गिटार, फोक इन्फ्लुएंसेस एंड सॉफ्ट मेलोडी, वेरी पोएट्री फर्स्ट गानों को इंट्रोड्यूस किया था। बैंड के लीड वोकलिस्ट मोहित चौहान, बैंड मेंबर्स अतुल मित्तल, केम त्रिवेदी एंड केनी पुरी, उनकी म्यूजिक आइडेंटिटी किसी फिल्म से कम नहीं थी। उनकी म्यूजिक वीडियोस, द वे देयर म्यूजिक ट्रैवल्ड इज समथिंग जो आज भी हम जानते हैं। इसी एल्बम का पार्ट था डूबा डूबा, जो हर घर तक पहुंच गया। पर उस एल्बम में और बहुत सारे ऐसे जेम्स हैं जिन्हें आपको कभी फुर्सत लेके सुनना चाहिए। एंड अगर आप सच में उनकी म्यूजिकलिटी को जेन्युइनली एंजॉय करना चाहते हो, तो ये वाला गाना बूंदे उसे परफेक्टली डिफाइन करता है। गाने के लिरिक्स प्रसून जोशी ने लिखे थे और उसमें बारिश ना सिर्फ ऐसे मौसम का पार्ट नहीं है, बल्कि बूंदों को यादों से कंपेयर किया गया है, किसी की खुशबू से कंपेयर किया गया है, एक ऐसी प्रेजेंस से कंपेयर किया गया है जो हमारे सामने नहीं है बट आप हर जगह महसूस करते हैं। आज भी जब मैं ये गाना सुनती हूँ तो प्रोडक्शन में भी आपको 19-20 लग सकता है, बट द इमोशन इज सो फ्रेश एंड शायद इसीलिए ये एक प्रॉपर क्लासिक है। तो अपने रेडियो सेट्स के वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। सिल्क रूट द बैंड का गाना मोहित चौहान की आवाज में, दिस इज बूंदे, प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

0: मैन ओ मैन, व्हाट इज दिस सॉन्ग? ऐसा लग रहा है कि मैं किसी की मेमोरी में ऐसे फ्लोट कर रही थी. मोहित चौहान की आवाज, सिल्क रूट द बैंड का गाना, दैट वॉज बूंदे ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक. Pinch me, Ashkai, because I think this is one of the best picks we've had so far. At RJ Kanak on Instagram par aao, Ashkai, my sound producer, aur main aapki sari suggestions ko bahut seriously lete hain. 90s 2000s ka wo indie pop gana jo aaj bhi aapke liye super special hai, humse aake share kariye. We might feature your song next week. Now back to the countdown, agle wale gaane ki bari. It is again a Diljit Dosanjh song. पिछले हफ्ते से तीन पोजीशन ऊपर जम किया ये गाना. गाने का नाम है डीलर. 16 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. डीलर इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 3. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 3.

0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: अनिल कपूर सर, ये सवाल हम आपसे 365वीं बार पूछ रहे हैं कि आपकी फिटनेस का राज क्या है।
2: हेल्थ ऐसी बनाओ, काम ऐसा करो कि आप 40 50 साल 60 साल तक आराम से वैसे ही काम करते रहो। मीठा खाना है तो थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा, आपको मीठा अगर सूट नहीं करता है तो हफ्ते में एक बार खाइए, और खाना है तो थोड़ा सा खाइए। आपको नमकीन पसंद है उसका मतलब ये नहीं कि आप इतना ही नमकीन खाते रहें। आपको चावल पसंद है तो दबा के आप चावल ही खा रहे हैं आप, यू नो, तो हर चीज़ करनी चाहिए मगर थोड़ा थोड़ा थोड़ा करके। यू शुड वर्क इट आउट एंड बैलेंस एवरीथिंग इन लाइफ एंड डू एवरीथिंग इन लाइफ एंड दैट्स आई फील इज द मंत्रा फॉर योर फिटनेस। यू डू एवरीथिंग बट डू इट इन मॉडरेशन एंड डू इट व्हाट मेक्स यू हैप्पी।
1: हेल्थ टिप आपने दिया एकदम क्लास, क्योंकि अनिल कपूर आप आदमी एकदम झकास। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट
0: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: आवर बिजनेस इज आवर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस।
4: पर दीदी, आवर एंटरटेनमेंट इज योर एंटरटेनमेंट।
5: Qatar ka number one radio station.
6: 89.6
7: FM Mirchi 1. It's hot.
0: Ghana Indie Top 10.
8: Kanika ke saath. On Mirchi.
9: Hello, hello, Mirchi सुन रहे हैं आप। शो का नाम है गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है आरजे कनिका, एंड दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर, मेरा हैंडल इज @RJKanika। गाना नंबर 10 से गाना नंबर 3 का सफर हम पूरा कर चुके हैं। इट्स टाइम फॉर द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, लेकिन एक क्विक रिकैप करते हैं राइट फ्रॉम द टॉप। गाना नंबर 10 पर इस हफ्ते हर्ष नुसी का साडी सुन। उसके बाद अनीश सरकार का उड़ी उड़ी और गाना नंबर 9। एक नई नवेली एंट्री, एश किंग का गाना किनिया सोनी ने डेब्यू किया है और गाना नंबर 8। दिस सॉन्ग इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर बाय द वीक, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जंप करके अर्ज किया है दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
10: कायर जो थे वो शायर बने।
9: उसके बाद आदित्य रिखारी रैबिट और कुटले खां का गाना एक और कोक स्टूडियो भारत का गाना ए अजनबी ऑन गाना नंबर 6। संजू राठौड़ का बैंगल्स ऑन गाना नंबर 5। दिलजीत दोसांझ सिया का रांझा ऑन गाना नंबर 4। बैक टू बैक बाय दिलजीत, उनका गाना डीलर दिस वीक ऑन गाना नंबर 3। एंड नाउ फॉर द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, बंजारे का गाना बैरन 15 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। बैरन इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 2 एंड द न्यूमेरो उनो सॉन्ग ऑफ द वीक 15 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। मिट्टा रौर का गाना, उन्हीं की कॉम्पोजिशन मिट्टा रौर स्वरा वर्मा की आवाज में, गाने का नाम है शीशा, वंस अगेन ऑन गाना नंबर 1। ये दोनों गाने बैरन ऑन गाना नंबर 2, शीशा ऑन नंबर 1, बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।

0: Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi. It's hot.
1: Hello, Mirchi helpline?
2: नहीं नहीं हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है?
1: मेरे घर के पास बहुत कबूतर है, परेशानी होती है यार, क्या करूं?
2: तुम्हें जो पता है कि इतने सारे कबूतर हैं, तो घोंसले के बाजू में घर मत बना, समझा?

0: बैक टू 2000, ये एक इमोशनल इंटरसेक्शन है जो कि एक लड़का अपनी माँ को बता रहा है कि मायरी मुझे उसकी बहुत याद आ रही है जिसकी याद में मैं तड़प रहा हूँ. Isn't it beautiful? यूफोरिया से आपने सुना मायरी डॉक्टर पलाश सेन की आवाज में.
1: मिर्ची कैफे
0: शो शुरू हो गया है. मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ. तो मेरे हाथ में एक ये गर्मा गर्म चाय का कप. आप कैफे में जाके क्या पीते हो, कॉफी या चाय? व्हाट पर्सन आर यू? लेट दैट डिबेट बी फॉरएवर. फिलहाल मैं आपको ये बता रही थी कि यार किस तरीके से मैं जब छोटी थी तो ये सोचती थी कि शायद ये गाना ना वो जिस लड़की को याद कर रहा है उसको वो मायरी बुलाता होगा, इसलिए वो ऐसे बोल रहा है मायरी याद वो आई. बट देन आई रियलाइज कि नहीं, इट इज लाइक टेलिंग टू योर मॉम, हे मॉम, अपने डीपेस्ट इमोशन में अपनी माँ से शेयर कर रहा है कि मायरी मुझे उसकी याद आ रही है. आई यार कुछ चीजें ना, स्पेशली इसकी जो ओपनिंग लाइन है, बिंदिया लगाती तो कांपती थी पलकें मायरी. यार ये जो छोटे छोटे न्यूएंसेस लिरिसिस्ट अपने गानों में शामिल कर

लेते हैं, यही तो बिल्कुल बनाता है हमारा शो विच इज कॉल्ड मिर्ची कैफे, जहां पर मैं आपके लाती हूँ ऐसे ही प्यारे प्यारे गाने जो आपके कहीं ना कहीं इमोशन को टच करते हैं। और जो अगला गाना मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इन द वॉइसेस ऑफ के मोहन और यशिता शर्मा, और इस गाने में बिना वो वाला इमोशन है कि तुझ बिन सूरज में आग नहीं रहे, चांदनियां बरस रही है लेकिन तब भी अच्छा सा नहीं लग रहा है। सो दैट टीस वाला मिसिंग वाला इमोशन अगेन कमिंग अप ऑन दिस सॉन्ग, और बहुत सारे ऐसे गाने और बातें चलती रहेंगी। मेरा नाम है पारुल, शो शुरू हो गया है मिर्ची कैफे, जस्ट स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: IPay payments ka wah tarika. With IPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the IPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. IPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
2: हमारी चोरियां छोरों से कम है के?
3: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: ये जेम्स की इतनी यूनिक आवाज जो यू नो आपको ऐसा ऐसे खींचती है अपनी तरफ. दूसरी तरफ प्रीतम का वो गोल्डन एरा जिसमें यू नो ऐसे चार्टबस्टर्स लाए जा रहे थे, वो क्या मुझे प्यार है वाले, गैंगस्टर वाले, वो लम्हे वाले, सारे गाने जो ऐसे ऐसे क्लास अपार्ट ऐसे दिल को टच करते थे. सैयद कादरी के पोएटिक अमेजिंग लिरिक्स, मतलब मैं पूरे गाने में से चुन नहीं सकती कि मेरा फेवरेट लिरिक्स कौन सा है, बट यू नो यू हैव टू लिसन टू दिस. खत्म बेचैन रातों के हो सिलसिले, यूं लगा ले मुझे आज अपने गले. इट इज सच अ यू नो डेस्परेशन भी है, एक टीस भी है, एक मोहब्बत भी है. व्हाट अ सॉन्ग.
1: मिर्ची कैफे
0: सुन रहे हैं आप मेरे यानी पारुल के साथ मिर्ची कैफे मिर्ची पर. और ये गाना भी अभी मैंने आपको सुनाया, इट रिप्रेजेंट्स सो मेनी इमोशंस आपके और मेरे, जो ये कहते हैं कि सबसे दूर चले जाना है यार. कभी कभी ना कोई इंसान एक ऐसा होता है जो अपने बिल्कुल घर की तरह लगता है, और जब आप उसके साथ बैठे होते हो तो आप 50 तरीके के डिस्कशंस, 50 तरीके के यू नो इंटरेक्शंस तो करते ही करते हो. लेकिन ब्यूटिफुल बात यह होती है कि अगर आप चुपचाप भी बैठे हो ना दोनों, तब भी वो घर जैसी फीलिंग आती है. बिकॉज ऑल ऑफ अस हैव दैट वन और टू पीपल इन आवर लाइव्स जो घर की तरह फील करते हैं. सो दिस सॉन्ग बहुत वक्त बाद मैंने सुना इसको, तो मुझे लगा आपके लिए भी लेकर आती हूँ ये. एंड उसके बाद हम अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं. तो बेसिकली ना कुछ कुछ गाने और कुछ कुछ म्यूजिक के कॉम्बिनेशन आवाजें हमको एक जगह ट्रांसपोर्ट कर देती है, जो हम कुछ भी कर रहे हैं ना थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं और एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जहां हमारी कोई ना कोई डीप मेमोरी रिवाइव होती है. वही काम करते हैं यार गाने, और मैं कोशिश करती हूँ कि वैसे ही गाने आपके लिए लेकर आऊं. द नेक्स्ट सॉन्ग दैट आई एम गोइंग टू प्ले फॉर यू इज अरिजीत सिंह और असीस कौर की आवाज में बोलना. इस गाने को सुनो और अभी मिलती हूँ आपसे वापस. स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, मैं हूँ आपके साथ पारुल, ओनली ऑन मिर्ची कैफे. इट्स हॉट.

0: Richie Cafe.
1: It's hot.
2: Richie Stories.
3: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
4: यार तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
5: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
0: मिर्ची, इट्स हॉट। अ रिंग फॉर द न्यूली मैरिड, क्यूट लिटिल बैंगल फॉर द न्यूबॉर्न।
6: अरे यार, हॉलिडे सीजन इज हियर और फिर वही गिफ्टिंग का टेंशन। फिर मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स गोल्ड एंड समर के साथ पाइए फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस। प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस। और सुनो, देयर इज मोर। With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
7: Dosti kai kuch sulay madam. No sorry, no thank you.
8: Bhai saab, sorry and thank you. Hame dosti nahi, entertainment chahiye.
9: Tum mirchi suno na, jahan entertainment khub milega.
10: Khub milega.
11: Qatar ka number one radio station.
12: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: एब्सोल्युटली मौसम ही ऐसा है यार कि सब कुछ मेहरबान सा लगता है। आपको पता है मैंने रिसेंटली एक चीज पढ़ी जहाँ पे लिखा था कि आप ना मोटे नहीं हो, आप बस कपड़े गलत पहन रहे हो शायद। Similarly, आप ना कभी भी सैड नहीं हो सकते, आप गाने गलत सुन रहे हो शायद।
1: मिर्ची कैफे
0: सुन रहे हैं आप, मिर्ची मेरे यानी पारुल के साथ शो है मिर्ची कैफे। मेरे हाथ में मेरी गर्मा गर्म चाय एंड लेट मी टेल यू कि ये गाना जो आपने सुना दिल चाहता है से श्रीनिवास की आवाज में, शंकर महादेवन एक बार बता रहे थे कि जब दिल चाहता के गाने बनने थे ना तो जो इस पिक्चर के प्रोड्यूसर हैं रितेश सिद्धवानी उनके घर पे 10 दिन के लिए सारे म्यूजिशियंस को भेजा गया था कि यू नो जस्ट जैम देयर और बनाइए गाने, यू हैव दिस टाइम। 3.5 दिन के अंदर अंदर वो 5-6 कल्ट गाने तैयार हो गए थे एंड दिस इज द ब्यूटी। अभी हम कभी भी सुन लें दिल चाहता है के गाने, अलग अलग फ्लेवर्स मिलेंगे और मजा आ जाएगा। ऐसे ही बेहतरीन फ्लेवर्स आपको मेरे शो पे मिलेंगे मेरे साथ, क्योंकि मैं आपको कह रही थी ना कि अगर गलत गाने सुनोगे तो मूड खराब रहेगा भाई, तो तुम मिर्ची कैफे सुनो। अगला गाना सुखविंदर सिंह की आवाज में 1998 से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। यू नो इसमें जो इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज है ना इस गाने में, एक आप तो बीट सुनना, तबला और ढोलक की एक बीट आएगी, पीछे से मेलोडी वाले इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं और ये गाना इतनी गजब की फील है इस गाने में। अमेजिंग ट्रायो AR रहमान, सुखविंदर सिंह एंड जावेद अख्तर, ऑफ कोर्स द लिरिक्स, द कंपोजिशन एंड द सिंगर। और वो वक्त और ये गाना, ये मुझे हमेशा गूज़बम्प्स देते हैं। सुनो इस गाने को, फील करो अच्छे से और सुनते रहो मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ। बाय गॉड, अगर तुमने ये नहीं कहा ना कि अरे यार ये गाना कितने दिन बाद सुना है तो मेरा नाम बदल देना, और वो बताने के लिए मुझे जरूर आना। paruls.world मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, वहां पे आके बता सकते हो। ऑल्सो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7045983983। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, लिसन टू दिस सॉन्ग।

0: and pain, these lips end up smiling whenever I'm reminded of those bygone moments. कुछ शब्द इतने खूबसूरत होते हैं कि चाहे हिंदी में पढ़ो चाहे इंग्लिश में, वो खूबसूरत ही लगते हैं.
1: मिर्ची कैफे.
0: आप सुन रहे हैं मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ. ये जो अभी आपने गाना सुना के की आवाज में, बीते लम्हे, एक्चुअली मुझे बीते उन लम्हों में लेकर चला गया 2007 में. गीता बसरा, इमरान हाशमी, हरभजन सिंह, नहीं ऑफ कोर्स नॉट भज्जी, दैट इज अ रियल लाइफ, नॉट द रियल लाइफ. या सो इमरान हाशमी के यार, वैसे ही आपको पता है जो गाने में इमरान हाशमी आ जाते थे ऐसा लगता था ये तो सुपर हिट है ही है. सो दैट era. And you know what, ये सबसे बढ़िया बात जो हम अभी थोड़ी देर पहले भी कर रहे थे कि लिरिक्स ऐसे होते हैं, लिरिक्स और म्यूजिक का कॉम्बिनेशन, जो हमें एक तीसरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट कर देता है. अचानक से हम भूल जाते हैं what was going on in our mind. जैसे ही कोई गाना अच्छा लगता है हम वॉल्यूम बढ़ा के उसमें डूब जाते हैं, देन वी आर ट्रांसपोर्टेड. इसी तरीके से मैं आपको बताती हूँ जो अगला गाना मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, बिल्कुल ही डिफरेंट प्रकार का गाना था ये, फ्रॉम द फिल्म गली बॉय. अब कभी आपने सोचा है कि एक जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है उसके ऊपर कोई शब्द लिखेगा और उसके ऊपर इतनी गजब की बीट्स देकर एक खतरनाक प्रोड्यूसर ऋषि रिच इसको प्रोड्यूस करेंगे और हम उसको सुनकर ऐसे टेरिबल फील करेंगे कि यार कितना डिफरेंस है ये जो इनइक्वालिटी है उसके अंदर, और हम उसको एक्चुअली फील करेंगे कि ये कहीं ना कहीं कितना सच है. दिस इज वन काइंड ऑफ सॉन्ग जहां पर एक एक शब्द ना ऐसा फील होता है. जस्ट लिसन टू दिस, द सॉन्ग इज कॉल्ड दूरी और रणवीर सिंह ने इसको गाया था एंड आई बिकेम अ फैन ऑफ हिम कि यार ये रणवीर सिंह क्या कमाल का आदमी है. चाहे कितने भी हम उनके लहंगे वाले या पर्दे वाले ड्रेसेस याद रखें, बट रणवीर सिंह द एक्टर एंड हियर द वे ही हैज संग दिस सॉन्ग. सुनो इसको, मिलते हुए एक छोटे से ब्रेक के बाद. सुन रहे हो आप मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ. स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट.

0: अब देखो तो हम बाहर से, लेकिन सोचो कितनी दूरी है, कैसी ये मजबूरी है, सोचो कितनी दूरी है।
1: मिर्ची कैफे,
2: इट्स हॉट।
3: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
4: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: मिलिंद सोमन, आपकी इतनी फिट बॉडी है, क्या आपने कभी इस बॉडी का फायदा उठाया है? आ जा, दिखाता हूँ तुझे, झगड़ा करेगा मेरे साथ।
6: कभी झगड़ा नहीं किया, और टफ फिजिक का मतलब ये नहीं कि झगड़ा करके उसको जस्टिफाई करो। गुड फॉर शो व्हिच इज गुड फॉर माय प्रोफेशन एंड आई वर्क अ लॉट, आई वर्क वेरी हार्ड, सो आई नीड दैट फिटनेस लेवल
5: एंड आई नीड योर मोटिवेशन लेवल। मिलिंद सोमन, आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
3: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
4: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: मैं जब भी पढ़ने बैठता हूँ ना तो नींद आ जाती है।
2: क्यों नहीं हो रही पढ़ाई?
0: क्या करूँ?
1: अरे घोचू, तो लेटे लेटे पढ़ना, अच्छे से सो भी पाएगा रे तू।
3: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: A song as classic as Breathless. आपको पता है Breathless के लिए बहुत पहले से ही कंसेप्ट बना दिया गया था जावेद अख्तर साहब द्वारा, लेकिन कोई बड़े से बड़ा प्रोड्यूसर, बड़े से बड़ा कंपोजर इसको बनाने के लिए तैयार नहीं था. I'll tell you more about this.
1: मिर्ची कैफे.
0: सुन रहे हैं आप मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. और जब ये जावेद अख्तर साहब ने दिमाग में सोचा था कि इस टाइप का एक गाना बनाना चाहिए ब्रेथलेस जैसा, तो सभी ने उनको मना कर दिया था. एंड देन एंटर्ड मिस्टर शंकर महादेवन, जिन्होंने ये मास्टरपीस क्रिएट किया हमारे लिए. एंड इट हैज बिकम अ कल्ट कि अगर आपने ब्रेथलेस ठीक से गा दिया, बिकॉज हम सब लोगों को इसके लिरिक्स ऑन एंड ऑफ टूटे फूटे याद हैं, लेकिन ऑब्वियसली टू सिंग इट द वे इट नीड्स टू बी संग इज समथिंग वाई. सो ये गाने के लिए मैं जोरदार कूडोज करना चाहती हूँ टू शंकर महादेवन एंड जावेद अख्तर साहब, क्योंकि कभी कभी बनती है भाई ऐसी चीजें और हमेशा याद रहती है. और हाँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइन मुझे आपके साथ शेयर करनी है. नोबडी कम्स बैक फ्रॉम द जिम अनहैप्पी, ये मैंने रिसेंटली कहीं पढ़ा और मुझे इतना सही लगा भाई ये, क्योंकि आपको पता है जिम से आप बाहर चाहे भूखे आ सकते हो, चाहे दर्दों में आ सकते हो, चाहे पसीने में आ सकते हो, सम अ बिट ऑफ स्मेल एज वेल, बट नॉट अनहैप्पी फॉर श्योर, क्योंकि इतने सारे जो हम हिलना भूल गए हैं ना, ये हमारी बॉडी वॉज मेंट नॉट टू ईट मोर बट टू मूव मोर. तो ये चीज प्लीज दिमाग में घुसा के रखो. और एक और चीज जो इसके ही तरीके की मुझे लगती है, वो होते हैं गाने. अच्छे गाने जो होते हैं ना, उनको सुनकर आप कभी भी ऐसे अनहैप्पी नहीं फील कर सकते. मे बी आप इमोशनल फील कर सकते हो या थोड़ा सा ऐसे स्माइलिंग सा फील कर सकते हो, लेकिन अनहैप्पी कभी नहीं होगे आप जो एक अच्छा गाना होगा उसके सुन के. और इसी सिलसिले में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ द येलो डायरी से एक गाना, विच इज़ कॉल्ड मर्ज. आई एम श्योर बहुत लोगों ने ये गाना सुना होगा, लेकिन जिसने भी ये नहीं सुना है, आज मिर्ची कैफे पर मुझे यानी पारुल को ट्रस्ट करके जस्ट लिसन टू दिस सॉन्ग. ये मेरा आजकल का यू नो करंट ऑन लूप सॉन्ग है. एंड आई एम इन सो लव विद दिस, द लिरिक्स, द म्यूजिक, द बीट्स, एवरीथिंग. तो प्लीज इसको सुनो, और अगर इसको सुन के आपको अच्छा लगेगा, यू हैव टू राइट टू मी. इंस्टाग्राम पे मुझे ढूंढो, पारुल्स डॉट वर्ल्ड मेरा आईडी है, या फिर मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है 7045983983. मुझे और भी बातें आप बता सकते हो, आपका कौन सा फेवरेट गाना है वो भी बता सकते हो. फिलहाल सुनो इसको और सुनते रहो मिर्ची मेरे यानी पारुल के साथ. इट्स हॉट.

0: Merci Cafe.
1: It's hot.
2: Merci.
3: Iskabana, uskabana, sakabana. Yabana. Burga, burga. La vizba la burga.
2: Merci, burga.
4: Hello.
5: Hello, sir. Very good evening. सेल्यूलर से बोल रहा हूँ सर, हमारी एक स्कीम आई है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको समझाऊं। ये वॉइस मेल के लिए है, अगर आप चाहते हैं और आपको इंग्लिश नहीं आती है सपोज माने आप, तो आप कोई भी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको आगे भेज सकते हैं।
4: अच्छा,
5: आप हिंदी में अपना मैसेज छोड़ेंगे और हमारी मशीन उसको कन्वर्ट करके दूसरी लैंग्वेज में डब कर देगी सर, जिसका सर कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मंथली कोई चार्ज नहीं लगेगा। सर आप चाहेंगे ये स्कीम आपको दे दी जाए?
4: के पास है क्या ये सर्विस?
5: बिल्कुल सर, कोई एडिशनल चार्जेस नहीं है सर, जो आपका नॉर्मल प्लान चल रहा है उस प्लान के अकॉर्डिंग आपका बिल आएगा, सिर्फ आपकी एक फैसिलिटी बढ़ जाएगी।
4: जो क्या कॉस्टिंग पड़ेगा पर मैसेजेस का?
5: सर आप दिन में अगर 100 मैसेज भी भेजते हैं तो आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा, आपका नॉर्मल रेंट रहेगा जो आपका चल रहा है अभी।
4: ठीक है,
5: बीप सुनने के बाद अपना मैसेज छोड़िएगा।
4: ओके अगम सर, मुझे आपके अंडर में काम करना बहुत अच्छा लगता है, तो आप प्लीज मुझे अपनी टीम में रख लीजिए।
5: सर वेरी गुड, आपका मैसेज रिकॉर्ड हो गया सर, हमने इसको दूसरी लैंग्वेज में डब कर दिया, अब आपके बॉस ये सुनेंगे, सुनिए।
4: ये क्या है भैया?
5: सर ये आवाज तो आपकी लग रही है, मुझे लग रही है सेंटेंस इधर उधर हो गए।
4: तो मशीन मशीन चलाने आती भी है
5: सर, मैनेजर के अलावा किसी और को मैसेज देखे देखिए।
4: हेलो वीना मैम, प्लीज अभी जो आ रहा है प्रोजेक्ट उसके लिए मुझे नॉमिनेट कर लीजिए अपनी टीम में।
5: सर थैंक यू सो मच, आपका रिकॉर्ड हो गया, वीना मैम को ये सुनाई देगा।
4: मजाक कर रहे तू मेरे से?
5: सर मेरी बात सुनिए, ये जो मेरी बात सुनिए सर, सर सर सर सर सो सॉरी, आई एम सो सॉरी सर, जितना आप मुझ पे चिल्लाए हैं मैंने रिकॉर्ड कर लिया। देखिए अब सही आएगा, देखिए ये दूसरी लैंग्वेज में आएगा, रुकिए सर आप। हेलो मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात तो सुनिए सर, मैं इतनी गालियां नहीं सुन सकता सर, मैं
6: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, मैंने तो रैंडमली आपका नंबर मिला दिया था सर, दिल्ली में सब आपको सुन रहे हैं, आप रेडियो मिर्ची में मुर्गा बन गया है आपका, प्लीज इतनी गालियां मत दीजिए यार।
5: सर मैंने ये भी रिकॉर्ड कर लिया, देखिए सुनिए क्या आया डब हो गए।
7: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
8: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस, और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
9: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष, महापुरुष।
7: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स, कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
10: 89.6
7: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: ये गाना आपने सुना फ्रॉम द फिल्म मैं वापस आऊंगा. दिस इज द मैजिक कोलैबोरेशन बिटवीन इरशाद कामिल, एआर रहमान एंड ऑफ कोर्स इम्तियाज अली जिन्होंने ये फिल्म बनाई है.
1: मिर्ची कैफे
0: सुन रहे हैं आप, मिर्ची कैफे मेरे आने पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. एंड अगर आपने मैं वापस आऊंगा नहीं देखी है ना, प्लीज जस्ट वॉच इट फॉर द ब्यूटी एंड फॉर द इमोशंस जो आपको बहुत जोर के फील होंगे, बिकॉज हम सब पार्टीशन के बारे में सुन चुके हैं, बट यू नो स्पेशली जिनके साथ ये हुआ है इट इज टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस. एनी वे मूविंग ऑन, मैं आज आपको यहाँ पर एक कहानी सुनाने वाली हूँ एंड ट्रस्ट मी जब मैंने कहानी पढ़ी थी आई गॉट गूज बम्स. सो एक बार क्या होता है, एक हॉस्पिटल में एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिनको कुछ बड़ी बीमारी है और वो उससे जूझ रहे हैं. उनकी फैमिली में और कोई भी नहीं होता, सो ही इज अलोन इन द हॉस्पिटल. कोशिश कर रहे हैं कि जितनी उनकी यू नो वक्त बचा है वो काट लें अच्छे से. उसी हॉस्पिटल के वार्ड में सामने एक छोटा बच्चा है जो कि कंस्ट्रक्शन वर्कर है उसकी मदर, और वो उनके साथ वहां पे एडमिट है क्योंकि उसको बहुत जोर का निमोनिया हो गया था बारिश में भीग कर बहुत तेज बुखार की वजह से. तो एक दिन उस हॉस्पिटल के वार्ड में क्या होता है कि उन बाबा और उस बेटे के बीच बातचीत होती है, बिकॉज वो बच्चा बहुत रो रहा होता है और उसकी मदर यू नो अपने साइट पे गई होती है काम करने के लिए और वापस आती हैं. मीन वाइल वो बाबा होते हैं जो बुजुर्ग, वो देख रहे होते हैं कि यार ये बच्चा अकेला रो रहा है. सो ही जस्ट गोज टू दैट बच्चा और वो उसको अपने हाथ में पकड़ के और काइंड ऑफ लोरी सुनाकर सुलाने की कोशिश करते हैं और वो भी फिर सो जाता है बच्चा. एंड देन यू नो इट बिकम्स अ हैबिट. फिर उसके बाद रोज यही होने लगता है कि रात होती है वो छोटा सा बच्चा उनकी तरफ देखता है, वो जाते हैं अपना दर्द भूल के, वो भी उसके साथ थोड़ा सा स्माइल करते हैं, उसको सुलाते हैं, कहानी सुनाते हैं, गाना गाते हैं और वो बच्चा सो जाता है. फिर एक दिन आया जब वो बच्चा उनको दादू बुलाता है और उनके चेहरे पे जो स्माइल होती है ना वो बहुत वक्त से उनके चेहरे पे नहीं आई होती है. तो ये एक क्यूट सा एक हॉस्पिटल के वार्ड का रिश्ता जो बन गया होता है, वो अपने दर्द में भी दोनों प्यार से अपना टाइम काट रहे होते हैं. एंड देन वन डे व्हाट हैपेंस इज कि जब वो बच्चा सुबह उठता है, बच्चा और उसकी मदर, वो देखते हैं कि वो सामने वाला बेड खाली हो चुका है. अनफॉर्चुनेटली वो जो बुजुर्ग शख्स थे दे लॉस्ट हिम, और वो बच्चा उसी वार्ड में बने उन दादू को याद करके रोने लग जाता होता है. उसकी मदर भी उसे समझाती है, बट यू नो दैट इमोशन दैट ही फेल्ट विद हिम वाज समथिंग एल्स. कोई रिश्ता नहीं था उनके बीच. पर यहाँ पर ये स्टोरी खत्म नहीं हुई है. यू नो व्हाट हैपेंड, बिकॉज वो जो बुजुर्ग होता है वो भी अकेला होता है और उनकी पास जो भी अपनी जमा पूंजी सेविंग्स या एक छोटा सा घर होता है वो लीगली डॉक्यूमेंट में हॉस्पिटल वालों को उस बच्चे के नाम करके जाते हैं और वो बोल के जाते हैं कि इनके पास ज़्यादा कुछ है नहीं और जो स्माइल उन्होंने मुझे दी मेरे आखिरी दिनों में वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा कीमती है. कैन यू जस्ट, मुझे फिर से बोलते हुए गूज़बम्स आ रहे हैं जब मैंने ये कहानी पढ़ी. एंड अपेरेंटली आई वुड लाइक टू बिलीव कि ये असली कहानी थी और इस तरीके के जो यू नो लोग हमें मिलते हैं ना कभी कहीं ना कहीं, जिनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं होता और इतना खास जिंदगी का रिश्ता बन जाता है जो कभी नहीं भूलते, उन लोगों से जाकर आज मेरे कहने से प्लीज़ बात करिए, एक जोर की झप्पी दीजिए और याद करके उनको बताइए कि यू नो यू मीन सो मच टू मी. और अगला गाना बहुत ही प्यारा सा ये सुनो जुबिन नौटियाल और नीति मोहन की आवाज में. लाइफ इज ऑल अबाउट ब्यूटीफुल मोमेंट्स यार, ऐसे ही बस बना के चलते रहने चाहिए. और यहाँ चिपक के बैठे रहो मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची कैफे, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Mirchi Cafe.
1: It's hot.
2: Mirchi Stories.
3: बस 24 घंटे ही रहेंगी
4: यार। तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
5: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
0: मिर्ची, इट्स हॉट।
6: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
7: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
8: आएंगे दीदी।
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6
11: FM, मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: कश्मीरी लड़का जिसका नाम है फहीम अब्दुल्ला, जिसने ये गाना बनाया था, यू नो द लिरिक्स से अजू रोजू साने दिल बर म्याने बोजू नुंद बाने दिल बर म्याने, विच मीन्स स्टे हियर विद मी टुडे माय बिलवड, लिसन टू मी माय बिलवड, यही मैं आपको कह रही हूँ।
1: मिर्ची कैफे
0: शो चल रहा है, मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। और फहीम अब्दुल्ला के बारे में आप सब जानते हो कि यू नो उसने सैयारा का टाइटल ट्रैक गाया एंड हाउ पॉपुलर इट बिकेम। लेकिन क्या आपको पता है कि फहीम अब्दुल्ला कश्मीर से निकले थे और उनके पास बेसिकली सिर्फ 14-15 दिन के सर्वाइवल के पैसे थे और वो मुंबई गए थे काम ढूंढने के लिए। एंड ऑन हिज जस्ट 13th or 14th डे ही लैंडेड अप मीटिंग तनिष्क बागची, जिनकी वजह से वो गाना जो इतना बड़ा हुआ सैयारा टाइटल ट्रैक फहीम अब्दुल्ला का वो हो पाया। बट बिफोर दैट यू नो इंस्टाग्राम पे सेंसेशन बना ये गाना इश्क एल्बम लॉस्ट फाउंड, जो मुझे यू नो किसी भी फहीम अब्दुल्ला के आज तक के गाए हुए गाने से ज्यादा पसंद है। और ये जो कहानी होती है ना कि एक ड्रीम परस्यू करने के लिए इंसान निकला है अपने घर से और बस कुछ ही दिन बाकी थे उसके कि उसके पैसे खत्म हो जाते हैं एंड देन ही गॉट व्हाट ही गॉट, ये सारी चीजें आर्ट फॉर्म्स में और यूनिवर्स में और यू नो सुप्रीम पावर में जो आपकी सुन रहे होते हैं उनमें बिलीफ वापस जगा देती है। नहीं सो वी काइंड ऑफ नेवर थिंक लाइक दैट, जब सब कुछ स्मूथली हमारी लाइफ में जा रहा होता है ना तो हम एकदम से भूल जाते हैं कि यू नो देयर इज अ सुप्रीम पावर जो ये सब चीज हैंडल कर रही है हमारे लिए। लेकिन जैसे ही हम किसी परेशानी में आते हैं हमारे दिल से उसी का नाम निकलता है जिसमें हम बिलीव करते हैं कि प्लीज प्रोटेक्ट मी एंड सेव मी। और जो अगला गाना मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ना यार, सुखविंदर पाजी की आवाज में, अलका याग्निक की आवाज में, ये जो इसका टाइटल नाम है ना जो इस गाने का, उसकी ही कहानी अपने आप में इतनी कमाल की है कि जब ये फिल्म बन रही थी तो फिल्म इज कॉल्ड ताल, और एक बार सुभाष घई साहब ने सुखविंदर जी को बुलाया फॉर अ डिनर, और वो उनको ना ऐसे रमता नाम से बुलाते होते थे, तो वो पूछते थे यार ये क्या नाम है ये। सो अपेरेंटली इट मीन्स अ फ्रीक आउट पर्सन, यू नो हु जस्ट फ्रीक्स आउट फॉर लव, फॉर इमोशंस, फॉर एवरीथिंग। तो इसी कॉन्वर्सेशन से निकला ये गाना का टाइटल रमता जोगी, और ये गाना और इसका कॉम्पोजिशन और इसके लिरिक्स और इसका डांस, एवरीथिंग इज क्लास अपार्ट, जो हमें हमेशा याद रहता है। सो दिस ट्रैक टुडे मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फ्रॉम माय टाइम मशीन। सुनो इस गाने को, एंजॉय करो जिस भी जगह आप इस वक्त बैठे हो, बारिश हो रही है नहीं हो रही है, जस्ट लिसन टू दिस सॉन्ग एंड रिमेम्बर दोस क्रेजी टाइम्स। कुछ गाने भाई हमेशा फ्रेश रहते हैं, ये उनमें से एक है। आप सुन रहे हो मेरे यानी पारुल के साथ मिर्ची कैफे, सुनते रहो इट्स हॉट।
2: ओए रमता जोगी, ओए रमता जोगी, होए होए होए होए होए, ओए रमता जोगी, ओए रमता जोगी, होए होए।

0: Mirchi Cafe.
1: It's hot.
2: Bollywood Bordal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Bordal.
3: Only on Mirchi. It's hot.
4: गोविंदा, आपका अल्टीमेट फिटनेस टिप कौन सा है?
5: मुझे ऐसा लगता है योग और प्राणायाम जो है, इससे आपकी बॉडी जो है बहुत ही करेक्ट रहती है और आपको मतलब वो घबराहट नहीं होती है।
4: तो ये एडवाइस आप देंगे कंटेम्पररी हीरोज को?
5: योग प्राणायाम तो करते ही होंगे वो लोग, मुझे ऐसा लगता है।
4: आपको क्या लगता है कौन कौन करता होगा? मैं आपको तीन नाम देती हूँ, इन तीनों में से बताइए, वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जॉन अब्राहम।
5: ये तीनों एक्टर्स ऐसे हैं, इन लोगों की मुझे ऐसा लगता है कि बॉडी ज्यादा अच्छी है और पता नहीं कितने पैक निकले हुए हैं। उस जमाने में तो पूरी शाम में सब लोग हीरो लोग पैक ही लगाया करते थे, अब वो पैक उनके पेट पे आ गए। टेढ़ा मेढ़ा क्या नजर आ रहा है, ये पेट है इनका? ओहो, अच्छा अच्छा, फाइन फाइन फाइन, वेरी गुड वेरी गुड।
4: फिटनेस का पता नहीं लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर पर 110 फॉर चीची। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
2: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल,
3: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: जाना।
1: जो मिल जाए उसको रुलाना और जो ना मिले उसके लिए रोना। बाय गॉड, ये हम ह्यूमन बीइंग्स की फितरत क्यों होती जा रही है।
2: मिर्ची कैफे
1: सुन रहे हैं आप, मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। और मैंने सही कहा कि नहीं कहा, सच बताओ, जो चीज हमारे पास है उसकी वैल्यू क्यों नहीं कर रहे हम। हमारे शहर में अभी अभी आपने सुना मोहित चौहान कार्तिक की आवाज में फ्रॉम द फिल्म रॉक स्टार, एवरीबडी नोज दिस सॉन्ग, द वे द क्वर्क इट हैड, यू नो द कैरेक्टर जो होता है जनार्दन जाखड़, वो रिकॉर्ड कर रहा होता है इस गाने को। फन मोमेंट्स रॉक स्टार फिल्म क्रिएट्स फॉर अस। बट यस, लेट्स कम बैक टू रियल लाइफ। और जो मैं आपसे कह रही थी कि जो हमारे पास होता है उसकी वैल्यू हम कब करना सीखेंगे। और पता है आपको, बाय गॉड, साइकोलॉजी में भी ये लिखा हुआ है। देयर इज अ पीस व्हिच सेज कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हमारी जो हरकतें आदतें बनाता है, वो हमारे को इसी तरीके से काम करता है कि पजेशन जिस चीज का हमारे पास आ गया ना, कि जब तक हमने कोई चीज या कोई इंसान पजेस नहीं कर लिया, एज इन वो हमारा नहीं हो गया, तब तक हम कुछ कुछ कुछ कुछ यू नो करते रहते हैं, एफर्ट डालते रहते हैं, शिद्दत से लगे रहते हैं कि ये बस चीज मुझे मिल जाए। और जैसे ही वो कहीं कहीं तक आपकी हो गई, उसके बाद वो एफर्ट डालना हम भूल जाते हैं। दिस इज इट। यही बेसिकली सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है, बिटवीन रिलेशनशिप्स, बिटवीन एवरीथिंग विच इज गोइंग रॉन्ग। तो सोचो यार जरा इस बारे में, और प्लीज कोशिश करो कि वो एफर्ट, वो शिद्दत, चाहे आपकी जॉब में हो जो आपको पहले बहुत चाहिए थी और अब आप उसमें रह रहे के थक चुके हो, चाहे आपके रिलेशनशिप में हो, चाहे आपकी फ्रेंडशिप में हो, छोटी छोटी चीजों में, यू नो, प्लीज पुट दैट एफर्ट। एंड ऑल्सो अगर आप मुझे बताना चाहते हैं कि मुझे और क्या एफर्ट करना चाहिए आपको अच्छे अच्छे गाने सुनाने का ऑन दिस शो कॉल्ड मिर्ची कैफे, प्लीज रीच आउट टू मी। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7045983983, या फिर आप इंस्टाग्राम पे मुझे ढूंढ सकते हैं paruls.world। प्लीज लिख के मुझे बताओ कौन सा गाना आपको आज के शो का अच्छा लगा, कौन सा गाना आप सुनना चाहते हो अगले एपिसोड में। प्लीज डू राइट टू मी, आई लव टू रिप्लाई टू ऑल द DMs। ओके, तो प्लीज मुझे लिखो। ये अगला गाना आपके लिए छोड़ के जा रही हूँ, जोनाथन गांधी शिवम महादेवन की आवाज में। एक सीरीज आई थी कॉल्ड बंदिश बैंडिट्स, मुझे पहली भी बहुत अमेजिंग लगी थी, दूसरी भी अच्छी लगी थी, और मेरे को अभी चाहिए कि ये तीसरा भी प्लीज ले आओ, बिकॉज ऐसे म्यूजिकल सीरीज बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो फिलहाल मेरा टाइम हो गया है आपको टाटा कहने का। अपना ख्याल रखो, बारिश के मौसम का मजा लो, मस्ती करते रहो और सुनो ये गाना। एंड टेक अ लॉट ऑफ केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर लव्ड वंस अंटिल वी मीट नेक्स्ट। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, मैं हूँ आपके साथ पारुल, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: इस्तकबाल ख्वातीनो हजरात, मिर्ची की इस महफिल में आपका ताशी है आपके साथ। और जिंदगी में याद रखना जितना जरूरी है दोस्त, मुझे ये पता चला कि उतना ही जरूरी होता है भूल जाना। अदीम हाशमी साहब का शेर है बड़ा खूबसूरत कि याद करके और भी तकलीफ होती थी अदीम, याद करके और भी तकलीफ होती थी अदीम, भूल जाने के सिवा अब कोई भी चारा ना था। लेकिन मुझे मजेदार बात यह लगती है कि जिसे भुलाने की आप कोशिश करेंगे ना, उसे भूलना उतना ही कठिन होता जाएगा। फिराक गोरखपुरी साहब का शेर है कि एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें, एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें, और हम भूल गए हों तुझे ऐसा भी नहीं। तो दोस्त ये तो समझ आ गया है कि जवाब ढूंढने जाओ तो और सवाल ही मिलते हैं। बहरहाल मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप, आपका ताशी आपके साथ, इट्स हॉट।

0: on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो तेजिंदर जी।
3: हाँ जी।
2: हाँ जी तेजिंदर जी, मैं बोल रहा हूँ पासपोर्ट ऑफिस से। आपने अप्लाई कर रखा था पासपोर्ट?
3: जी, हाँ जी किया था।
2: हाँ, ये तेजिंदर जी आपका थोड़ा लेट मिलेगा पासपोर्ट, आपको ये इन्फॉर्म करने के लिए फोन किया था मैंने।
3: कितना लेट मिलेगा
2: आपको इसमें? एक सेकंड रुकिए, मैं चेक कर लेता हूँ। अरे इनका तेजेंद्र का पासपोर्ट कब मिल रहा है? तत्काल में, आपने तत्काल में बनवाया ना इमरजेंसी में?
3: हाँ जी।
2: एक सेकंड। हाँ इमरजेंसी का है सर, 3.5 महीने बाद मिलेगा आपको पासपोर्ट।
3: 3.5 महीने बाद?
2: हाँ जी।
3: भाई साहब तत्काल का क्या मतलब होता है? 5 दिन में मिलता है तत्काल का? तो
2: सर वो मुझे ही मालूम है, मेरे को क्यों समझा रहे हैं। असल में तेजेंद्र जी वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, आपके आसपास कोई है तो नहीं?
3: नहीं कोई नहीं है।
2: मैं ये कह रहा था, हमारा एक बंदा है जिसकी शक्ल आपसे मिलती है, ठीक है?
3: अच्छा।
2: बिल्कुल वो डिक्टो कॉपी लगता है आपका, जीरोक्स लगता है। अच्छा, उस

0: को निकलना है दुबई, वो वैसे तो निकल नहीं सकता अपने पासपोर्ट से क्योंकि पुलिस पकड़ लेगी। तो हम कुछ दिन के लिए आपके पासपोर्ट पे से आपका फोटो हटा के ना, आपकी दाढ़ी होती तो चल जाता, उसका फोटो चिपका के आपके नाम से वो दुबई जाएगा, वो 3-4 आदमियों को ठिकाने लगा के वापस आ जाएगा। तो उसमें 3-4 महीने लगेंगे।
1: क्या बोल रहा है भाई, कौन? हेलो।
0: तो मैं उसको बोल देता हूँ, वो वहाँ पे वो आपके घर पहुँचवा देगा, आप फिक्र, बल्कि वो बंदा ही।
1: हेलो।
0: हाँ बोलिए बोलिए।
1: क्या बोल रहा है भाई?
0: आपके पासपोर्ट पे उसका फोटो लगा के आपके नाम से वो दुबई जाएगा, 2-3 को ठिकाने लगाना, वापस आ जाएगा, उसका जरूरी काम है।
1: मैं बोल रहा हूँ,
0: मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ।
1: क्या बोल रहा है? क्या
0: आप इतना भड़क क्यों रहे हो? काम आप थोड़ी करने जा रहे हो, काम तो वो लगाने जा रहे हैं ठिकाने।
1: नहीं, बात क्या कर रहा है? पासपोर्ट पे किसी और को भेज रहा है
0: यार। आप मेरी तेजेंद्र जी,
1: नहीं
0: सोचो वो कितना भड़क रहा होगा, 3 आदमियों को उसको टपका के आना है दुबई में, उसकी भी तो भड़कन सोचो ना। अरे तो यार आपका पासपोर्ट आपको वापस मिल जाएगा, 1.5 महीने के लिए आपका नाम यूज कर रहा है, आपका नाम यूज करने में क्या आपकी गाड़ी मांग रहा है क्या? गाड़ी यूज कर रहा है वो,
1: नाम बता पहले।
0: ये लकी डॉ निकल रहे हैं, वरना किसी और तेजेंद्र को भेज देते। आपका मौका लगा, आप ऐसे भड़क रहे हो उल्टा। मेरी बात सुनिए तेजेंद्र। तेजेंद्र, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और तुम रेडियो मिर्ची पे हो। मुझे शालिनी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने कहा था कि तुमने पासपोर्ट अप्लाई कर रखा है, तुम्हारा मुर्गा बनाया भाई, तुम बहुत गुस्से वाले हो, तो मैं सोच रहा हूँ तुम्हें दुबई भेज दूँ, उसे नहीं भेजूं।
2: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
3: तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
4: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा,
5: दोनों मिलेगा।
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
7: 89.6
8: FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल पर अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे रूबरू।
1: क्या आपका ताशी आपको रूबरू कराए हमारे आज के शायर पीरजादा कासिम रजा सिद्दीकी साहब से। पीरजादा कासिम का जन्म 8 फरवरी 1943 में हुआ और ये एक मल्टी टैलेंटेड शख्स हैं। एक स्कॉलर हैं, एक साइंटिस्ट हैं, एजुकेशनिस्ट हैं एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक बड़े ही उम्दा शायर हैं। मेरी एक बड़ी पसंदीदा गजल है पीरजादा साहब की, लिखते हैं कि गम से बहल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं, दर्द में ढल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं, साया ए वस्ल कब से है आपका मुंतजिर मगर हिजर में जल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं, अपने खिलाफ फैसला खुद ही लिखा है आपने, हाथ भी मल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं, वक्त ने आरजू की लौ देर हुई बुझा भी दी अब भी पिघल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं, और शेर आखिर की अपनी तलाश का सफर खत्म भी कीजिए कभी, ख्वाब में चल रहे हैं आप बहुत अजीब है ना प्यारी गजल। बहरहाल आइए तरन्नुम में सेट एक और बड़ी प्यारी गजल आपका ताशी करे आपकी नजर सिर्फ मिर्ची महफिल पर। इट्स हॉट।

0: on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
4: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं, जबकि साइकिल की बजेगी।
0: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
6: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
7: बहुत कुछ होगा।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
0: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

मिर्ची इट्स हॉट और बूता हो तो राहत इंदौरी साहब सा। मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ और मेरे ख्याल से उर्दू अदब में शायरी की दुनिया में जो भी शख्स कदम रखता है ना उसकी नजर और ध्यान सबसे पहले पड़ता है राहत साहब पर। आई एम कॉन्फिडेंट कि अगर शायरों के नाम गिनाने पे बात आ जाए तो गुलजार और राहत साहब का नाम लेने के बाद बहुत लोग शांत पड़ जाएंगे। हाल में ही बहुत आंधी तूफान के दौर से हम सब गुजरे और उसी पे एक बड़ा प्यारा सा शेर है राहत साहब का। लिखते हैं कि शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं है हम, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं है हम, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। कितना असरदार शेर है दोस्त। और उनके बोलने का ढंग ना, मैं सच बता रहा हूं, जब मैंने शेर पढ़ा मुझे उन्हीं की आवाज में सुनाई दिया ये। ही वॉज रियली वन ऑफ अ काइंड। मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप, आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: ஜான் மிர்ச்சி இட்ஸ் ஹாட் பாலிவுட் போல்டால் பாலிவுட் பாலிவுட் பாலிவுட் போல்டால் ஒன்லி ஆன் மிர்ச்சி இட்ஸ் ஹாட்.
1: ஆமிர் கான் இத்தனி சாரி ஃபில்மே ஒரு ஹர் ஃபில்மே ஏக் அலக் ஃபிசிக். What is the ultimate fitness tip?
2: I know everyone says this, but I can't stress how important it is to be regular in your workout. And along with that, for the best results, you need to have a very balanced and healthy diet. Aam taur pe log high protein diet karte hain. You know, that's not healthy. The body needs proteins, but also needs carbohydrates. It needs fat. It needs everything. So we must have a balanced diet and a healthy diet and rest. You have to sleep well. You have to rest well.
1: Sleep well? ओहो, फिर तो फिट होना मुश्किल है आमिर खान. आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट
0: बॉलीवुड बोल्डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
3: नहीं बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना.
4: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
5: कैसे रुक सकता है?
0: Qatar ka number one radio station
6: 89.6
0: 89.6 FM Mirchi 1 It's hot.

0: ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: और उन गानों में कुछ तो बात होती थी।
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग्ड।
1: मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ। और हाँ जी, बिल्कुल वक्त आ चला है आपको आज का ताशी अनप्लग्ड का पहला गाना सुनाने का। और ये जो गाना है ना, इंदिवर साहब की कलम से निकला हुआ है। मुकेश जी ने इसे गाया, वन ऑफ द वेरी आइकॉनिक सॉन्ग्स दैट ही संग। लता मंगेशकर जी ने भी इसे गाया। और पिछले गानों में कुछ तो बात होती थी। चंदन सा बदन चंचल चितवन,
3: चंदन सा बदन चंचल चितवन,

0: जी बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन, बताइए क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए।
1: बूढ़ी बाबा, मेरे पति को मेरे हाथ की रोटी अच्छी नहीं लगती, क्या करूँ?
0: तो सिंपल है ना, तुम्हारे हाथ की रोटी मत खिलाओ, आंटी की खिला दो।
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस गया अलकट हंस।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: दिल टूटने से भी ज्यादा बुरा क्या होता है। मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ। और एक जमाने तक मुझे भी ऐसा लगता था कि दिल टूट जाना, ब्रेकअप हो जाना इज द वर्स्ट थिंग, सबसे बुरी चीज है। मगर फिर पता चला कि दिल किसी से उठ जाना उससे भी बुरी। साहिर लुधियानवी साहब का शेर हाल में पड़ा कि तेरा मिलना खुशी की बात सही, तेरा मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास रहता हूं। आए हाय, दिल टूटने पे कम से कम आप ये तो कह सकते थे कि आपके साथ बुरा हुआ, मेरे साथ बुरा हुआ, बड़ा मेरा दिल टूट गया। लेकिन दिल उठ जाने पर तो आप ये तक नहीं कर पाएंगे। तेरा मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास रहता हूँ। आए हाय, मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो
3: हाय, ये कॉल बैंक से है। आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, हमारे कस्टमर केयर से आपको पासवर्ड मिलेगा। पासवर्ड बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए किसी को ना दे और इसका दुरुपयोग होने से बचाएं।
4: देखिए जी, आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, आप पासवर्ड लिख लीजिए प्लीज।
2: एटीएम वाला पासवर्ड है ना?
4: एटीएम वाला पासवर्ड है सर, ये पासवर्ड लिख लीजिए, मैं आपको बता देता
2: हूँ। एक मिनट मैं लिख लेता हूँ कहीं।
4: हाँ जी,
2: हाँ बोलिए।
4: 33501।
2: अच्छा
4: सर, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। शैलेंद्र जी, जरा विक्की का पासवर्ड बताइए, जरा इनको, ये फोन लाइन पे है एटीएम वाला।
2: हेलो,
4: मेरी वाइफ के पास भी है, एक सेकंड होल्ड करिएगा। हाँ, मैं फोन मिलाता हूँ। हेलो डार्लिंग, हाय।
5: हाय।
4: अच्छा ये बताओ, ये विक्की का पासवर्ड क्या है?
5: विक्की का पासवर्ड 33501। एक काम करिए ना, धोबी से पूछ लीजिए क्योंकि उसके पास भी है।
4: धोबी से
5: पूछ लीजिए।
4: अच्छा, ये जो हमारे कपड़े धोता है, एक सेकंड।
2: हेलो
4: सर, एक सेकंड होल्ड करना, वो धोबी से भी कंफर्म कर।
6: ये बेल जा रही है।
4: हेलो भैया, हेलो भैया, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आप हमारे कपड़े धोते हो?
2: अरे भाई, तो एक बात सुन, ये
4: आपके पास
2: है?
4: आपके पास पासवर्ड होगा 33501? हाँ सर, 33501 है सर। हाँ जी सर, सर यही पासवर्ड है। मेरी बात सुनिए ना,
2: किस चीज से पूछे जा रहे?
4: किससे? मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना सर, आपके पास।
2: ये क्या कंफर्म भाई, मेरा एटीएम कार्ड है
4: ये। एटीएम तो आपका तो पासवर्ड नहीं मिलेगा, पैसे कैसे निकलेंगे यार?
2: सिर्फ मुझे बताना है, ये सबको थोड़ी ना, दुनिया में अल्लाह
4: नहीं तो
2: थोड़ी ना होता है।
4: आपको तो जल्दी इतनी मच रही है, आपको जल्दी इतनी मच रही है। कल का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेते, उसमें भी आ रहा था, बेकार में एप्लीकेशन डाल दी। टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लेते
7: विके, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तुमने पासवर्ड के लिए अप्लाई कर रखा था, तुम्हारा पासवर्ड अभी तक नहीं आया। 33501।
2: किसने दिया मेरा नंबर?
7: आपका नंबर आशा ने दिया है, उन्होंने कहा था।
2: अरे मैं खुकड़ू को।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
8: ओ भाई, जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: और अब मिर्ची महफिल में वक्त है।
2: मिर्ची महफिल पे किस्सा कॉर्नर।
1: कि काफी सीरियस बातें और गजलों के बीच आपका ताशी आपको नजर करे अपने कुछ पसंदीदा लतीफे। हाँ जी, मोहम्मद यूनुस बट साहब की जानिब से आ रहे हैं ये लतीफे आप तक। और बट साहब लिखते हैं कि एक खातून ने होने वाले खाविंद माने कि अपने शौहर से कहा, शादी के बाद मैं आपके दुख बांटा करूंगी। उसने कहा, मगर मुझे तो कोई दुख नहीं। तो वो बोली, मैं शादी के बाद की बात कर रही हूं। शायद इसीलिए हर सियासतदान मतलब नेता यही कहता है, अगर मैं जीत गया तो आपके दुख बांटूंगा। मजाहिया बातें चल ही रही हैं, तो एक और लतीफा सुने बट साहब का। लिखते हैं कि औरतों की आधी उम्र तो अपनी उम्र कम करने में गुजर जाती है। एक मुलाजिमत के इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा, मोहतरमा आपकी उम्र? जवाब मिला, 19 साल कुछ महीने। पूछा, कितने महीने? जवाब मिला, 96 महीने। बाप रे, वो भी क्या दिन थे जब चुटकुले लतीफे हमारी जिंदगी में आम हुआ करते थे कहीं ना कहीं। आपका ताशी है आपके साथ मिर्ची महफिल पर। इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार. तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया.
4: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है. और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी.
0: मिर्ची, इट्स हॉट.

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कदर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप और आपका ताशी है आपके साथ। और चांद उर्दू शायरी का हमेशा से एक बड़ा ही लोकप्रिय विषय रहा है। शायरों ने अपने आशिक को कहीं चांद सा बताया तो कहीं चांद से कंपेयर करा के चांद को हरा भी दिया। मगर जब भी चांद का जिक्र होता है तो आरजू लखनवी साहब का ये शेर मुझे हमेशा याद आता है। कहते हैं कि पूछा जो उनसे चांद निकलता है किस तरह, पूछा जो उनसे चांद निकलता है किस तरह, जुल्फों को रुख पे डाल के झटका दिया कि यूं। आए हाय, इतना विजुअल शेर है कि एकदम साफ माशूका दिख जाती है अपने आशिक के सामने बैठी, बाल हटा के अपना चांद सा चेहरा दिखाते हुए। पूछा जो उनसे चांद निकलता है किस तरह, जुल्फों को रुख पे डाल के झटका दिया कि यूं। खैर, ऐसे शेर तो कई और कहे जाएंगे, इश्क के मारों की जमाने में कहां कमी है। मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप, आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: Energy, it's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi, it's hot.
3: जॉन अब्राहम आपके हिसाब से द टॉप फिट बॉयज ऑफ द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री.
4: फर्स्ट रेफरेंस इज ऑलवेज गोइंग टू बी वरुण धवन एंड आई विल टेल यू व्हाई. क्योंकि वरुण का जो फिजिक है वो बहुत ही प्रोपोर्शनेट है, उसके लेग्स बहुत ही स्ट्रांग है. टाइगर श्रॉफ फैंटास्टिक बॉडी. रणवीर सिंह एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली फिट. एंड ऑफ कोर्स ऋतिक रोशन. ऑनेस्टली अमंगस्ट ऑल दीज इंक्लूडिंग माई सेल्फ आई थिंक सबसे फिटेस्ट इंसान हमारे इंडस्ट्री में इज अक्षय कुमार. एंड आई मीन holistically fit. He can survive anywhere. अगर आप उसको माउंट एवरेस्ट पे छोड़ दो, अगर आप उसको रेगिस्तान में छोड़ दो, अक्षय कुमार will be the only guy who will survive and come out.
3: छोड़ने की जरूरत ही नहीं है जॉन अब्राहम. अक्षय कुमार is the only person in the हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो by choice इन जगहों पर जाएंगे. आप सुन रहे हैं मिर्ची, it's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi, it's hot.
5: Our business is our business, none of your business.
6: पर दीदी, our entertainment is your entertainment. Entertainment,
7: entertainment. Qatar का number one radio station.
8: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: ऑन मिर्ची इट्स हॉट। मिर्ची महफिल पर अब वक्त है
1: मिर्ची महफिल पे लव्स आजकल
0: कि आपकी उर्दू लफ्जों की आर्सेनल में एक और इजाफा किया जाए और बताया जाए आज का लफ्ज। हाँ जी, जो कि है जुस्तजू। जुस्तजू का मानी हुआ सर्च या तलाश, विश या ख्वाहिश। लेजेंड मिर्जा गालिब साहब का एक बड़ा खूबसूरत शेर है जो जुस्तजू का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कहा कि जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो जो अब राख, जुस्तजू क्या है। शहरयार साहब ने भी अपनी गजल में इस लफ्ज का बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल किया, जिसे खयाम साहब ने म्यूजिक दिया और आशा भोसले जी ने अपनी आवाज से नवाजा। मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप, इट्स हॉट।

0: सुनार जी, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना?

0: Mirchi, it's hot. Mirchi. Iska bana, uska bana, saka bana. Rabana. Burka, burka. Navid bala burka. Mirchi burka.
1: Hello.
2: Sir, very good evening. बैंक से बोल रहा हूँ, मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ 2 मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे 2 मिनट दे सकते हैं?
1: हाँ जी बोलिए।
2: सर हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 0 ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
1: आप मुझे पैसे दोगे? हाँ। हिडन चार्जेस?
3: सर इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
1: कौन बोल रही है?
2: सर रमेश ही बोल रहा हूँ। सर मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
1: मुझे क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही?
4: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
1: हेलो कौन बोल रहा है?
2: सर रमेश ही बोल रहा हूँ मैं, इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
1: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
3: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
1: हेलो मैडम।
2: हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ।
1: कौन बोल रहा?
2: रमेश बोल रहा हूँ सर।
1: अभी कोई और बोल रही थी।
2: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
1: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है, इसमें कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
5: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
1: कौन बोल रहा है?
2: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर, इसमें
1: 2 दिन बाद मुझे कॉल कर लेना।
6: सर 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
1: कौन बोल रहा है भैया?
2: सर रमेश बोल रहा हूँ। आप यार उस पे क्यों जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे सर?
1: कभी किसी की आवाज़ आ रही है, कभी किसी की आवाज़ आ रही है। नहीं भैया नहीं, नहीं चाहिए मुझे।
7: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
2: हम सबका दिमाग खराब हो गया, अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या क्या कौन बोल रहा है यार? मैं बोल रहा हूँ आपसे, रमेश बोल रहा है। सर मेरी बात सुनिए सर, सर आप सर फोन मत काटिएगा।
8: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं, मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, आप मुर्गा बन गए, आप कुकड़ों को बोल दें जरा हंस के।

0: Cucurucu.
1: Thank you.
2: Mirchi Murga, Naveed ke saath, only on Mirchi. It's hot.
3: Yep, hot.
4: Ja Simran, ja jeele apni zindagi. Ja beta, ja.
5: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने।
6: हिट गाने
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
9: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप, आपका ताशी है आपके साथ और अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे डायरी से।
1: कि आपका ताशी अपनी डायरी के कुछ सफ़े आपके नजर करे और पिछले रोज ना मेरे पल्ले मजनू की एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी पड़ी और कहानी थी कि एक राजा को लैला के जाने के बाद मजनू की हालत देख के बड़ा दुख हुआ। उसने मजनू को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम मेरे हरम में से कोई भी हूर चुन लो, यहाँ की सारी हूरें तुम्हारी उस लैला से तो कहीं ज्यादा खूबसूरत हैं, लैला लैला की रट छोड़ो और मजे से जियो। जिसका मजनू ने यह जवाब दिया कि आप समझ नहीं रहे हैं, बात किसी को भी चुनने की है ही नहीं, बात यह है कि मेरे दिल ने लैला को चुन लिया है और अब ये फैसला मेरे काबू से बाहर है। और हाँ, आपकी कोई भी हूर लैला के करीब भी नहीं और ना ही कभी आएगी, क्योंकि लैला की खूबसूरती देखने के लिए मजनू की आंखें चाहिए। हाँ जी, पेश खिदमत है आपके लिए सिर्फ मिर्ची महफिल पर, आपका ताशी है आपके साथ।

0: Mirci, It's Hot.
1: दोस्ती का गुस्सा ले मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
2: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
3: तुम मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
4: खूब मिलेगा, मिलेगा।
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6
7: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप, आपका ताशी है आपके साथ। और शायरी में खत जो है वो आशिक और उसके माशूक के दरमियान की एक दिलचस्प कहानी है। इस कहानी को शायरों की इमेजिनेशन ने और ज्यादा रंगारंग बना दिया है। अगर आपने खत को मौजू बनाने वाली शायरी नहीं पढ़ी तो गोया आप क्लासिकी शायरी के एक बहुत दिलचस्प हिस्से से नाआशना है, अनइंट्रोड्यूस्ड है। शकील बदायूनी साहब का जो खत आना था वो आ गया, तो उन्होंने लिखा, काफी है मेरे दिल की तसल्ली को यही बात, आप आ न सके आपका पैगाम तो आया। उधर कैफ भोपाली साहब के यहाँ खत नहीं आया, तो उन्होंने लिखा, दिले नादान न धड़क, ऐ दिले नादान न धड़क, कोई खत लेके पड़ोसी के घर आया होगा। ओए होए, आज के जमाने में जो खटाखट बातचीत हो गई है ना, उससे कॉन्वर्सेशन का कुछ मजा तो चला ही गया यार। खैर, आप सुनते रहे मिर्ची महफिल, हमारे और आपके बीच में जो बातचीत है वो जिंदा रहे। आपका ताशी है आपके साथ, इट्स हॉट।

0: on Mirchi. It's hot.
1: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
0: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
2: बार बार
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
3: 89.6
4: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: और वक्त हो चला है मेरे जाने का।
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग्ड।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी था आपके साथ। इट्स टाइम फॉर मी टू गो, लेकिन जाने से पहले, जगजीत साहब को यूं ही नहीं कहा जाता था दैट ही ब्रॉट गजल्स टू द मासेस। उन्होंने नॉर्मल जनता तक गजलों को पहुंचाया और ये गजल जो मैं अब गाने वाला हूं आपके लिए आज के ताशी अनप्लग्ड में, मेरे ख्याल से इसका बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट रोल था उस नॉर्मल जनता तक पहुंचने का। दिस इज होश वालों को खबर क्या, सिर्फ आपके लिए।

और सच्ची बात है यार, क्या पता होश वालों को कि बेखुदी क्या चीज है। बहरहाल अगर आप मुझसे और बात करना चाहें तो आ सकते हैं आप मेरे इंस्टाग्राम मिर्ची ताशी MIRCHITASHI पर। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, आपका ताशी था आपके साथ। इट्स हॉट।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot. Mirchi. Fresh Maal.
1: धमाल 4 में धमाल मचाने आ रहा है कहर।

0: इस गाने को आवाज दी है गुरु रंधावा ने। म्यूजिक एंड लिरिक्स बाय गुरु रंधावा, गिल मचरई एंड रॉनी अजनाली। धमाल 4 से सुनते रहिए कहर, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। 89.6, 89.6,
1: it's hot.

तकती है नजर, वो कौन है जिसने किया है मुझको खुद से बेखबर, वो कौन है जो मेरे पल पल में शामिल है, वो कौन है?

मैंने ये न जाना कभी, ऐसा न था हाल मेरा पहले, हाल ये मेरा हुआ।

0: Classics. It's hot. Mirchi. Fresh Maal.
1: जब हर बीट में हो तड़का तब बनती है चटनी।